0: over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800 My Dentist or 09626 5205.
1: Quality Care Dental. Always very gentle.
2: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
3: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Roses, Milk Tray or Favourites 312 to 470 gram for $9.90 each and Dove Body Wash 1 litre for $10.99 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
4: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर
5: दिस इज रेडियो तराना.
6: हेलो हेलो ट्यूसडे हेलो हेलो लिसनर्स एंड कैसे हैं आप. आज इस सप्ताह का दूसरा दिन है और धीरे धीरे उम्मीद है कि इस सप्ताह वीकेंड के बाद में आपके लिए अच्छा ही जाएगा. मंडे होता है, कुछ लोग घर से काम करते हैं, कुछ लोग शायद एक्स्ट्रा डे ऑफ्स ले लेते हैं. जनरली मंडे को एब्सेंटीज का जो रेट है वो हाई ही रहता है. तो होपफुली आज ट्यूसडे है, यू आर कूल एंड कलेक्टिव. चले आज ट्यूसडे को बहुत ही प्यारा सा अपना सफर शुरू कर रहे हैं आपके साथ. Listeners, आपका खास इस्तकबाल करते हैं. आई नो आप आजकल हमें आई हार्ट और रोवर पर भी सुनते हैं. है अलेक्सा, आप भी हमारे बहुत सारे दोस्तों के घर पर हैं और विराजमान हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस की दे रही है. हाय अलेक्सा, कैन यू प्ले रेडियो तराना. आप चालू हो जाते हैं. थैंक यू सो मच. जहां पर भी, जिस भी हाल में, जिस भी डिवाइस पर ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, खास स्वागत आपका. गुड आफ्टरनून, नमस्ते.

0: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
1: Warehouse. Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
2: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
3: कितना
4: प्यारा लग रहा है ना।
3: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा क्या होगा भाभी।
4: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
5: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
6: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
7: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
8: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. क्योंकि हम देंगे IPL पर सभी updates, reviews और previews. Stay tuned to Tarana.
9: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
5: Bollywood के एक और superstar, the perfectionist. Yes, आमिर खान, इन्होंने अपना मुकाम कायम किया 1990 में ही। 1990s में इनकी बहुत ही परफेक्ट रोमांटिक ब्लेंड मूवी आई थी दिल। उसके बाद तो इन्होंने मुड़कर कभी पीछे ही नहीं देखा। हालांकि लेट 80s में इनकी मूवीज रिलीज हुई, उस दशक में 80s में इन्होंने फिल्म कयामत से कयामत तक दी थी बॉलीवुड लवर्स को। लेकिन दिल जब आई ना तो इन्होंने सबका दिल चुरा लिया। तो ही स्टार्टेड हिज परफेक्शनिज्म मूवी दिल से। इनको बहुत सराहा गया, बहुत प्यार दिया गया, और उसके बाद तो फिर भाई सुपरस्टार बनकर रह गए आमिर खान।

90s वो दौर था जिसने मेलोडी में और मेलोडी मिला दिया, और 90s के गाने बन गए सबसे मेलोडियस। 90s की रानी संगीता सुना रही है 90s के गाने।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: एक के बाद एक सुपरहिट गाने आपको सुना रही है 90s की रानी संगीता।
1: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
2: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
1: 378 आरारीमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
2: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
1: One temple, one community, eternal blessings.
3: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंगसाइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
4: बच्चों बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
4: जीनियस। अब बताओ, रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255-5500। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: हर थर्सडे रात 10 बजे से तराना के रंग रूपा के साथ
4: 1990 में जमा आमिर खान ने मूवी दिल दिया, हमें दिया दिल। उसके बाद तो लोगों ने अपने आप को ब्रेस कर लिया कि भाई इससे भी बढ़कर रोमांटिक हीरो ये अब जाने जाएंगे और जो दूसरी इनकी रिलीज होगी ये सुपर डुपर रोमांटिक रहेगी। बट इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और इन्होंने दिया मूवी अंदाज अपना अपना। उसमें ये रोमांटिक प्लस कॉमिक हीरो की तरह अपने आप को इन्होंने पेश किया एंड दैट वाज अनदर बिग टाइम हिट। तो आमिर खान ने अपने आप को 90s में दो तीन तरह से रोल में ढाला, दो तीन वेरिएशंस लिए इन्होंने अपने मेन रोल के साथ साथ और इट टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर हिट। तो अनदर खान, अनदर सुपर हिट, अनदर रोमांटिक हीरो, अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट में दिखाते हुए आमिर खान ने अपने आप को एक लेवल दिया था।

आमिर खान की एक डिसेंसी है, या यूं कहें कि एक आदत है, कि जब भी पत्रकार से इनकी मुलाकात होती है और उनसे क्वेश्चन फायर अप किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रैंक, सही जो इनके मन में है वही आंसर देते हैं। इनको ये चिंता नहीं होती है कि पसंद आएगा जवाब पब्लिक को या नहीं, लेकिन ही इज वेरी फ्रैंक विद हिज आंसर्स एंड वेरी अपफ्रंट विद द आंसर्स। इनसे एक बार पत्रकार ने पूछा था कि आपके फेवरेट को स्टार कौन है, तो इन्होंने एक्चुअली तीन हीरो ने का नाम जो है वो लिया था, पहली जूही चावला, दूसरी माधुरी दीक्षित और तीसरी रानी मुखर्जी। इन्होंने कहा तीन डिफरेंट एक्ट्रेसेस, तीनों एकदम हिट और तीनों की पर्सनालिटी अलग और तीनों मुझे बहुत भाती हैं। तो रानी मुखर्जी, जूही चावला और साथ में माधुरी दीक्षित इनके फेवरेट को स्टार है। आमिर खान खुद ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट है और अगर उन्होंने किसी एक्ट्रेस का नाम लिया है तो भाई बात तो होगी उनमें। अच्छा चलो जाने का समय हो चला, आपने साथ दिया, थैंक यू। जब तक हम नहीं मिलते तब तक और हर दिन हर वक्त, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करे। बाय बाय।

0: हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: दिस इज तराना न्यूज।
3: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक पार्टी चाहती है कि बच्चे किसी भी स्कूल बस में चढ़ सके, बशर्ते उसमें जगह हो। मौजूदा नियमों के अनुसार स्टूडेंट्स मुफ्त बस सेवा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वे अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ते हों। इसमें प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स जिनका घर स्कूल से 3.2 किलोमीटर दूर है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनका घर 4.8 किलोमीटर दूर है, वे फ्री बस सेवा को फिलहाल काम में ला सकते हैं। एक्ट सांसद एंड्री होगार्ट ने कहा कि रूरल इलाकों में कुछ परिवार अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी चला करके ईंधन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उनके सामने वाली सड़क पर बस खाली सीटों के साथ में जाती है। उन्होंने कहा कि फ्यूल सस्ता नहीं है और न ही समय मुफ्त है। ऐसे में एक्ट पार्टी चाहती है कि बच्चों को किसी भी गुजरती स्कूल बस में चढ़ने का मौका मिले, बशर्ते उनमें जगह हो। फंगामाता में 6 स्टोर्स में ब्रेक इन की रिपोर्ट मिलने के बाद में पुलिस ने 18 वर्षीय एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ईस्टर्न वाइकाटो एरिया कमांडर इंस्पेक्टर माइक हैनवुड का कहना है कि पोर्ट रोड पर 6 दुकानों में ब्रेक इन के बारे में जानकारी मिलने के बाद में पुलिस को पते पर भेजा गया था। पुलिस का कहना है कि सुबह 2:30 बजे तायरुआ रोड पर एक गाड़ी पुलिस को दिखी थी। गाड़ी का पीछा नहीं किया गया लेकिन उस पर नजर रखी गई। वही फंगमाथा रोड पर गाड़ी के जाने के बाद में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं से 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गाड़ी से कई सामान मिले हैं जिन्हें चोरी का समझा जा रहा है। आरोपी को हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाना है। उन पर 6 काउंट्स ऑफ बर्गलरी, फेलिंग टू रिमेन स्टॉप्ड और रेकलेस ड्राइविंग वाले चार्जेस लगे हैं। वेस्टपैक बैंक के मुताबिक इस साल मार्च तक पिछले 6 महीनों में उसे $545 मिलियन का मुनाफा तो हुआ है, लेकिन उससे पूर्व वाले 6 महीनों के मुकाबले मुनाफे में 19% की गिरावट हुई है। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी हुई है। प्री प्रोविजन प्रॉफिट $795 मिलियन का है, जो कि पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 4% ज्यादा है। पिछले 6 महीनों में वेस्टपैक होम लेंडिंग में 5% या $73.3 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बिजनेस लेंडिंग में 6% या $35 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। डिपोजिट में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि $83.7 बिलियन है। इससे पहले BNZ ने $494 मिलियन नेट प्रॉफिट की अनाउंसमेंट की थी। ANZ को $1.2 बिलियन का मुनाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। इसका बड़ा श्रेय जाता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को। अब चुनावी नतीजों के बाद जब बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा चल रही है तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और बंगला माध्यम से शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति ही होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक पार्टी की तरफ से उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिजी के लंबासा के रारा एवेन्यू में जिस व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया उनकी पहचान प्रेम चंद के नाम से की गई है। उनकी उम्र 50 साल से कुछ ऊपर बताई गई है। पुलिस प्रवक्ता आनाने सुरो का कहना है कि चंद पर चाकू से वार किया गया, हमलावर को हिरासत में लिया गया है। प्रेमचंद नॉर्दर्न प्रीमियर म्यूजिक सेंटर के डायरेक्टर बताए गए हैं तथा वे मल्टीकल्चरल सेंटर में पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर थे। वे कोरोखादी बुआ के रहने वाले बताए गए हैं। उन पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। उन्हें लंबासा अस्पताल ले जाया गया जहां पर ज्यादा खून बह जाने के फलस्वरूप उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद में लंबासा शहर में सुरक्षा को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की गई है। प्रसाद अपने पीछे पत्नी और इकलौते बेटे को छोड़ गए हैं। वेलिंगटन फिनिक्स वेमेंस कोच बेव प्रेसमैन का कहना है कि टीम को इस हफ्ते ए लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच के लिए होम एडवांटेज मिल रहा है। वेलिंगटन फिनिक्स ब्रिस्बेन रोवर से एग्रीगेट 2-1 से पीछे है। प्रेसमैन का कहना है कि होम एडवांटेज के बल पर वह समझती है कि वेलिंगटन फिनिक्स टीम इस हफ्ते मैच जीत करके ए लीग ग्रैंड फाइनल में जगह बना सकती है।
2: Toronto Community
4: कम्युनिटी मैसेजेस।
5: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
4: टोरंटो कम्युनिटी मैसेजेस।
6: बोर्ड,
7: उदास हो,
6: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
7: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
6: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
7: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
6: Only on.

Chirp Neha. Chirp Neha. Chirp Neha. Chow. Chow. Chill with Neha show में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है on your Indian radio, Radio Tirana. Big hi, hello listeners. Tuesday की ये प्यारी सी दोपहर. Hope everyone is doing well. स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के शो में. आज के शो में of course प्यारे प्यारे गाने तो रहेंगे ही, साथ में कुछ मजेदार बातें और कुछ गपशप भी होगी. किसके साथ बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. साथ दे रहिएगा. Once again, big hi, hello. स्वागतम. Welcome to the show.

0: Hi, this is Shekhar Ravjiani and you're listening to the coolest RJ Neha.
1: पापा टोय फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब डीएच सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन. दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन. ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग. यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में. डीएच सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड. इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक. और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश. T's and C's apply. Ashik Homes Limited. For the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz. Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे

0: वेलकम बैक लिसनर्स, रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूँ नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा। और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ ऑफ कोर्स मेरे लिसनर्स हर आफ्टरनून चिल करते हैं, और साथ ही जब कोई गेस्ट स्टूडियो आ जाते हैं और वो भी मेरे साथ चिल करते हैं तो और अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज नाइस टू बी चिलिंग विद सम वंडरफुल पीपल। और ऐसे ही एक बड़े ही प्यारे से दोस्त है मेरे मनप्रीत, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज में है, चिल कर रहे हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून मनप्रीत, स्वागत आपका, हाउ आर यू टुडे?
1: शुक्रिया नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत अच्छे हैं। स्टूडियो में आकर और भी अच्छा लग रहा है।
0: या पहले बताओ, आपका जो ये बात करने का अंदाज है ना, बड़ा यूनिक है। देखो, हो तो आप पंजाबी,
1: हाँ जी,
0: पर आई डोंट नो, आपका थोड़ा सा जिस हिसाब से आप बात करते हो ना, जैसे जी हम बिल्कुल ठीक है, कहाँ से ये थोड़ा सा मिश्रण जो है अंदाजे बयां में, ये कहाँ से आया है?
1: ये मेरे साथ कुछ लोग रहे हैं ऐसे जो हम करके बात करते थे
0: वहां तो से आप भी से, हाँ। असी से हम ज्यादा बन गए। नो, इट्स वेरी नाइस द वे यू स्पीक, एंड वो अंदाज आपकी शायरी में भी झलकता है जब आप शेरो शायरी सुनाते हो।
1: जी हाँ।
0: बड़ा यू नो तसल्ली से, इत्मीनान से बैठ कर कि ये है वो है जो भी है जो भी सुनाते हो।
1: हाँ।
0: पर आज शेरो शायरी तो ऑफकोर्स बाद में थोड़ी करेंगे, अभी पहले गानों की बात करते हैं। आजकल नहीं, बहुत समय से सभी जानते हैं कि मनप्रीत हमारे जिंगल्स के कर्ता धरता है। ये जो चिल विद नेहा जिंगल आप इतना पसंद करते हैं और भी हमारे जिंगल्स इतने पसंद करते हैं, वो सब मनप्रीत ने ही बनाए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी इन्होंने बनाए हैं। इनफैक्ट एक गाना इनका अभी पीछे बहुत वायरल हुआ है, बड़ा ट्रेंड कर रहा है, मुंडे रेंदे पापा टोए टोए। अच्छा, तो नो प्राइज फॉर गेसिंग कि आप खुद पापा टोए में रहते हैं।
1: हाँ।
0: पापा डोए की शान, क्या बात है। तो पापा डोए में रहना और वहां के यू नो उस माहौल को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में है ये गाना।
1: जी हाँ।
0: तो कैसे आइडिया सूझा कि यार पापा डोए के ऊपर एक गाना बनाया जाए?
1: ये बस मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि लेट्स मेक अ सॉन्ग ऑन पापा टोए टोए।
0: अरे वाह।
1: तो मैंने उसकी बात को थोड़ा अनगोला कर दिया, मैंने कहा क्या है, उसको कौन सुनेगा।
0: देखा तो वो गाना आगे चला। अब वो दोस्त आया आपके पास कि मेरे को रॉयल्टी दे
1: नहीं,
0: मेरा
1: नहीं।
0: हिस्सा दे, मैंने ही तेरे को आइडिया दिया था। बड़ा अच्छा दोस्त है,
1: नहीं मांगा उसने कुछ। बहुत ही क्रिएटिव बंदा है वो।
0: हाँ।
1: तो ही वाज वेरी हैप्पी कि सॉन्ग वायरल गया है, वो सबसे ज्यादा खुश हुआ था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो आई थिंक उसकी एक बॉन्डिंग लगा लो हमारी, या फिर उसकी जुबान से निकलना था तो बन जाना था। जर्नी होती है हर गाने की।
0: सो ट्रू। मुंडे रेंदे पापा टोए
1: टोए टोए, ओए होए होए,
0: ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया उसका जो टेम्पो आपने सेट किया है, जो गाने की मिक्सिंग हुई है, पूरी क्रिएशन हुई है, इट्स वेरी वेरी कैची। मैंने भी जब पहली बार सुना था आई वाज लाइक दिस इज सुपर, जस्ट टू गुड। सो
1: एक्चुअली उसको लोगों ने प्यार बहुत दिया, जो पूरी न्यूजीलैंड कंट्री है उसमें, ये नहीं कि सिर्फ पापा टोए टोए वालों ने उनको सुना है, उस पर रील्स बनाई है, पूरे न्यूजीलैंड में जितने लोग हैं उन्होंने बनाई है, और मोस्टली जितना भी उस पर व्यू आया है 92% उसमें से सिर्फ न्यूजीलैंड में ही है।
0: वाओ।
1: तो ये न्यूजीलैंड का गाना था, और हालांकि उसमें मैंने बहुत सारे एक दो ब्रांड्स का नाम भी लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि मैं वहां पे रहता था।
0: और अच्छा, उन ब्रांड्स में से किसी का रिस्पांस आया गाने को लेकर?
1: हाँ, जो अपने, हाँ जी, हाँ। जो अमृतसरिया कैफे है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, उन्होंने वेलकम भी किया।
0: हाँ।
1: और ही इज वेरी नाइस गाय।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर स्पॉन्सरशिप में आपको जरूरत पड़े तो ही इज
0: वेरी वेलकम। वही कहा कुछ कुल्चे वगैरह फ्री खिलाए उन्होंने आपको, अमृतसरी कुल्चे?
1: नहीं, वो तो खिलाए उन्होंने, लस्सी भी पिलाई हमने।
0: वेरी नाइस गाय। So that's good, you know, I mean, ऐसा नहीं था कि आपने ब्रांड प्रमोशन के लिए उस गाने को क्रिएट किया, it was a genuine effort कि वो ब्रांड्स का नाम उस गाने में आया, because वही रिफ्लेक्ट करते हैं पापा टोए के,
1: पापा टोए के लोग को, माहौल को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं।
0: yeah.
1: तो वो स्पेशल प्लेसेस है जहाँ पे मैं खुद जाता था, क्योंकि गाना मैंने खुद के लिए भी कह सकते हैं, खुद के लिए भी लिखा है।
0: हाँ,
1: ना ये शो करने के लिए नहीं लिखा कि हाँ ये ब्रांड का नाम ले रहा हूँ।
0: हाँ,
1: लेकिन एक फीलिंग है।
0: हाँ,
1: बस वो रिप्रेजेंट की है।
0: क्या बात है। सो बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरह से और भी कैची गाने बनाते रहें, और हम उनको सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और लोग भी उस पर रील्स बनाते रहेंगे। तो एक गाना अब हम रिलीज करने वाले हैं आपका, राइट दिस मोमेंट, पावर टोए के बाद अब ये गाना ट्रेंड होने वाला है, और ये गाना क्या है इसके बारे में बताओ।
1: ये गाना है ऑकलैंड गर्ल। तो ये बेसिकली रॉक स्टार म्यूजिक

0: वाइब के साथ, बॉसी एटीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं।
1: लाला
0: तो ये गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, अभी आप इसको स्पॉटिफाई पे भी देख सकते हो, यूट्यूब म्यूजिक पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम के अपने रील बनानी है वहाँ भी अवेलेबल रहेगा, टिकटॉक पे बनानी है वहाँ भी अवेलेबल रहेगा। और इसका लॉन्च हम आज कर रहे हैं यहाँ से नेहा जी के साथ।
1: क्या बात है। Here we go, Auckland Girl by Manpreet.

0: क्या बात है ओकलैंड गर्ल। आई कुड टोटली यू नो, जब ये गाना चल रहा था मेरे को ऐसे सिटी के कुछ ग्लिम्सेस आ रहे थे, स्काई टावर नजर आ रहा था और यू नो हाव वॉफ, ये सारी जगह ऐसे फ्लैश कर रही थी माइंड में। सो इस पर कभी वीडियो बनाने के बारे में भी सोचे हो फ्यूचर में मनप्रीत?
1: जी हाँ, अगर ये गाना हिट होता है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम।
0: आई थिंक इट बी नाइस।
1: और जब लोग इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो इसके ऊपर जो कवर फोटो है
0: जी
1: वो भी यंगस्टर एक मॉडल है आजकल की, उभर रही है वो धीरे धीरे।
0: बिल्कुल
1: सो शी विल बी टेक ओवर द लाइक वीडियो स्टफ एज वेल विद द
0: ब्यूटिफुल
1: कॉलेज एंड
0: ब्यूटिफुल।
1: स्टूडेंट्स।
0: उनका नाम हम बता सकते हैं?
1: जी
0: इट्स
1: हाँ
0: अ वेरी
1: प्लीज।
0: लवली केशवी। केशवी से अभी कुछ समय पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी एंड आई हैड दी अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद हर जब हम सुनील ग्रोवर जी के इवेंट पे काम कर रहे थे। तो बैक स्टेज पूरा केशवी ने ही संभाला हुआ था। एंड यस, शी इज अ यंग ओकलैंड गर्ल एंड जैसे आपने कहा ना, उभरती हुई सितारा है। वो गाती भी बहुत अच्छा है
1: जी हाँ
0: एंड मॉडल भी करती हैं। सो इट बी नाइस टू यू नो, अभी तो आप उनकी ये फोटो को फीचर होते हुए देख सकते हैं इस गाने के थंबनेल पर, बट सून वील हैव अ वीडियो एज वेल फॉर दिस सॉन्ग। एंड जल्द ही ये गाना अवेलेबल होगा ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, जल्द ही
1: जी
0: या
1: हाँ
0: लाइक आज से ही?
1: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लेकिन टिकटॉक और जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे नेक्स्ट वीक तक आएगा।
0: फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट वीक फिर मैं भी कुछ बना दूंगी भाई इस पे एक रील, ठीक है? ऑकलैंड गर्ल, नाइस मनप्रीत। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे मजेदार गाने बनाते रहो। एंड सबसे मजेदार बात है कि वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं
1: करते
0: ये
1: हैं
0: गाने ना,
1: जी
0: लाइक
1: हाँ।
0: पापा टोए सॉन्ग एंड देन ये गाना ऑकलैंड गर्ल। और एक और
1: जी
0: आइडिया अभी मैंने दिया है मनप्रीत को, हम बताएंगे नहीं उस पर, पहले मनप्रीत थोड़ा काम करे फिर उसे भी
1: डेफिनेटली
0: आने वाले दिनों में रिलीज करेंगे।
1: जी हाँ जी हाँ जरूर।
0: लवली।

0: चाहो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800 787 111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
3: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana. Alrighty, welcome back listeners. Radio Tarana सुन रहे हैं आप और मैं हूँ नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियोज में चिल कर रहे हैं मनप्रीत. मनप्रीत जिनके साथ हम आगे भी कुछ और बातें करेंगे और डेफिनेटली कुछ शेरो शायरी सुनाए बगैर मैं इनको नहीं जाने दूंगी, तो ये सब बातें भी आगे होंगी. पर अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इनका गाना रिलीज किया ना, ऑकलैंड गर्ल, और इनके गाने के बारे में बात की, द पापटोई सॉन्ग, तो मेरे पास मनीषा का मैसेज आया ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन. उन्होंने कहा नेहा सुना दो प्लीज़ पापटोई सॉन्ग, इतना मज़ेदार गाना है. सो हियर वी गो, हमारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर इंजॉय करते हैं और आपको सुनाते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग गाना द पापटोई सॉन्ग ऑन रेडियो तराना.

Peppa Toy Toy, so cute. It is actually a very cute song, very very cute. And वाकई वो जो पापा टॉय की एक वाइब है ना कि यहाँ पे रौनक शौनक चल रही है और सब काम चल रहे हैं, उसे बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर किया गया है इस गाने में. सो वेल डन मनप्रीत फॉर क्रिएटिंग दिस सॉन्ग एंड ऑल द वेरी बेस्ट इनके फ्यूचर वेंचर्स के लिए भी इनको कहते चलते हैं. अभी कुछ सुनाना चाहोगे शेरो शायरी या एक गाने के बाद? एक गाने के बाद चलो ठीक है. इस गाने के बाद कुछ जबरदस्त सुनाएंगे अपना ही लिखा हुआ हमें मनप्रीत.

0: आनंद राज आनंद का बहुत ही प्यारा सा ये गाना, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही चुलबुला सा गाना है। जब भी इसे सुनो ना, एक बड़ी रौनक सी छा जाती है। इट्स अ वेरी हैप्पी सॉन्ग। ये गाना अभी आपने एंजॉय किया रेडियो तराना पर इन द शो चिल विद नेहा, और आज हमारे साथ ऑफकोर्स बहुत सारे लिसनर्स तो चिल कर ही रहे हैं ऑल द वे इन तौरंगा। दक्षा जी भी प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं, थैंक यू दक्षा जी आपके मैसेज के लिए। मनीषा आपने भी वो पापा टोई सॉन्ग बहुत पसंद किया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। आपने मनप्रीत को भी हेलो बोला है, तो भाई हमारे लिसनर्स की तरफ से भी मनप्रीत आपको हेलो
1: क्यों हेलो।
0: और इरशाद कुछ सुनाया जाए अब।
1: जी हाँ जरूर।
0: आप किस पर सुनाने वाले हो?
1: शराब के ऊपर। शराब के ऊपर एक शराबी है जो एक पूरी डब्बा पैक बोतल पड़ी है उसके पास, तो वो बोतल को बोल रहा है, क्या बोलता है वो? बोतल को कहता है कि बोतल ए बोतल शराब की तू लाजवाब है, ए बोतल शराब की तू लाजवाब है, तेरे अंदर जो शराब है वो बना देती मेरे को नवाब है, दुख और सुख दोनों में नबाती बराबर साथ है, मगर मेरी बीवी कहती दारू बकवास है। बोतल बोली फट से तू पहले खोल तो सही, दो लगा तो सही, तीसरे पे खुद कहेगा वो करती रहती बकवास है।
0: ये तुमने कब लिखा मनप्रीत?
1: काफी देर पहले लिखा था।
0: नहीं मतलब उस टाइम कर क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था? बोतल लेकर बैठे हुए थे?
1: नहीं नहीं।
0: और बीवी पीछे से डांट रही थी और तुम ये सुन रहे थे बकवास करते हैं? यही हो रहा था घर में?
1: सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था।
0: ऐसा कैसे मैं मान लूं?
1: हो ये रहा था कि मैं शराब के ऊपर पहले ही 3-4 शेर लिख चुका था। हाँ। तो बस उसके बाद मैंने ये लिखा।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा और बहुत सच्चा लिखा है जो भी लिखा है।
1: शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे, आप इसी तरह से मजेदार चीजें लिखते रहे। आपकी आपकी जो राइटिंग है ना, उसमें मेरे को ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आपकी राइटिंग में बहुत मजेदार चीजें छुपी होती हैं, लाइक ट्रुथ भी होती है और उसको आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हो उसमें एक ह्यूमर भी होता है। So that is very nice and keep doing good work. अच्छे अच्छे गाने लिखते रहो, मिक्स करते रहो, बनाते रहो और तरक्की करते रहो, और बस हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहो। अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद आज हम मिले हैं। It's always a pleasure catching up with you, Manpreet.
1: Thank you. और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, हमेशा अच्छा लगता है तो आपसे बातें करके, और ऊपर से जो आप अंदर के दिल की बातें बताते हो वो अच्छी लगती है ना, और जब आपको शायरी पसंद आती है तो आपके अंदर से और बातें निकलती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और मेरा जो सॉन्ग है उसको लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मनप्रीत।

सोनू निगम की आवाज में बहुत ही मस्त ये ट्रैक अभी आपने सुना रेडियो तराना पर, और आज काफी इंजॉय किया हमने। मनप्रीत हमारे साथ चिल कर रहे थे स्टूडियो में और अपने बड़े मस्त मस्त गाने और मजेदार शायरी भी सुनाकर गए हैं, जिसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने पसंद किया। थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। अच्छा मनप्रीत, जाते जाते मुझे बताकर गए कि लिसनर्स से ये कह देना नेहा जी कि स्पॉटिफाई पर मेरे ये सारे गाने सुने जा सकते हैं, मनु सिंह दिलडोरिया के नाम से अगर आप इनका प्रोफाइल सर्च करेंगे तो जितने भी गाने इन्होंने ये बनाए हैं, पापटोए सॉन्ग, ऑकलैंड गर्ल, इससे पहले भी कई गाने बनाए हैं और आगे भी बहुत सारे गाने ये रिलीज करने वाले हैं, तो ये सारे आपको स्पॉटिफाई पे मिल सकते हैं मनु सिंह दिलडोरिया नाम से अगर आप इनका प्रोफाइल सर्च अप करते हैं। राइट, ईजी पीजी। तो वो गाने तो आपको स्पॉटिफाई पे सुनने को मिलेंगे, यहां पर इस बार आपके लिए ये गाना।

0: थप्पड़ लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है, माँ को सब पता होता है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: हाउ ब्यूटीफुल इस तरह के ना छोटे छोटे स्निपेट्स आप संडे तक, मदर्स डे तक हर घंटे पर रेडियो तराना पर सुन पाएंगे। हमारी टीम ने बड़े ब्यूटीफुली इस पोइट्री को पुल आउट करके इसके छोटे छोटे स्निपेट्स रेडी किए हैं एज लिटिल मदर्स डे ग्रीटिंग्स एंड विशेस जो एवरी आवर आपके लिए प्ले होंगी। और उसमें कुछ बहुत सच्ची और अच्छी और बड़ी प्यारी बातें कही गई हैं, जैसे इस वाले क्लिपिंग में कहा गया कि आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, आप कितना भी एक्ट कर लो कि सब सही है, माँ को कहीं ना कहीं पता होता है। शी नोज, राइट? नो मैटर हाउ मच यू प्रिटेंड और यू एक्ट, या आप अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं माँ को, यू नो, एक कहते हैं ना मदर्स इंस्टिंक्ट, शी नोज इनसाइड कि नहीं कुछ तो बात है, ये बच्चा छुपा रहा है। एंड देन शी प्लेज अलोंग, शी नोज कि अच्छा मेरा बच्चा मुझसे कुछ छुपा रहा है तो कोई नहीं, उसको अगर नहीं बताने में कंफर्टेबल फील हो रहा देन शी वोंट लेट यू फील कि उनको भी दुख हो रहा है। माँ भी तो बड़ी पक्की खिलाड़ी होती है, माँ भी ऐसे दिखाती है कि चल कोई नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर से माँ भी टूट रही होती है अपने बच्चे के साथ। सो ऐसी होती है माँ। ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो कहा जा सकता है वो हम जरूर कहेंगे और सुनाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ कुछ गीतों के जरिए और कुछ पोइट्री के साथ अंटिल मदर्स डे दिस संडे जो आने वाला है। एंड एडवांस में आप सभी को रेडियो तराना की टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: रेडियो तराना,
2: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर, लिव बेटर विद कशिश फूड्स। गुड आफ्टरनून, तराना के स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं।
4: दिस इज तराना न्यूज।
1: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक शिक्षक ने उस पल का वर्णन किया जब उन्हें लगा कि एबी केव्स की जानलेवा यात्रा के दौरान छात्रों को बचाते समय उनकी जान जा सकती थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए शिक्षक ने कहा कि केव के अंदर पानी का स्तर लगभग 7.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेकंड के भीतर गर्दन तक पहुंच गया, जिससे वे खुद पानी में डूबने लगे। वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपने आसपास के लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फांगरे बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एक्सकर्शन के लिए केव में गए हुए थे। नॉर्थलैंड के एवी केव्स में अचानक पानी भर जाने के बाद में 15 साल के कैनिन पिथेरा की मौत हो गई। ये घटना मई 2023 की है। फांगरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि हेवी रेन वार्निंग होने के बावजूद इस ट्रिप को टाला नहीं गया था। स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर पहले ही चार्जेस लगा दिए गए हैं तथा स्कूल को रेपरेशंस में $500,000 या आधा मिलियन डॉलर भरने का आदेश दिया जा चुका है। लिबरल लीडर क्रिस हिपकिंस का कहना है कि वे नहीं सोचते कि कॉलिशन सरकार समय से पहले चुनाव कराएगी। कॉलिशन सरकार के भीतर सार्वजनिक मतभेदों ने 7 नवंबर की निर्धारित तिथि से पहले अचानक चुनाव की संभावना को जन्म दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस हिपकिंस ने कहा कि उन्हें लगता है कि नेशनल न्यूजीलैंड फेस्ट और एक्ट की गठबंधन सरकार अंत तक सत्ता में बनी रहेगी। लेबर नेता का कहना है कि जब तक कॉलिशन सरकार में शामिल तीनों पार्टियां सत्ता में डटी रहेंगी, न्यूजीलैंड वासियों के लिए स्थिति शायद बदतर होगी, क्योंकि वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर उतना ध्यान नहीं देंगे। विदेश मंत्री विंस्टन पीरस ने यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए मिसाइल हमलों की निंदा की है। ईरान की ओर से किए गए इन हमलों को विदेश मंत्री ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इन हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है और इससे शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। उन्होंने तत्काल ही इस तरह के हमलों को रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए हमलों के बाद में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल करते हुए हैट्रिक का रास्ता साफ कर लिया है। बीजेपी ने नतीजों और रुझानों में दो तिहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी ने असम में तमाम अनुमानों को गलत साबित करते हुए हैट्रिक लगा दी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि साख और रसूख का है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रदर्शन को ऐतिहासिक जनादेश बताया है। फिजी में प्रस्तावित इमिग्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत फिजी में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं, जिससे बॉर्डर कंट्रोल एनफोर्समेंट और प्रोसिक्यूशन को और मजबूती मिलेगी। जो परिवर्तन किए जाएंगे उसके तहत इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बिना सेज वारंट के किसी को सेज करने का अधिकार मिलेगा, साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी तलाशी ली जा सकेगी।
4: स्पोर्ट्स न्यूज।
1: हरिकंस खिलाड़ी डेवन फ्लैंडर्स क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि उन्होंने जापानीज क्लब के साथ में 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फ्लैंडर्स के जापान जाने का मतलब है कि वे ऑल ब्लैक्स की ओर से खेलने का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि जापानीज येन कमाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं।
5: बोर्ड
6: उदास हो,
5: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
6: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
5: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
6: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
4: ओनली ऑन

0: मानिका सुपर सेंटर।
1: यस, इस सैटरडे को मैं आपसे मिलूंगी एट एनजेड बेड्स फ्रॉम 10 AM टू मिड डे। यहाँ पर काफी अच्छे इन स्टोर स्पेशल्स रहेंगे आपके लिए ऑन बेड्स, मैट्रेसेस एंड ऑफकोर्स यू विल गेट सम गुड डील्स एज वेल, जहां पर आपको गिव अवेज भी मिलेंगे लाइक अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड दिस वीकेंड एंड मेनी मोर इन स्टोर स्पेशल। तो ये सब तो होगा सैटरडे को, पर अभी क्या हो रहा है, अभी हम चिल कर रहे हैं एक साथ यही आपके फेवरेट रेडियो तराना पर इन द शो चिल विद नेहा। मैं हूं नेहा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आज ट्यूजडे आफ्टरनून के शो में। अ वेरी गुड आफ्टरनून, इट्स द 5th of May और प्रोग्राम का ये आवर शुरू हुआ अरिजीत सिंह की आवाज में दो गानों के साथ, जिसके बाद मैंने सोचा कि यार अरिजीत की आवाज जब सुनो ना और उनकी आवाज़ में कुछ एक दो गाने प्ले हो तो फिर मन इतनी जल्दी भरता नहीं, यू गो लाइक और थोड़े और अरिजीत के गाने हो जाए तो हो जाए। सम मोर ब्यूटिफुल अरिजीत हिट्स इन दिस आवर ऑन रेडियो तराना।

0: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्टुगेदर ओकलैंड।
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
2: Time out. Bring it in. Listen, let's give him the new Dunk McSpicy. Cause no one dunks like the Harlem Globetrotters. And no one does sauce like Maccas. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
3: Radio Tarana, ka hai ye plan. बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
4: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: जी एजे के घर दिया और हमें
1: तुम्हें पास है घर,
0: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ।
1: ये तुम लोगों को जो मांगता हमसे है हमें दे देगा कि नहीं यार?
0: रान दो, नहीं मांगता।
1: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ एक सेंट नहीं देगा।
0: हाँ सब लेके जाना।
1: हाँ हम लेके जाएगा, लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
2: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
3: क्या काम की भाग दौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट हॉस्किल आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स बिजनेस शर्ट्स ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और डूबे ब्लैंकेट्स स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड माउंट रॉस्को, आसान भरोसेमंद और 24/7।
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।

0: आवाज सुन ली।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना टाइम चेक
3: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। फोन 0800 233 111। वेबसाइट indelibleholmes.co.nz।
4: गुड आफ्टरनून, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं।
5: दिस इज तराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक रिपोर्ट के अनुसार एक टॉक शो होस्ट द्वारा बार बार पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बताने से इनकार कर दिया कि ईरान युद्ध के दौरान जारी युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है या नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास ईरान और अमेरिका दोनों ओर से हमलों के कारण से अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जबकि अमरीकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी है। अमरीका ने कहा है कि उसने 6 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि उसने एक दर्जन से अधिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोका है। रेडियो होस्ट ह्यू हेविट ने ट्रंप से पूछा कि क्या युद्ध विराम समाप्त हो गया है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मैं आपको ये नहीं बता सकता। ट्रंप ने कहा कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आप कहेंगे कि ये आदमी राष्ट्रपति बनने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। लेबर नेता क्रिस हिपकिंस का कहना है कि वे नहीं सोचते कि एक लीडर डेविड सिमो ने सोच समझकर अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को देश में $6 पर डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भरना पड़ेगा। लेबर नेता क्रिस हिपकिंस का कहना है कि इस तरह की लेवी लागू करने का मतलब होगा कि माइग्रेंट्स देश आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का रुख कर सकते हैं।
7: I think David Seymour hasn't thought through some of the consequences of what he announced over the weekend. For example, his new migrant levy that they would pay daily is ultimately likely to flow through into increased costs for New Zealanders who rely on those migrant workers.
6: BNZ ने 2 हफ्तों में दूसरी बार फिक्स्ड टर्म मॉर्गेज रेट्स में बढ़ोतरी करने की अनाउंसमेंट की है। 18 मंथ टर्म को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.95% कर दिया गया है, जबकि 2 ईयर टर्म को 5.19% और 3 ईयर टर्म को 5.39% कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों की प्रॉपर्टी में 20% से कम इक्विटी है उन्हें लो इक्विटी इंटरेस्ट रेट प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। इंटर आइलैंड फेरी ने फ्यूल से चार्ज में और बढ़ोतरी की है। कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स जो कुक स्ट्रेट पार कर रहे हैं उनके लिए फ्यूल से चार्ज को 54% कर दिया गया है। एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है। किवी रेल और मिनिस्टर फॉर रेल विंस्टन पीटर्स का कहना है कि इंटर आइलैंड फेरी के खर्चे बढ़ रहे हैं तथा वह खुद इन खर्चों को नहीं सह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत हासिल की, साथ ही असम और पांडुचेरी में भी सत्ता में वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर भी खुशी होती है। वह खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन 5 राज्यों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र हमारे रक्त में दौड़ता हुआ संस्कार है। आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, बल्कि आज भारत का संविधान भी जीता है। फिजी के प्रधानमंत्री सिथिवेनी रम्बुका का कहना है कि देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते पत्रकारों को बताया था कि फिजी मिलिट्री और पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है, ऐसे में देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद में गहरी चिंता व्यक्त की गई थी कि अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया जाता है तो इससे टूरिज्म से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में तय किया गया है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में सुरक्षा स्थिति स्थिर है।
5: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: हाई परफॉर्मेंस एक्सपर्ट डॉन ट्रिका की वापसी न्यूजीलैंड रग्बी में हो रही है। ट्रिका न्यूजीलैंड रग्बी के साथ 2010 से 2018 के बीच में काम कर चुके हैं। उसके बाद में वे मेजर लीग बेसबॉल टीम सैन डिएगो पैड्रेस में शामिल हो गए थे। न्यूजीलैंड रग्बी अभी भी मार्क रॉबिन्सन की जगह नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश कर रहा है। इस बीच पूर्व ब्लैक सॉक्स सॉफ्टबॉल कोच ट्रिका को हाई परफॉर्मेंस ऑफिसर के रूप में न्यूजीलैंड रग्बी में शामिल किया गया है।
8: बोर्ड,
9: उदास हो,
8: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
9: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
8: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी परसों पूरा।

0: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक। और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: डैडी कैसे? राम राम।
2: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
1: पेंटिंग हुए डैडी।
2: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। क्या नाम है उन लोगों के?
1: इनडेलेबल होम्स।
2: हमारे पास भी 10-15 घर रहता अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
1: अभी भी सकता बनाए डैडी, बना के हमें दे दो।
2: वाह।
3: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
4: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: Chill with Neha.

0: Chết nè hả. Chết nè hả. Chết nè hả. Chèo. Chèo.
1: Chill, chill with Neha. Show में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो तराने पर. Big hi, hello, good afternoon listeners and happy Tuesday. अच्छा, पिछले आवर में हमने एंजॉय करने शुरू किए अरिजीत सिंह के गाने और उसी थीम को इस घंटे में भी बरकरार रखते हुए आगे अरिजीत के और भी प्यारे प्यारे गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ. पर खास तौर से जो इस आवर की शुरुआत है ना, वो मैं उनके तीन ऐसे गानों के साथ करने वाली हूँ जो थोड़े सूफियाना अंदाज के हैं. वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और जैसे कहते हैं ना, मतलब ऐसे गाने जिन जो बहुत ही रूहानी लगते हैं. रूहानी इज सच अ ब्यूटिफुल वर्ड ना, मतलब वो शब्द ही सब कुछ कह देता है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. सॉन्ग्स विच आर सोलफुल. सो ऐसे तीन गानों के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम का ये आवर. वंस अगेन बिग हाई हेलो एंड स्वागतम.

सच में अरिजीत सिंह के गाने प्ले होते हैं तो मन मस्त मगन हो ही जाता है। और आज मस्त हो रखे हैं हम इस प्यारी सी मंगलवार की दोपहर में अरिजीत सिंह हिट्स के साथ। सो सम मोर सुपर हिट म्यूजिक कमिंग योर वे दिस आफ्टरनून ऑन रेडियो तराना।

0: एट दिलीप और समीर सैन
1: ब्रॉट टू यू बाय KMB कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748715।

0: with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate Mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
1: ओके, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई रील देख लिया और ऐसे स्किप करते रहते हैं ना, बेकार बेकार बेकार, जिस रील को आपने टाइम लेकर देख लिया उस तरह के बहुत सारे रील्स आने लगते हैं। अगर आपने कोई ऐसा दुखी वाला रील देख लिया, जिंदगी में कोई भाषण पेलता हुआ इंसान देख रहा है कि देखो ऐसे लोगों से बच के रहो, फिर उसके बाद हे भगवान और भी और, यू नो, एंड देन आपको ऐसे ब्रेन वॉश आपका हो जाएगा कि आप सोचोगे भाई यस यस यस यस दिस इज इट, बहुत ही डेंजरस है ना। और आपने किसी चीज को स्मार्टफोन पर ढूंढ लिया, गूगल कर लिया, सोच लिया उसके बारे में, फिर देखना उसी चीज के एडवर्ट्स आपके फोन पर कितना आता है। समटाइम्स दिस इज टू फ्रीकी है ना। वेल, वील हैव टू बी ट्राई ना। अभी जैसे AI आ गया है, अब बच्चों को स्कूल में मैं बताता हूँ कि अभी ना यू कैन यूज इट, इट्स अ टूल, इट विल स्टे, और उनको सिखाना भी है कि किस तरह से यूज करना है। आई रिमेम्बर बैक इन द डेज कैलकुलेटर्स आ गए थे और वो पुराने जमाने के टीचर्स, अरे उंगली पर गिनो, ऐसे गिनो, फॉर्मूला समझ जाओ। अरे जब इजी करने के लिए चीज आ गया है दुनिया में, मैं तो कैलकुलेटर से पहले के जमाने से हूं, मेरे मुझे लगता है कभी कभी मैं इतना एंटीक हूं, और मैंने कभी वो मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा ही नहीं। केवल 2 का जानता हूं मैं, 5 का जानता हूं, 10 का जानता हूं, और आई डिनाइड टू लर्न इट। मुझे मैथ्स वैसे नहीं मजा आता था, घर पर बाप भी सर पर चढ़कर ना काउंट करो, मैथ्स वाला टाइम टेबल बोलो, 1 2 2 2 2 3 2 2 ऐसे ही बोल देता था कभी कभी मैं। लेकिन मुझे पता था, भविष्यवाणी मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक जमाने में ना जिंदगी को आसान करने के लिए आप केवल सीरी से पूछ लोगे। देखा सीरी एकदम भनभना गई उधर। ओके, हाँ, कि कितना है, इफ आई वांटेड टू आस्क कि अभी 32 times 55 कितना है, तो वो बता देगी मुझे मल्टीप्लिकेशन। आधा थोड़ा सा वो लेजी ना रहा तो मैं ऐसे अपने मोबाइल वाला कैलकुलेटर पे जाकर डाल दूंगा, ठीक। और ऐसे ही अभी AI आ गया है तो किस तरह से यूज किया जाए, इट्स इंपॉर्टेंट। तो मैं बच्चों को बता दू, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें ना ठूस दीजिए, कभी कभी को होता है। आई थिंक डीजे ने अपना मेडिकल रिपोर्ट ही डाल दिया था उसमें कि बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने AI ने डरवाया उनको कि ये हो सकता है, ये ए भगवान ऐसा ना करें आप, ठीक है, डॉक्टर्स हैं आपको बताने के लिए, आपका मेडिकल जो रिपोर्ट आता है उसको एनालाइज करके आपको बताने के लिए। अभी आइए और भी गाने आपको सुनवाते हैं 5 पर नेक्स्ट वाला न्यूज़।

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे।
1: iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।

0: Quality Care Dental with over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800 My Dentist or 09626 5205.
1: Quality Care Dental. Always very gentle.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग।
5: दिल हंस पड़े तो गाना, दिल रो पड़े तो गाना,
6: बस बजना चाहिए गाना।
7: Proudly brought to you by Kashish Foods. Kashish Atta, 100% Chakki Fresh Atta, now available in all stores nationwide.

0: Auckland and Wellington traffic report.
1: Indelible Homes, trusted and experienced subdivision and build specialist. Call 0800 233 111.
2: Auckland Main Northern Motorway Constellation 35 minutes, Northwestern Mersey 29 minutes, Southern Motorway Manukau 40 minutes, Airport 30 minutes. Wellington City Centre says State Highway 1 Sepururua City Centre 20 minutes, State Highway 2 Selawa Hutt Central 25 minutes, Isbon 35 or Airport 22 minutes.
1: Indelible Homes, they specialise in building standalone and terraced houses and provide 10 years Master Builder Guarantee. Built with Indelible Homes.
3: Stay updated with Radio Tarana.
4: Download now the free Tarana mobile app.
2: I know, बहुत काम का चीज है बॉस, और यहाँ पर कब ये मास्ट हमारा गिर जाए, कब ट्रांसमीटर पे काम होने लगे, कब हमारे लिसनर्स भाग जाए हमें छोड़कर, I am starting to lose hope, सरंगा. Okay, लेकिन यस, जो लोग बने होते हैं हमारे साथ एकदम दिल से कमिटेड होते हैं, उस नो एक लेडी याद आ गई मुझे उधर, उनकी तरह नहीं कि हाँ जब आया दिल तब कर लो, नहीं है तो नहीं करना है. ओके, और एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस ठोको डिफेंस में, लेकिन हाँ जो लोग जेन्युइनली रेडियो तराना सुनते हैं, चाहे ट्रांसमीटर गिर जाए, चाहे उखड़ जाए सब कुछ, लेकिन वो सुनेंगे. इस तरह के लोगों की जरूरत होती है हमारी जिंदगी में. तो जितने भी लोग आई हार्ट रेडियो, रेडियो तराना वाला ऐप या फिर रोवा ऐप पर सुन रहे हैं, थैंक यू. थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन. अदरवाइज ऐसा होता तो यू नो ऐप ऑप नहीं होता, तो ये दो हफ्ते का काम होता. लोग कहते हैं अच्छा दो हफ्ते की छुट्टी है बॉस, जब मास्ट लग जाएगा, ट्रांसमीटर चलने लगेगा, तब सभी अनाउंसर्स आएंगे काम करने के लिए. काम चलता रहा थैंक्स टू द एप्स.

0: माँ।
1: हाँ मेरे लाल।
0: खुश हो ना माँ?
1: बहुत मेरे पुत्र।
0: नागर अच्छा है ना माँ?
1: बहुत वधिया है पुत्र।
0: आशीर्वाद दो ना माँ।
1: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कलावा च रहे हैं मेरे पुत्र।
0: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
1: चुप फिट्टे मुँह तेरे। ओ ते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
3: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रेज से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 0981538111। डी कैरोल कर्टन्स।
2: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस स्किल। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
4: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at ifurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
2: Right, bas bajna chahiye gana.

0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: Auckland में City Centre से Northern Motorway Constellation Drive 37 minutes, Northwestern Massey 28 minutes, Manukau 45 minutes और Airport 43 minutes. State Highway 1 से Porirua City Centre 22 minutes, State Highway 2 से Lawahat Central 25, Eastbourne 40 और Airport 22 minutes.
1: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSale. तो भेजे $20 का top up या $300 cash to your family and friends in the Pacific.
3: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
4: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
5: हर घंटे की समाप्ति पर दिलीप सैन समीर सैन के गाने कल से हमारे साथियों ने आपको सुनवाना शुरू किया। अभी ये वाला गाना सुनिए, इसके बाद 5 वाला न्यूज का वक्त हो जाएगा।

0: Chases Abuja Mix ka full range dekhe on chases.co.nz. Chases, feel the flavor.
1: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर.
2: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है, शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है. हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है. फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है. इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है. माँ को

0: एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गाड़ी से कई सामान मिले हैं जिन्हें चोरी का समझा जा रहा है। आरोपी को हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाना है। उन पर 6 counts ऑफ बर्गलरी, फेलिंग टू रिमेन स्टॉप्ड और रेकलेस ड्राइविंग वाले चार्जेस लगे हैं। वेस्टपैक बैंक के मुताबिक इस साल मार्च तक पिछले 6 महीनों में उसे $545 मिलियन का मुनाफा तो हुआ है, लेकिन उससे पूर्व वाले 6 महीनों के मुकाबले मुनाफे में 19% की गिरावट हुई है। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी हुई है। प्री प्रोविजन प्रॉफिट $795 मिलियन का है, जो कि पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 4% ज्यादा है। पिछले 6 महीनों में वेस्टपैक होम लेंडिंग में 5% या $73.3 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बिजनेस लेंडिंग में 6% या $35 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। डिपोजिट में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि $83.7 बिलियन है। इससे पहले BNZ ने $494 मिलियन नेट प्रॉफिट की अनाउंसमेंट की थी। ANZ को $1.2 बिलियन का मुनाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। इसका बड़ा श्रेय जाता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को। अब चुनावी नतीजों के बाद जब बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा चल रही है, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और बंगला माध्यम से शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति ही होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक पार्टी की तरफ से उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिजी के लंबासा के रारा एवेन्यू में जिस व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया, उनकी पहचान प्रेम चंद के नाम से की गई है। उनकी उम्र 50 साल से कुछ ऊपर बताई गई है। पुलिस प्रवक्ता आनाने सुरो का कहना है कि चंद पर चाकू से वार किया गया, हमलावर को हिरासत में लिया गया है। प्रेमचंद नॉर्दर्न प्रीमियर म्यूजिक सेंटर के डायरेक्टर बताए गए हैं तथा वे मल्टीकल्चरल सेंटर में पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर थे। वे कोरोखादी बुआ के रहने वाले बताए गए हैं। उन पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। उन्हें लंबासा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ज्यादा खून बह जाने के फलस्वरूप उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद में लंबासा शहर में सुरक्षा को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की गई है। प्रसाद अपने पीछे पत्नी और इकलौते बेटे को छोड़ गए हैं। वेलिंगटन फिनिक्स वेमेंस कोच बेव प्रिसमैन का कहना है कि टीम को इस हफ्ते ए लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच के लिए होम एडवांटेज मिल रहा है। वेलिंगटन फिनिक्स ब्रिस्बेन रोवर्स से एग्रीगेट 2-1 से पीछे है। प्रिसमैन का कहना है कि होम एडवांटेज के बल पर वह समझती है कि वेलिंगटन फिनिक्स टीम इस हफ्ते मैच जीत करके ए लीग ग्रैंड फाइनल में जगह बना सकती है।
1: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
2: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
3: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
2: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
3: सिंपल KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए। वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 years का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748871 पर, या विजिट कीजिए kmbconstruction.co.nz।
4: KMB कंस्ट्रक्शन, घर बनाए बिना स्ट्रेस। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
6: Auckland and Wellington traffic report.
7: Kashish Desi Ghee from Kashish Food. Shuddh taste aur rich aroma ke saath. Proudly, New Zealand mein banaya hua.
8: ओके, कशिश देसी घी की ओर से लेटेस्ट वाला ट्रैफिक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। ओकलैंड में अभी रास्ते कितने बिजी हैं ये चेकआउट कर लेते हैं। Okay, Auckland traffic update popping in front of me in 3, 2, 1.

0: Northern Moru a Constellation 30 minutes, Northwestern Messi 40 minutes lagega, or Southern Moru a Manukau tak 40 minutes lagega. इसके अलावा सिटी से एयरपोर्ट भी 40 मिनट अभी लग जाएगा आपको, सो गो इजी. वेलिंगटन में पोरीरुआ तक 20 मिनट्स, लवाहट सेंट्रल 25, एयरपोर्ट 20 मिनट्स लगेगा.
1: हर खाने को बनाए और भी टेस्टी कशिश देसी घी के साथ. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर, अब नेशन वाइड स्टोर्स में अवेलेबल.
2: ट्रेनर ड्राइवर

0: कल काफी लोगों से हमने बातें की थी, कल इंटरेस्टिंग था, कल शाम काफी लोगों ने कॉल की, बातें की आपसे, एंड आज सुबह जब मैंने जिलेश का प्रोग्राम सुना तो वो भी काफी होपफुल थे कि आज कल परसों में ये जो हमारा ट्रांसमीटर है जिस पर काम चल रहा है अगेन, ये जाकर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिनसे मिलते हैं, और आज किसी भाई साहब ने हमारे पास टेक्स्ट किया कि रेडियो किस डायल पर आता है, रेडियो तराना लोक, ये भी भूल गए, हे भगवान बॉस। ओके, अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाउ डू वी गेट ऑल दिस पीपल जो इधर उधर बिखर गए हैं वापस, दैट्स अनदर मिशन है ना। तो यो आप दोस्त जो अभी रोवा ऐप के जरिए, आई हार्ट रेडियो के जरिए सुन रहे हो, यू फॉलोस अ ग्रेट। ओके, अब कुछ कहीं कुछ रुका, लेकिन आपने कोशिश किया। अब वैसे भी दोस्त हैं कि कहेंगे अरे मार सारे के, जो भी आएगा वही हम सुन लेंगे, उसी से हम काम चला लेंगे, तराना है नहीं है कोई फिकर नहीं। सुजी, आप कैसे सुन रही हो अभी रेडियो?
1: ट्यून इन रेडियो
0: जी जी जी जी, और सब ठीक ठाक?
1: सब ठीक ठाक मिस्टर शर्मा।
0: डीजे ने उस दिन मुझसे पूछा, या बॉयस से पूछा ग्रुप चैट में, कि एनीवन फॉर वन ट्री हिल वॉक।
1: मैंने
0: वो हमें ले जाना चाहते थे वन ट्री हिल, अभी हम ढूंढ रहे हैं उधर वाइटाकरे डैम से लेकर फिर मांगरे माउंटेन, और साथ में जहां जहां कुछ भी चढ़ने वाला मिले हम चढ़ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। तो मैं उनसे बताने वाला था, इफ यू डोंट फाइंड एनीवन, सुजी इज रेडी।
1: श्योर, व्हाई नॉट,
0: चढ़ जाओगी कि टॉ करना पड़ेगा आपको?
1: तुम देखती हो, मैं, तुम जानते नहीं मैं कितना जल्दी पूरा वन ट्री हिल, तो 5 किलोमीटर।
0: डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ सुजी। ओह गुड गुड गुड गुड, आई लाइक द जोश।
1: ओके, सुनो एक गीत मेरे लिए आज लगा दो,
0: फिर से बोलो सुनो।
1: एक गीत मैं सुनना चाहती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: अभी पहले एक गाना बजा था, गंगा राम के समझ में ना आए, आपने सुना था वो गाना?
1: जी हाँ।
0: किसी गंगाराम को जानते हो आप?
1: फिजी में था एक, हमारे एक वैला के भीतर ऐसे एक रास्ता जाता था पीडा रोड, वहाँ एक गंगाराम था, वो गरीब फैमिली था। आई नो देम वेरी वेल।
0: एक हमारे अंकल भी थे, उनका नाम भी गंगाराम था, उनकी मिसिज अभी इधर ओकलैंड में है, राम राम मौसी, उनको हम याद कर लेते हैं अगर सुन रही है रेडियो तो। चलो उनको भी याद कर लिया हमने आज। आपका गाना मैं पहले अपने थोड़ा एक नया वाला भी, क्योंकि 4 से 5 के बीच में सभी आईटीज और पुराने गाने चल रहे थे, एक नया गाना बजाने के बाद तुरंत आपका गाना मैंने क्यू कर लिया है। झलक सुनवाऊं आपको ये गाना?
2: तेरे प्यार में सारा आलम।
0: ओए होए होए होए होए, ये गाना पूरा आपको सुनाएंगे एक गाने के बाद, ठीक?
1: ओके, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ गुड नाइट टू।
0: गुड नाइट, अभी नाइट का, अभी तो नाइट दूरी है, बहुत दूर है अभी नाइट।
1: अच्छा मिस्टर शर्मा, मैं तो अपने अपने खाट में खा पी कर एकदम अपने बगल में रेडियो रख कर सुन रही हूँ।
0: कब नींद लग जाए पता नहीं है ना, फिर उसके बाद बड़का प्रॉब्लम। एनीवे सुजी, चलो आप ऐसे लेट के सुनते रहो, आपका गाना आने वाला है।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके बाय बाय, हो गया सुजी से बात। धर्मेश आपका स्वागत है।
3: सुनो
0: क्या? गुड ट्राई, उतना उसमें उतना जोश नहीं था, फिर से ट्राई करो।
3: हेलो
0: ओके, हेलो आपका स्वागत है।
3: हेलो
0: हेलो सर, बोलना तुम्हें बोलना तो सुनो, रॉन्ग डायलॉग।
3: हेलो सुनो,
0: अच्छा राइट राइट, बस कर दो आप, रुक जाओ।
3: ना
0: वो भी बात है, बहुत दिन लगा इसको हमें यू नो वो समझौता करवाने में, इतना टाइम तो लग
3: गया।
0: हाँ वो अभी जा रहे हैं ओवरसीज घूमने के लिए। अच्छा लेकिन हाँ इतना तो टाइम ईरान और ट्रंप ने नहीं लिया जितना टाइम हमें लग गया था।
3: वही तो बात
0: चल रहा है। एक गाना है और टॉप 100 आप काफी दिलचस्पी से सुनते हो, आपको पता चल गया कि कौन सा गाना मैं पेश करने वाला हूँ आजकल? उस गाने का बहुत मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ घूम घूम के
3: मार्केटिंग का। तुम कल बजाए 5:30
0: कौन वाला गाना था?
3: अभी तो थोड़ा पुराना है बट तुम उसके एकदम मार्केटिंग करता है कि नंबर 3 या 5 पे आ जाए।
0: ओहो नंबर इतना पुरान भी नहीं ऐसे
4: चांद देख लेना तुम्हें हम नजर आएंगे।
0: हा मजा आ गया इस गाने का।
3: भाई अच्छा भाई
0: चलो
3: आवाज भी बजा देना
0: कैसे लगे बोले इसे बोले हमारे बजा देना
3: यस शुआ
0: कौन सा गाना आपका है?
3: सोचेंगे तुम्हें प्यार करेगी कि नहीं।
0: ओहो ब्रो अभी लास्ट वीक मैं सोच रहा था यही गाना गा रहा था गुनगुना रहा था। चलो वो भी गाना मैं पेश करता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं अच्छा ये आप लोग रोमांटिक गाने बता रहे हो इसीलिए कि आज ट्यूजडे को रोमांटिक गाने ही आएंगे। और दैट रिमाइंड्स मी कि आज सराना ड्राइव विद कैप्टन वाला फेसबुक पेज पर कुछ लोगों ने कुछ गानों का जिक्र भी किया है।
3: भाई तो राइट है भले यार सुन ली पुरानी कौन तक चांद की जा रामायण वाला गाना किसने बताई से भजन वाला गाना
0: कब बताई?
3: भूल गई
0: कि आज मंगलवार है। चलो अभी रख देते हैं फोन काट देते हैं ये फोन वाला वायर निकाल देते हैं दीवार से हम पूरा थोड़ी देर के लिए। ओ या उनको मैं जाकर एक फोन देके आया दिखाया ऐसे ऑन करना है फिर ऑफ करो फिर ऑन करो फिर देखो कैसे चलेगा तराना है रोवा ऐप ये वाला है पेपल वाला इसको दबाना है ऑफ करने के लिए स्क्वायर दबाना है सब दबा दबा कर दिखाया फिर जैसे मैं घर आया वो सब भूल गए क्या दबाना है।
3: इसने
0: आई नो बट ऑल गुड जो भी सुनना है आई होप कि हमारा स्टेशन वापस आने के बाद ये लोग वापस लौट के आए भाई साहब तो उनको डिफरेंस पता चलेगा। चलो कल बात करते हैं फिर अभी गाना वही सुनवाते हैं जिसको लाना है टॉप 100 जब द शर्मा ब्रदर्स टॉप 100 लेकर आएंगे दून दो रिजोर्ट राखी से। और टॉप 100 गानों में ये गाना 90s में नहीं सुनने को मिलेगा 80s में नहीं सुनने को मिलेगा 60s 50s 40s में नहीं 30s में भी नहीं 20 टॉप 10 में ये गाना जरूर रहेगा। शर्मा ब्रदर्स का जिक्र हुआ तो सबसे छोटे शर्मा सोनल शर्मा आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। सोनल ब्रो आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सोनल आज अपना बर्थडे मना रहे हैं मम्मी डैडी सूर्या शर्मा और शर्मिला शर्मा बहन शिविका शर्मा एंड आई नो एक उनके नाना है मेरे ख्याल से दूधनाथ इज इन तावुआ समूह और कुछ फैमिली मेंबर्स उनके हैं लंबासा में। सभी ने याद किया है रेडियो तराना के जितने भी साथी हैं सभी उनको ग्रुप चैट पे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी पैसिफिक आइलैंड इन्वेस्टमेंट्स के उनके क्लाइंट्स हैं उन सभी ने सोनल को आज हैप्पी बर्थडे विश किया। सोनल तुम भी चांद देख लेना आज।

0: Call us now.
1: ओके ओके ओके, ये सभी गाना मुझे याद आया कि अभी बजा नहीं है। जब हमने बातें की धर्मेश से, उन्होंने गाने का जिक्र किया था, वो अभी तक नहीं आया। और कुछ और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं जो आपको आज सुनवाने हैं। और जितने भी दोस्तों ने आज तराना ड्राइव विद कैप्टन वाला फेसबुक पेज पर जाकर अपने गानों का जिक्र किया, बताया, फरमाइश की आपने, थैंक यू इसके लिए। और ओके, और इसके अलावा उधर जैन, आपका बर्थडे आने वाला है ब्रो, आपका बर्थडे मैसेज अभी हमारे सामने पॉप अप हुआ, आई थिंक इट्स फॉर टुमारो, राइट। एनीवाइज, आपको भी याद करते हैं। स्नेहा, आपका भी खास स्वागत है। इनके साथ में अमित, आपने गाने की फरमाइश की है, बट आई डोंट थिंक इन एनी वे वो वाला गाना रोमांटिक है जो मैं अभी आपको सुनाऊं, ठीक। वो जो गाना है शायद 5 बजे के बाद आपके लिए मैं लेकर आऊं। मैडम जी, आपका स्वागत है। हेलो
2: हेलो, कैसे हो शर्मा जी, कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ। आप कैसे सुन रही हो रेडियो, ये बताइए, कहाँ हैं आप?
2: मैं हार्ट पे सुन रही हूँ।
1: गुड, देखो नया चीज हो गया, आई हार्ट भी, जहाँ भी जाओगी दुनिया में आई हार्ट आपके साथ जाएगा।
2: हाँ जी, मैं तो बहुत पहले से सुनती हूँ, और वो गाना मुझे सुनना है माँ के मदर्स डे के शुभ अवसर पे, वो मदर्स डे को, वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है प्यारी प्यारी, ये वाला गाना बजा देना प्लीज
1: जी। अभी वो जो धर्मेश ने बताया वो करता हूँ, फिर उसके बाद ये तू कितनी अच्छी है वो वाला गाना भी बजा देता हूँ।
2: सूजी ने तो बहुत बढ़िया गाना चुना था, सूजी का गाना भी बहुत अच्छा था, पुराना वाला
1: अच्छा था, है ना? गुड, चलो
2: पुराना गाना को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।
1: थैंक यू निर्मला, आपने बताया जो वो गाना मैं अभी सुनवाऊंगा। पहले एक और गाना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्रो,

0: Mercury, just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: New Zealand के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। Multi DJ are known to shoot quality wedding videos and breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ.
4: With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021-058-4711.
5: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Auckland and Wellington traffic report.
7: पापाटोई, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग।
8: ओके, और यहाँ पर जाकर शॉपिंग आप करें और देखें कि स्पेशल से कैसे आपको फायदा हो। लेकिन अभी लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट लेकर आते हैं। कॉन्स्टलेशन तक पहुंचने में इधर ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे 35 मिनट्स, मैसी 40 मिनट्स, मैंने कहा भी 40 और एयरपोर्ट भी 40। 40 इज द मैजिक वर्ड। और वेलिंगटन में पोरिरुआ तक 25, लवाहट सेंट्रल 30, Isbourne 38 और एयरपोर्ट 20 मिनट्स लगेगा आपको।
7: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।
8: अभी मैं चेकआउट कर रहा था, इधर थोड़ी थोड़ी सी बदरी बूंदाबांदी हो रही है और आजकल तो इतना बजे तक अंधेरा भी होने लगता है तो वो लोग, बट देखते हैं हम लोग, जो जिनको वॉक पर जाना है उनको बहाना नहीं रोकता। लेकिन यप, शाम वाला जो है शायद हेल्थ एंड सेफ्टी रीजन से भी कुछ लोग बाहर ना निकले, कुछ थोड़ा सा ऐसे ग्लिटर उटाला पहन कर जाएं या स्माइल करते रहें रिफ्लेक्टिव वाला कपड़ा, हाई विज यूनिफॉर्म पहन कर बाहर निकले रात के समय। अगे मैं देख रहा था कि कल वेदर कैसा रहेगा आपके शहर में। इधर ओकलैंड में ग्रे ग्लूमी वेदर दिन भर रहेगा, हैमिल्टन में भी वैसा वेदर रहेगा, वेलिंगटन में भी वैसा वेदर रहेगा, लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस्टम बेस्ट वेदर जो है वो क्राइस्टचर्च में रहेगा। फुल ऑन धूप कल दिन भर खुली मतलब खिली रहेगी। सो येप, जो क्राइस्टचर्च में है लोग उन सभी का खास स्वागत। सुनते रहे आप भी ऐप पर रोवा, आई हार्ट या फिर किसी भी और ऐप के जरिए आप लोग सुन रहे हो हमारे ये शो। थैंक यू। मदर्स डे करीब है, हैप्पी मदर्स डे आपकी मम्मी को भी और मेरी मम्मी को भी।

0: Call Ajeshni today on 021-96-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 021-96-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: Auckland and Wellington traffic report.
2: Pacific में अपने family and friends को भेजे DigiCell का $20 या उससे ज्यादा का top up या करे cash transfer $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी partner website से My Cash Wallet के साथ और जीते exciting prizes.
3: Auckland City से Northern Motorway Constellation Drive 36 minutes, Northwestern Massey 45 minutes, Southern Manukau 43 minutes, Auri Airport 40. Wellington City Centre से Porirua City Centre 24 minutes, Lower Hutt Central 30 minutes, Eastbourne 40, Auri Airport 22.
2: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSale. So, bheje $20 ka top up ya $300 cash to your family and friends in the Pacific.
4: Kaun?
5: Main Yamraj hoon.
4: Oh, jai ho Maharaj. Lene aaye ho? To chalo.
5: Kamal hai. Jaane ki itni jaldi.
4: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है. ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है.
5: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए.
4: ओके थैंक यू महाराज. मैं बांटता हूँ ये ज्ञान. सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर.
6: Join the great big balance check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
7: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
8: Did you know a simple clean of your heat pump filter could save you up to $50 a year on your energy bills? All it takes is a quick vacuum or a light wash every few months. Search EECA. That's EECA. Get winter ready.
9: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सेन.
10: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
2: रेडियो तराना, टाइम चेक।
3: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz. Foods.
4: शाम ढल रही है, घड़ी का समय आप भी मिला लें। नमस्ते, 6 बज चुके हैं और आपका कैप्टन हमेशा की तरह कंसिस्टेंट शो द ड्राइव शो में आपके साथ।
5: दिस इज तराना न्यूज।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। एक शिक्षक ने उस पल का वर्णन किया जब उन्हें लगा कि एबी केव्स की जानलेवा यात्रा के दौरान छात्रों को बचाते समय उनकी जान जा सकती थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए शिक्षक ने कहा कि केव के अंदर पानी का स्तर

0: घोटाला नहीं गया था। स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर पहले ही चार्जेस लगा दिए गए हैं तथा स्कूल को रेपरेशंस में $500,000 या आधा मिलियन डॉलर्स भरने का आदेश दिया जा चुका है। लिबरल लीडर क्रिस हिपकिंग्स का कहना है कि वे नहीं सोचते कि कॉलिशन सरकार समय से पहले चुनाव कराएगी। कॉलिशन सरकार के भीतर सार्वजनिक मतभेदों ने 7 नवंबर की निर्धारित तिथि से पहले अचानक चुनाव की संभावना को जन्म दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस हिपकिंग्स ने कहा कि उन्हें लगता है कि नेशनल न्यूजीलैंड फेस्ट और एक्ट की गठबंधन सरकार अंत तक सत्ता में बनी रहेगी। लेबर नेता का कहना है कि जब तक कॉलिशन सरकार में शामिल तीनों पार्टियां सत्ता में डटी रहेंगी, न्यूजीलैंड वासियों के लिए स्थिति शायद बदतर होगी, क्योंकि वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर उतना ध्यान नहीं देंगे। विदेश मंत्री विंस्टन पीरस ने यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए मिसाइल हमलों की निंदा की है। ईरान की ओर से किए गए इन हमलों को विदेश मंत्री ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इन हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है और इससे शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। उन्होंने तत्काल ही इस तरह के हमलों को रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए हमलों के बाद में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंपा जीत हासिल करते हुए हैट्रिक का रास्ता साफ कर लिया है। बीजेपी ने नतीजों और रुझानों में 2/3 का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी ने असम में तमाम अनुमानों को गलत साबित करते हुए हैट्रिक लगा दी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि साख और रसूख का है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रदर्शन को ऐतिहासिक जनादेश बताया। फिजी में प्रस्तावित इमिग्रेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत फिजी में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं, जिससे बॉर्डर कंट्रोल एनफोर्समेंट और प्रोसिक्यूशन को और मजबूती मिलेगी। जो परिवर्तन किए जाएंगे उसके तहत इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बिना सेज वारंट के किसी को सेज करने का अधिकार मिलेगा, साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी तलाशी ली जा सकेगी। हरिकन्स खिलाड़ी डेवन फ्लैंडर्स क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि उन्होंने जापानीज क्लब के साथ में 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फ्लैंडर्स के जापान जाने का मतलब है कि वे ऑल ब्लैक्स की ओर से खेलने का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि जापानीज येन कमाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं।
1: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
2: सैटरडे 9 मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स जैसे 1 free pillow विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड।
3: ऑकलैंड सिटी से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव 36 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 45 मिनट्स, सदर्न मानिकाओ 43 मिनट्स और एयरपोर्ट 40। वेलिंगटन सिटी सेंटर से पोरिरुवा सिटी सेंटर 24 मिनट्स, लवाहट सेंट्रल 30 मिनट्स, इस्बोन 40 और एयरपोर्ट 22।
2: मैट्रेसेस स्टार्टिंग From just $299, the widest range of budget beds and high-tech beds at NZ Beds. So, I inke Manikau Supercenter store mein on Saturday 9th May at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
4: Trina Drive. Trina Drive. Trina Drive.

मंडे से फ्राइडे के बीच में मैं आपके साथ में रहता हूँ। लास्ट वीक जब संगीता से हमने बातें की, वो चटपटी खबरों में उनको सब्स्टिट्यूट मैंने जैसे फील्ड किया, तो उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि या आजकल उनको मैं अपना शिफ्ट नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, और ना ही डीजे को बोल रहा हूँ, ना ही सोनल से कह रहा हूँ, और ना ही पवन से मैं कहता हूँ कि आई नीड अ कवर, मैं मेरी तबीयत खराब है, मैं ओवरसीज जा रहा हूँ घूमने के लिए। मैं रेडियो जहाँ जाता हूँ वहाँ से करता हूँ। कमिटमेंट भी एक चीज होती है जिंदगी में। अगर इंसान कमिटमेंट सीख ले और जेन्युइनली सीख ले तो उनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, अदरवाइज इंसान अपने आप को हमेशा अकेला पाएगा।

0: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus, our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today, or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
1: हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
2: तो डॉक्टर अजीत के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
1: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
2: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
1: पर यह सुरक्षित तो है ना?
2: सिर्फ सुरक्षित नहीं, ये तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
3: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurda.com.
4: आर यू हैविंग ट्रबल विद पुलिस और फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस एंड नीड समवन हु कुड बेस्ट रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ? गुल लॉ लीगल सर्विसेज विद ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपर्ट क्रिमिनल लिटिगेशन एक्सपीरियंस, दे नो बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस साइड ऑफ द लॉ. देयर फाउंडर मिस्टर गुल, एन एक्स सीनियर न्यूजीलैंड पुलिस प्रोसिक्यूटर, स्पीक्स योर लैंग्वेज. चूज गुल लॉ लीगल सर्विसेज वेयर एक्सपर्टीज मीट्स अंडरस्टैंडिंग. विजिट gullaw.co.nz today, or you can call on 022-353-0872 today.
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.

0: अभी एक छोटा वाला ब्रेक लेने का वक्त हो गया है और आपके लिए कैप्टन की किताब से लाने का वक्त हो गया है। कैप्टन की किताब से इंटरेस्टिंग है बॉस, काम की बात है। आप खाली बैठे रहोगे, दुख है तो और ज्यादा दुखी हो जाओगे। कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, प्रॉब्लम कम हो जाएगा, गुम भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। प्रॉब्लम से आप दूर हो जाओगे।
1: कैप्टन की किताब से
2: आइए सुनते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग सेंसेशनल। कैप्टन की किताब से।
3: जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि दुख के लिए, नफरत के लिए, गुस्से के लिए आपके पास समय ही ना हो। याद रखिए, खाली दिमाग ही दुखों का घर होता है।
1: कल शाम भी इसी समय कैप्टन की किताब से हम पढ़ेंगे एक और पन्ना।

0: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
1: क्या काम की भाग दौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और डूबे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड, मॉन्ट्रोस। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
2: Don't miss this. It's the final days of Big Save's massive bed sale. Whatever size of bed you're after, from single to California king, we have it. And today we're having a massive bed sale. Queen beds from only $7.99. Get a free mattress protector with our Pacific California King bed, only $17.99. And get a single bed for only $2.99. We've got thousands of beds in stock. Take home a new bed today, only at Big Save.
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM,
3: 378 RRIMU रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: One temple, one community, eternal blessings.
5: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
0: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
6: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness, and understanding of their clients' legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction, for property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters. Call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
7: Mummy, earphone kan mathi nikal jara.
8: હે શું કીધું દીકરા?
7: અરે કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર.
8: તું કેટલો સારો છો દીકરા.
7: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે.
8: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘરડીમાં કામ કરાવો છો, હે ભગવાન.
7: મમ્મી
8: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
7: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ.
0: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ. ફોન 0800-233-111.
9: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
10: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम.
9: जीनियस. अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
10: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान.
11: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान. फोन 0922555500. टीज एंड सीज अप्लाई.
12: टुडे इन हिस्ट्री.
13: आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास हुए. अभिषेक बनर्जी, ये बहुत ही लो रेटेड कलाकार हैं, गूगल के रहे इनके पास अभी इनके बारे में, अभिषेक बनर्जी, लेकिन बहुत ही सॉलिड एक्टर है बॉस. देखने में भी ना एक सिंपल सा ह्यूमन बीइंग लगता है, कोई हीरो मटेरियल नहीं है. दांत टेढ़े मेढ़े लगता है उनके होंठों से कि बहुत ज्यादा तंबाकू भी पीता होगा. डार्क कॉम्प्लेक्शन, लेकिन एक्टिंग एकदम 10 out of 10 देता है ये बंदा. अभिषेक बनर्जी उनका नाम है. Okay, I didn't know his name. मैं जानता हूं उनके शक्ल से और जब फिल्मों में उनको देखता हूं, then I know I'm up to expecting something good from him. सब जितने भी टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किए हैं, फिल्मों में काम किए हैं, एकदम सॉलिड काम किया है मिस्टर बैनर्जी ने। यंग एंड टैलेंटेड है। और आज के दिन इतिहास के पन्नों में आईसी नौशाद का डेथ एनिवर्सरी आज है। और इसके अलावा आज मेक्सिको में पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है किस चीज, चिनो डे मायो के लिए, सेलिब्रेटिंग बैटल ऑफ पोब्लो। और साथ में आज ही के दिन फिस्ट ट्रेन रोबरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है कुछ देश, कहां पर, ओके, समवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इन डिटेल, कहीं पर ट्रेन रोबरी हुई और सेलिब्रेशन, हे भगवान। गाय फॉक्स वाला भी ऐसा है, गाय फॉक्स यहां बनाते हैं, वो पार्लियामेंट को ब्लॉ करने का फायरवर्क्स और बॉम्ब वगैरह लगाकर, डायनामाइट वगैरह लगाकर ब्लॉ करने की कोशिश की गई थी, गाय फॉक्स अभी भी हम मनाते हैं विद फायरवर्क्स, है भगवान, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसी चीजें। और इसके अलावा आज ही के दिन उधर जापानीज टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पिक्चर्स माउंट एवरेस्ट से ट्रांसमिट किया गया। जापान में तो माउंट फूजी है, लेकिन ये गए उधर इंडिया माउंट एवरेस्ट और वहां से लाइव टेलीकास्ट उन्होंने किया था, जापान के लोगों ने ऐसा किया, इंटरेस्टिंग। और भी बहुत चीजें हुई है, वर्ल्ड एस्थमा डे भी है, आपके घर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को होगा, गैस हीटर्स शायद अभी विंटर में ये और प्रॉब्लम देगा उनको, तो घर का वेंटिलेशन के बारे में, हीट पंप के बारे में भी हम बताते रहते हैं, रिलायंस वेंटिलेशन के बारे में बताते हैं, तो एस्थमा से इस मतलब ये गैस हीटर्स और प्रॉब्लम दे सकते हैं, ओके। और अभी जब पोलन ग्रेन्स, जब विंटर के बाद नौ सीजन चेंज होगा, उससे भी एस्थमा जो है ये प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर बच्चे मेडिकेशंस यूज करते हैं, इनहेलर्स यूज करते हैं, तो उनके टीचर्स और स्कूल को भी इसके बारे में बता दें, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर बच्चों में है, टीचर्स और उनके कोलीग्स, उनके फ्रेंड्स को भी मालूम होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुआ एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू हेल्प। एनीवेज, अभी आइए एक और गाना आपको हम सुनवाते हैं, जो लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करेंगे।

0: Auckland and Wellington traffic report.
1: Be part of one of the most important and listen to segments on Radio Toronto. The traffic report, aired during peak hours, 6 a.m. to 9 a.m. and 3 p.m. to 7 p.m.
2: Auckland and Northern Motorway Constellation Drive, Adha Ghanta, Northwestern Massey, 40 minutes, Manukau, 40 minutes, our airport, 35. Wellington City Centre, Seporirua City Centre, 22, Lower Hutt Central, 25, Isbourne, 40, our airport, 20.
1: Increase brand awareness by contacting Ajeshni at 02196-1386 to secure a sponsorship.
3: It's your birthday. It's your birthday. Happy birthday to you.
2: आज 5 तारीख है, पांचवा महीना, और आज मैं पर्सनली दो लोगों को जानता हूं, या एक को पर्सनली जानता हूं और एक को देख देख कर हम जानते हैं कि हाँ, ये दो लोग जो है बहुत ही टैलेंटेड हैं। एक तो उधर अभिषेक बैनर्जी, इनके बारे में गूगल करें, फिल्मों में काम करते हैं, लो बजट फिल्मों में इनको आपने देखा होगा, लेकिन सॉलिड एक्टर। और दूसरे हमारे एक्टर शर्मा ब्रदर्स के सेठ शर्मा, सोनल शर्मा का आज बर्थडे है। कॉग आपको हैप्पी बर्थडे, और इनके साथ में अनीता चंद का बर्थडे है, और जहेब खान का बर्थडे है, प्राची निकित पटेल आज आपका बर्थडे है, प्राची हैप्पी बर्थडे आपको भी, और इनके साथ में और भी दोस्त हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं, आई नो। और इसी समय ये वाला सिस्टम मेरा थोड़ा थोड़ा सा बफा करने लगा, हाउ कैन दैट बी ब्रो, ओके विल कम बैक टू दैट। और देखते हैं और कौन कौन से दोस्त हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं सोनल शर्मा के साथ में। ओके, आज नेहा दत्त एवनडेल में अपना बर्थडे मना रही है, नेहा हैप्पी बर्थडे। डैडी है प्रवीण दत्त, मम्मी है शैली, और बहन शायना, और आज ही ऑकलैंड में नाना नानी मिस्टर मिसेस प्रकाश चंद यूएस में, दादा दादी और तमाम परिवार वाले हैं। नेहा दत्त आपको हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इनके साथ में आज सुबह से हमारे साथियों ने कुछ और हमारे दोस्त हैं जिनको हैप्पी बर्थडे विश किया। Okay, नेहा आपका नाम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको एक और बार हैप्पी बर्थडे। और इनके साथ में आज योगेश चंद्र सिंह, ये है वो कैलिफोर्निया में है जिनका बर्थडे है। योगेश हैप्पी बर्थडे, आपकी खुशियों में आपकी वाइफ है अनीता देवी सिंह, बच्चे हैं अविनेश सिंह, अविकाश सिंह, अविनाश सिंह, अनीश सिंह और सोनम आपकी बेटी, इन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है। बहुएं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, भाई बहन भाभियां, और साथ में जीजा और नीज नेफ्यूज जितने हैं, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, सभी ने याद किया है। और आपके भाई राकेश और फैमिली फ्रीमंट कैलिफोर्निया से याद कर रहे हैं हमारी ओर से आज योगेश भाई। इधर ओकलैंड से आपको हैप्पी वाला बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे। आज हम विश करते हैं उमावती चंद को, कैलिफोर्निया में अपना बर्थडे मना रही हैं। उमा जी हैप्पी बर्थडे, हस्बैंड प्रकाश चंद, बेटे हैं विकास चंद और बहू विंदिका चंद, और साथ में वेनू का चंद, और ग्रैंड चिल्ड्रन है, भाई बहन और जितने भी और परिवार वाले हैं, सभी ने याद किया है। यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी से, इंटरेस्टिंग है बॉस, आप लोग वहां बैठकर रेडियो ताराना सुन रहे हो और वहां से हमारे स्टेशन और हमारे लिसनर्स को आपने शामिल किया, इजंट दैट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। टानिया आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इनके साथ में भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अमृत लाल दयाराम जी माउंट रॉस्किल में हैप्पी बर्थडे, मांगरे में उषा मोदक जी आपका बर्थडे है, और ग्लेनिडन में विमला शर्मा जी आपका बर्थडे है। भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स ने आज आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। इनके साथ में कुष्मा देव, हेलो हैप्पी 80th बर्थडे कुष्मा, बहुत सारा प्यार मिला है बच्चों की ओर से, फैमिली फ्रेंड्स की ओर से, सभी ने बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं दी हैं, हैप्पी बर्थडे। सोनल शर्मा ब्रदर्स की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे ब्रो, आपके डैडी की ओर से भी, सूर्या शर्मा, मम्मी शर्मिला शर्मा, बहन शिविका की ओर से, नाना मेरे ख्याल से फिजी में है, दूधनाथ इज द नेम आई बिलीव, उन्होंने भी प्यार आशीर्वाद दिया है, और जितने भी और परिवार वाले उधर लंबासा में है, तावुआ में है, जहां कहीं भी हैं, और पैसिफिक आइलैंड इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सभी ने आज आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। सोनल हैप्पी बर्थडे।

क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला, या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करें कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस। Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt. Is Mother's Day ko banaye aur bhi special DigiCell ke saath. Bas bheje $20 ya usse zyada ka top up ya $300 ya usse zyada ka cash transfer inki kisi bhi partner website se My Cash Wallet ke saath to your family and friends in the Pacific. Aur aapka naam turant jayega draw mein to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे। आशिक होम्स लिमिटेड, फॉर द first time rent to buy, fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue, finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.

ट्यूजडे वाला प्रोग्राम बस खत्म होने को है, दो गाने आपको हम सुनवाएंगे। और आज ट्यूजडे रहा तो आज बहुत सारे रोमांटिक गाने भी आपको हमने सुनवाए, 5 से 6 के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ये सेगमेंट जाता है। जितने भी दोस्त अभी देर से हमारे साथ शामिल हुए हैं उनका भी स्वागत है, संजना और साथ में उदय उधर US में, उनका भी खास स्वागत है। Okay, अभी ये गाना, इसका मजा लीजिए और थोड़ी ही देर में हम बताएंगे आपको कि कल आपके शहर में वेदर कैसा रहेगा। डू यू नीड अ जैकेट, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में।

0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव 25, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 25, मैनिकाउ 35 और एयरपोर्ट भी 35, वेलिंगटन सिटी सेंटर से स्टेट हाईवे 1 से पोरिरुवा सिटी सेंटर 20, स्टेट हाईवे 2 से लोअर हट सेंट्रल 25, इसबोर्न 40 और एयरपोर्ट 22।
1: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ $1,500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजीसेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।
3: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
4: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 01874871 पर।

0: यार मुझे फिजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
4: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
5: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
6: हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं, या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं, माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है, माँ को सब पता होता है।
7: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
8: रेडियो तराना, टाइम चेक, नाइट चेक।
2: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। Phone 0800 233 111. Website indelibleholmes.co.nz.
1: दिन के अंतिम खबरों का वक्त हो गया है। अभी 7 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। इट्स न्यूज टाइम।
9: दिस इज तराना न्यूज।
10: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। विदेश मंत्री विंस्टन पीरस ने यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए मिसाइल हमलों की निंदा की है। ईरान की ओर से किए गए इन हमलों को विदेश मंत्री ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इन हमलों की निंदा की और उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है और इससे शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। उन्होंने तत्काल ही इस तरह के हमलों को रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए हमलों के बाद में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक टॉक शो होस्ट द्वारा बार बार पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बताने से इनकार कर दिया कि ईरान युद्ध के दौरान जारी युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है या नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ईरान और अमेरिका दोनों ओर से हमलों के कारण से अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जबकि अमरीकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी है।

0: मौजूदा नियमों के अनुसार स्टूडेंट्स मुफ्त बस सेवा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वे अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ते हों। इसमें प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स जिनका घर स्कूल से 3.2 किलोमीटर दूर है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनका घर 4.8 किलोमीटर दूर है वे फ्री बस सेवा को फिलहाल काम में ला सकते हैं। एक्ट सांसद एंड्री होगार्ट ने कहा कि रूरल इलाकों में कुछ परिवार अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी चला करके ईंधन बर्बाद कर रहे हैं जबकि उनके सामने वाली सड़क पर बस खाली सीटों के साथ में जाती हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूल सस्ता नहीं है और न ही समय मुफ्त है। ऐसे में एक्ट पार्टी चाहती है कि बच्चों को किसी भी गुजरती स्कूल बस में चढ़ने का मौका मिले बशर्ते उनमें जगह हो। लेबर नेता क्रिस हिपकिंग्स का कहना है कि वे नहीं सोचते कि एक्ट लीडर डेविड सिमो ने सोच समझकर अपनी पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को देश में $6 पे डे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भरना पड़ेगा। लेबर नेता क्रिस हिपकिंग्स का कहना है कि इस तरह की लेवी लागू करने का मतलब होगा कि माइग्रेंट्स देश आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का रुख कर सकते हैं।
1: I think David Seymour hasn't thought through some of the consequences of what he announced over the weekend. For example, his new migrant levy that they would pay daily is ultimately likely to flow through into increased costs for New Zealanders who rely on those migrant workers.
0: एक शिक्षक ने उस पल का वर्णन किया जब उन्हें लगा कि एबी केब्स की जानलेवा यात्रा के दौरान छात्रों को बचाते समय उनकी जान जा सकती थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए शिक्षक ने कहा कि केव के अंदर पानी का स्तर लगभग 7.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेकंड के भीतर गर्दन तक पहुंच गया जिससे वे खुद पानी में डूबने लगे। वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपने आसपास के लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फांगरे बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए केव में गए हुए थे। नॉर्थलैंड के एबी केव्स में अचानक पानी भर जाने के बाद में 15 साल के केनिन पिथेरा की मौत हो गई। ये घटना मई 2023 की है। फांगरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि हेवी रेन वार्निंग होने के बावजूद इस ट्रिप को टाला नहीं गया था। स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर पहले ही चार्जेस लगा दिए गए हैं तथा स्कूल को रेपरेशन में $500,000 या आधा मिलियन डॉलर भरने का आदेश दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत हासिल की, साथ ही असम और पांडुचेरी में भी सत्ता में वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर भी खुशी होती है। वह खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन 5 राज्यों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र हमारे रक्त में दौड़ता हुआ संस्कार है। आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है बल्कि आज भारत का संविधान भी जीता है। हाई परफॉर्मेंस एक्सपर्ट डॉन ट्रिका की वापसी न्यूजीलैंड रग्बी में हो रही है। ट्रिका न्यूजीलैंड रग्बी के साथ 2010 से 2018 के बीच में काम कर चुके हैं। उसके बाद में वे मेजर लीग बेसबॉल टीम सैन डिएगो पैड्रेस में शामिल हो गए थे। न्यूजीलैंड रग्बी अभी भी मार्क रॉबिन्सन की जगह नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश कर रहा है। इस बीच पूर्व ब्लैक सॉक्स सॉफ्टबॉल कोच ट्रिका को हाई परफॉर्मेंस ऑफिसर के रूप में न्यूजीलैंड रग्बी में शामिल किया गया है। मैनचेस्टर सिटी टीम आज सुपर प्रीमियर लीग मैच में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हासिल करने से वंचित रह गई है। मैनचेस्टर सिटी की ओर से इस मैच में डोकू ने पहला गोल 43rd मिनट में बनाया था। एवर्टन ने कमबैक करते हुए 68 और 85th तथा 73rd मिनट में गोल बनाने के बाद में इस मैच को 3-3 से बराबर में खेला। डोकू ने 43rd और इंजरी टाइम में दूसरा गोल स्कोर किया था जबकि हेलान ने 83rd मिनट में मैनचेस्टर सिटी की ओर से गोल स्कोर किया था। ड्रो का मतलब है कि मैनचेस्टर सिटी अभी भी दूसरे स्थान पर 34 मैचेस के बाद में 71 पॉइंट्स पर है जबकि आर्सेनल 35 मैचेस के बाद में 76 पॉइंट्स लेकर के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। और नॉटिंगहम फॉरेस्ट रेलिगेशन के खतरे से बाहर हो गई है। नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने आज सुबह हुए मैच में जीत दर्ज की। नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने चेल्सी को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी की यह छठी हार रही है। वेलिंगटन फिनिक्स वेमेंस कोच बेव प्रिस्मैन का कहना है कि टीम को इस हफ्ते ए लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच के लिए होम एडवांटेज मिल रहा है। वेलिंगटन फिनिक्स ब्रिस्बेन रोवर से एग्रीगेट 2-1 से पीछे है। प्रिस्मैन का कहना है कि होम एडवांटेज के बल पर वह समझती हैं कि वेलिंगटन फिनिक्स टीम इस हफ्ते मैच जीत करके ए लीग ग्रैंड फाइनल में जगह बना सकती है। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई

0: सुपर किंग्स दोनों के पास में बढ़त हासिल करने के मौके हैं। दोनों के पास इस वक्त 8-8 पॉइंट्स है। कल सुबह दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। असर की सुबह जो मैच हुआ उसमें मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 बॉल्स के रहते 6 विकेट से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली कैपिटल्स के पास में 8 पॉइंट्स है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स रन रेट को अगर लिया जाए तो वह आगे है, उसके पास में भी 8 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से।
1: वेदर रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय क्रूकिया, विजिट क्रूकिया.co.nz।
2: अब देख लेते हैं कि वेंसडे को वेदर कैसा रहेगा। सबसे पहले ओकलैंड वेदर, आज ओवरनाइट 16, कल दिन में 21 रहेगा। मोस्टली क्लाउडी और कुछ कुछ जगहों पर शावर्स होंगे। डजंट लुक वेरी अपीलिंग, लेकिन काम चलाएंगे हम कल क्लाउडी क्लाउडी वाला वेदर से। इधर ओकलैंड में हैमिल्टन के लिए बताया गया है आज ओवरनाइट 11, कल दिन में मैक्सिमम 21, मोस्टली क्लाउडी वहां पर भी और कुछ जगहों पर शावर्स होंगे और नॉर्थ वेस्ट की दिशा से हवाएं चलेंगी। और वेलिंगटन में आज ओवरनाइट 14, कल दिन में मैक्सिमम 16, मोस्टली क्लाउडी आइसोलेटेड शावर्स आफ्टरनून में झोंके के साथ नॉर्थ की दिशा से हवाएं चलेंगी। और क्राइस्टचर्च में आज ओवरनाइट 11, कल दिन में मैक्सिमम 21। यू नो व्हाट, ना तो ओकलैंड में ना हैमिल्टन में ना वेलिंगटन में ऐसा वेदर, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेदर कल मिलेगा क्राइस्टचर्च में। दिन भर धूप और नॉर्थ ईस्ट की दिशा से मंद मंद हवाएं चलेंगी। सो बेस्ट वेदर वहीं पर। घर का वेदर ठीक करने के लिए, एज आई ऑलवेज से, रिलायंस वेंटिलेशन को हीट पंप के लिए कॉल करें। हीट पंप के लिए रिलायंस का नंबर 0800-787-111।
3: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम, डिमाइज न्यूज।
2: और अब लीजिए सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यालान्द्रोताव फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति, ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन मनुरेवा के श्री कृष्णा हैरी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0201-029-26578 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि यालान्द्रोताव फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति, ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी, मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन मनुरेवा के श्री कृष्णा हैरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0201-029-26578 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ओकलैंड के आनंद राजू पूर्णिमा राव के पिता, स्वर्गीय पांजलि के पति, दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी, एस्को मोटर्स के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लाइस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता, स्वर्गीय पांजाली के पति, दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी, एस्को मोटर्स के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0215526777 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रागी राखी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बोप कृष्णा चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219326666 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि राखी राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंसफिनल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन 11 बोल्डआउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219326666 पर कॉल करें।
1: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
4: Tirana Community Messages।
5: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
6: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ.
7: With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 0210584711.
8: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
9: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: Radio Tirana, ka hai ye plan. बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
11: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तिराना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड नंबर वन हिंदी रेडियो रेडियो तराना का ये ब्रॉडकास्ट 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड से। और कई दोस्त हमारे साथ आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ जाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फायदा ये है कि आप हमारा जो प्रसारण होता है हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो एकदम आधुनिक ध्वनि यानी कि डिजिटल साउंड के जरिए इंजॉय कर सकते हैं। ऑकलैंड में हमारा जो 1386 AM वाला फ्रीक्वेंसी है इस पर फिलहाल रेडियो तराना का ब्रॉडकास्ट आप नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। और वजह इसकी ये है कि इस फ्रीक्वेंसी पर फिलहाल मेंटेनेंस के जो काम वो किए जा रहे हैं, और इसीलिए मेंटेनेंस के काम शुरू होने से पहले हमने आप तमाम दोस्तों को इत्तला कर दी थी कि आपको अपने मोबाइल फोन में रोवा ऐप या फिर आई हार्ट रेडियो ऐप ये डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद यही है कि आपने इन दोनों ऐप में से किसी एक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लिया होगा या फिर दोनों भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन ऐप्स को डाउनलोड करने में आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 8812 पर, ईमेल कर सकते हैं info@tarana.co.nz के पते पर, या फिर आप टेलीफोन कर सकते हैं 02195 1386 पर। याद रहे 02195 1386 पर। और आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कि रेडियो तराना पर हम आपके लिए पेश करें आज का आखिरी प्रोग्राम लव इज इन द एयर, जो हर मंगलवार की रात 7 वाले समाचारों के बाद से लेकर रात 12 तक हम आप तक पहुंचाते हैं।
1: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर।

आइए दोस्तों, अब प्रोग्राम लव इज इन द एयर का आगाज करें। वैसे तो हमारे साथी अजीम ये जो प्रोग्राम है आपके लिए पेश किया करते हैं हर सप्ताह, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से मैं सागर आपका साथ दे रहा हूं हमारे साथी अजीम की गैर हाजिरी में। आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल है प्रोग्राम लव इज इन द एयर में, जहां पर कुछ ऐसे नगमे, कुछ ऐसे आवाज, कुछ ऐसे अंदाज और कुछ ऐसे अल्फाज आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं जो आपके दिलों को टच कर जाएंगे। मोहब्बत भरा यह प्रोग्राम है, कुछ मोहब्बत की बातें भी आपसे हम करेंगे और इसके साथ साथ आपको भी हमारा साथ देना है। 8812 पर आप हमें टेक्स्ट भेज सकते हैं, अपने दिली पैगाम हम तक पहुंचाएं और आपके दिल की जो बातें हैं वो हम हमारे सुनने वालों तक पहुंचाएंगे, उनसे शेयर करेंगे रात 12 बजे तक। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं दोस्तों 09303-1386 पर, या फिर द बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड विद द लव इज इन द एयर इज फेसबुक। दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का जो फेसबुक स्टेटस, वो भी हमने एकदम अप टू डेट कर दिया है। तो शुरू हो जाएं और अपने जो दिली पैगाम है, चाहे फेसबुक के जरिए, टेलीफोन के जरिए या फिर 8812 पर टेक्स्ट के जरिए हम तक पहुंचाना शुरू करें। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आज का जो दिन वो आपके लिए अच्छी तरह से बीता होगा और ये दिन जो रहा आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आई हुई होगी। और अब मेरा जिम्मा ये है कि हम आज की इस रात को आपके लिए और भी हसीन बनाएं और भी मोहब्बत भरा बनाएं। तो आइए इस मोहब्बत भरे सफर प्रोग्राम लव इज इन द एयर का आगाज करें और हमारी ओर से ये पहला तोहफा, ये पहला नजराना। और आज के इस प्रोग्राम में याद दिला दें कि कुछ नवीनतम खबरें हैं, कुछ चटपटी बातें हैं और साथ ही साथ आज ही के इस प्रोग्राम में फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ पर्दे के पीछे की जो बातें, वो भी आपसे हम शेयर करते चलेंगे रात 12 बजे तक। खबरों की बात जब होती है तो आइए एक नवीनतम खबर हमारे हाथ लगी है, एकदम ताजा तरीन खबर ये है। और ये जो ताजा खबर मेरे हाथ लगी है वो आपके बारे में है। आप भी चौंक गए ना कि आपके बारे में एकदम ताजा खबर आखिरकार क्या हो सकती है जो आज सागर के हाथ ये खबर लग गई। तो आपको भी जानना है कि ये ताजा खबर जो मेरे हाथ लगी है आपके बारे में वो क्या है, तो रेडियो के बिल्कुल करीब आ जाएं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सागर और लीजिए आपके बारे में ये ताजा खबर मैं पहुंचाने जा रहा हूं।

0: अपने बारे में ये बड़ी ताजा खबर सुनकर आप खुश तो बहुत हो गए होंगे, और हमारा काम ही है कि हम आपको खुश करते रहें, खुश रखने की कोशिश करें। तो ये ताजा खबर खास हमने आप तक पहुंचाया आप ही के बारे में, और भी ढेर सारी बातें हैं आपके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे और हमारे सुनने वाले से भी शेयर करेंगे। बस सुनते रहें प्रोग्राम लव इज इन द एयर, रात 12 तक मैं सागर आपका साथ देता रहूंगा।
1: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
2: भाई साहब आइए, कैसे हैं?
3: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
2: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
3: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी जी।
2: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
4: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
5: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
6: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
5: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz। आज आपके साथ रेडियो तराना पर सागर।
0: दोस्तों, क्या आपको याद है कि वो कौन सी फिल्म थी या फिर वो कौन सा साल था जब पहली बार शाहरुख खान और जूही चावला ने एक साथ फिल्म में काम किया था, और उस फिल्म के जो गाने थे वो क्या आपको याद हैं? आइए उस फिल्म का गीत हम अगले मोड़ पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें पहली बार शाहरुख खान और साथ में जूही चावला ने एक साथ एक दूसरे के साथ काम किया था। आपको बतला दें कि जूही चावला जो है शाहरुख खान के साथ काम करने से पहले एक सुपरस्टार बन चुकी थी और उनकी कई फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हो चुकी थी, और जब उनसे ये कहा गया कि इस फिल्म में उनके साथ एक नया लड़का काम करने वाला है तो वो जरा सी घबराई और शाहरुख खान को देखकर ये सोचने लगी कि ये लड़का कैसे हीरो बन सकता है। तो आइए उन्हीं यादों को ताजा करते हुए और शाहरुख खान और जूही चावला के साथ बनी उनकी पहली फिल्म का ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेलोडियस गीत आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं।

ये गीत सुनकर आपको जरूर याद आ गया होगा कि इस गीत को हमने कौन सी फिल्म से आपके लिए चुना था। 1992 में ये फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेलोडियस रहीं। इस फिल्म में संगीत प्रदान किया था जतिन और ललित ने। साथ में इस गीत को अल्फाज दिए थे, यानी कि इस गीत को लिखने वाले जो गीतकार जो लिरिसिस्ट वो थे मदन पाल जी। और ये वही फिल्म है जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला को पहली बार एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन और इस गीत का जो पिक्चराइजेशन वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और इस मेलोडियस गीत की तरह बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही दिलरुबा। कभी मौका लगे तो फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन के इस गीत का जो वीडियो सॉन्ग है जरूर चेकआउट कीजिएगा। 1992 की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक आज लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे।

0: 1980 की फिल्म जुदाई का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के संगीत पर आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा और फिल्म जुदाई में इस गीत को पिक्चराइज किया गया जंपिंग जैक जितेंद्र जी और एवरग्रीन रेखा जी के लिए। दोस्तों आप मानो या ना मानो लेकिन आपको बताते चले कि आज की तारीख में भी आज के जमाने में इस गीत को इंडिया में स्टेज शोज में शामिल किया जाता है और इसी साल 2026 में एक स्टेज शो हुआ उधर इंडिया में जिसके अंतर्गत इस गीत को पेश किया गया स्टेज की दुनिया के दो बहुत ही मशहूर और मारूफ फनकारों द्वारा। तो ऐसे गीतों को स्टेज आर्टिस्ट जो है वो भी जिंदा रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और हो सकता है कि हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं यहाँ ओखलैंड में वो भी कोशिश करें कि इन गीतों को जिंदा रखें और ऐसे प्यारे प्यारे लोकप्रिय गीतों को जब भी स्टेज शो करते हैं वो पेश करें। तो अगर आप स्टेज की दुनिया से जुड़े हैं और प्रोग्राम फिलहाल सुन रहे हैं तो कोशिश करके ऐसे जो नगमे हैं वो आप अपने प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करने की कोशिश करें।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो तराना।
2: Ashik Homes Limited, for the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
3: Hey Hamiltonians, guess what? Ab aapke yahan Hamilton mein aa gaya hai Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing ya refinancing ke liye, contact kare Global Finance ko, jo mortgage ke saath saath insurance mein bhi specialize karte hain. Life, trauma, health insurance, har cheez ke liye Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
5: Bunnings can help you get your indoor project sorted with an easy storage 60-litre round flexi storage tub just $11.68 and all set pack of 20 microfiber cleaning cloths only $10. Shop online or in-store at lowest prices are just the beginning.
6: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
7: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
8: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.

0: Radio Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: आइए दोस्तों, अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच करते हैं। चलें, याद रहे आज है 5 तारीख मई 2026, मंगलवार की ये रात, और ऐसे में इधर कशिश फूड्स की ओर से रात के 8:01 हो चुका है।

0: रहे हैं। प्रोग्राम है लव इज इन द एयर और आप सुन रहे हैं रेडियो तराना। अक्सर ये जो प्रोग्राम है हमारे साथी अजीम आपके लिए पेश किया करते हैं, लेकिन आज हमारे साथी अजीम जी की गैर हाजिरी में मैं सागर वापस स्टूडियोज पहुंच गया हूँ। कुछ दोस्त हैं जो 1386 AM पर प्रोग्राम फिलहाल नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि 1386 AM जो फ्रीक्वेंसी है इस पर मरम्मत कार्य हो रहे हैं और पहली मरतबा नहीं है, और भी कई बार इस पर मेंटेनेंस के जो काम ये हो चुके हैं। तो टाइम टू टाइम 1386 AM फ्रीक्वेंसी जो है इस पर मेंटेनेंस के काम होना जरूरी होता है, और जब तक आप प्रोग्राम इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन पा रहे हैं तो इसके लिए हमने एक दूसरा रास्ता आपके लिए चुन रखा है, और वो है ऐप, रोवा ऐप या फिर आई हार्ट रेडियो ऐप। इन दोनों में से किसी एक ऐप को आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर ले या फिर दोनों भी आप कर सकते हैं, और इन ऐप्स के जरिए आप आराम से और वो भी डिजिटल साउंड में आज लव इज इन द एयर का प्रोग्राम या फिर SSS वाला प्रोग्राम वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो याद रहे अपने मोबाइल ऐप में आप रोवा ऐप या फिर आई हार्ट ऐप डाउनलोड कर लें, और आज वाला ये प्रोग्राम लव इज इन द एयर या फिर संडे वाला प्रोग्राम SSS ये डिजिटल साउंड में इंजॉय कर सकते हैं।
1: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर।

0: You are tuned in with Sagar.
1: दोस्तों रात के 8 तो बज चुके हैं और देखते ही देखते हम लगे हाथ एक नए घंटे में भी आ गए हैं और अब से लेकर रात 12 तक लव इज इंडिया का जो प्रोग्राम है और भी स्पीड पकड़ेगा और इस सफर में इस रंगीन शाम में आप दोस्तों का साथ निहायत ही जरूरी होता है। जितने भी दोस्तों ने अभी तक अपने दिली पैगाम हम तक पहुंचाए हैं, टेलीफोन किया है, मैसेजेस किए हुए हैं, फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं, आगे चलकर आपको भी हम जरूर याद फरमाएंगे। बस आप जरा सा इंतजार करें, इत्मीनान रखें, घबराएं नहीं, आपको हम भूले नहीं हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और याद रहे कि अगर आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ लाइक बटन दबाकर गायब ना हो जाएं। आपको कमेंट सेक्शन में आना है और थोड़े बहुत लाइंस यहाँ पर लिखने होते हैं, हेलो हाय करना होता है या फिर इमोजी का भी सहारा आप ले सकते हैं अगर लिखने में तकलीफ है आपको, लेकिन लिखना कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं कि कहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम सुनने में कैसा लग रहा है। आइए इस नए घंटे की शुरुआत करें और मोहब्बत भरा ये सफर मोहब्बत भरे गीतों से हमने सजाया हुआ है, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे आवाज और अंदाज जो आपके दिलों को टच कर जाएंगे। दोस्तों क्या आपने गौर किया है कि ये वो नगमे हैं, आज ये वो तराने हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत की जो कहानी, आपकी मोहब्बत की जो दास्तान वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आइए उन कहानियों को, उन दास्तान को ताजा करें और मोहब्बत के इन राहों में हम और आप एक दूसरे के साथ और भी आगे बढ़ें। बढ़ना चाहेंगे आप? तो आइए इस नए घंटे की शुरुआत करते हुए हमारी ओर से लीजिए ये प्यारा सा तोहफा, ये प्यारा सा नजराना और ऐसे में एक बार फिर से आप सभी का हम खास स्वागत कर रहे हैं। इस्तकबाल है प्रोग्राम लव इज इन द एयर में, सागर की ओर से वेरी गुड इवनिंग।

0: आए दोस्तों, अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच करते हैं। चलें, याद रहे आज है 5 तारीख मई 2026, मंगलवार की रात, और ऐसे में इधर कशिश फूड्स की ओर से रात के 8:01 हो चुका है।
1: आज आपके शो होस्ट हैं सागर।

0: दोस्तों रात के 8:01 तो नहीं हुआ है लेकिन 8 जरूर बज चुके हैं और समय जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कशिश फूस के साथ ही हर घंटे पर हम टाइम चेक किया करते हैं। आइए इधर कार्यक्रम में आगे बढ़े, कुछ और भी ये संदेश हो जाए। हमारे और भी कुछ एडवर्टाइजर्स हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं अगले मोड़ पर, और उसके बाद SSS नहीं लेकिन लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। बस साथ देते रहें।
1: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy 2 full price pieces and receive a 3rd one free just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
2: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
3: If I get hurt, who's going to walk the dog? Who's going to take Gran to her appointment? Who's going to take the tamariki to karate training? Who's going to chat to auntie? Who's going to organise the potluck dinner at school? Who's going to give me a bath?
4: Have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
6: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
7: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल लॉ लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz। Saturday, सुबह 6 से
8: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर।

0: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: ये है सागर।
2: अगले गीत के साथ कुछ और भी हमारे सुनने वाले हैं, कुछ और भी साथी हैं जो फिलहाल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं कदम से कदम मिलाकर लव जिंदिया के इस प्रोग्राम का जो सफर ये हमारे साथ तय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इस अगले तराने में आपको भी हम साथ लिए चलें और इस रात को और भी हसीन और भी रंगीन बनाएं, जबकि मोहब्बत भरी ये रात है और इन गीतों के जरिए हर तरफ मोहब्बत बिखेरने की एक कोशिश। हम चलते हैं माउंट वेलिंगटन, जहां से चंद्र प्रकाश और अनीत आप दोनों का भी साथ हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। आइए इस अगले तराने में आपको भी शामिल करें। और चलते हैं इधर मनुरेवा, जहां से उदय सिंह जी आप भी हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और आइए उदय सिंह जी और संजना सिंह जी आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं आज लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम में, शुक्रिया साथ देने के लिए और इसी तरह इस प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा। आपके साथ साथ विंसेंट मनी आपका भी साथ हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इधर संदीप हमेशा की तरह आज एक बार फिर ट्रिपल एस के प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन आज इधर लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ गए हैं अपने दोनों बेटों के साथ, साथ में आपकी पत्नी है और साथ ही साथ आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आपकी बहन है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, उनका भी स्वागत है। दीपिका जी कैसी हैं आप? तो आइए संदीप एंड फैमिली अगले तराने में आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, शुक्रिया साथ देने के लिए। माउंट वेलिंगटन से जीत खानपुर आप भी हमारा साथ दे रही हैं। और चलते हैं हेबर्न रोड ग्लेनडीन वेस्ट ओकलैंड, यहाँ पर है सतीश जी और उर्मिला देवी जी, आप दोनों का भी हम स्वागत कर रहे हैं और दिलकश नगमे में आइए आपको भी हम शामिल करें। इधर केतन कपाड़िया के एम शो आपका भी स्वागत है। और न्यूलैंड वेलिंगटन से वर्षा जगदीश भाई, जब भी हम वेलिंगटन आते हैं आपसे मुलाकात होती है, तो ऐसे में वर्षा और जगदीश भाई कैसे हैं आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम में। श्री नीलम शर्मा जी फेसबुक के जरिए आप भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं और आइए कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल करते चलें। इसके साथ साथ इधर विनेश कुमार आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और अगले तराने में आइए आपको भी हम साथ लिए चलें। लव इज इंडिया के प्रोग्राम मतलब मोहब्बत ही मोहब्बत, और मोहब्बत भरे इस नगमे में चलते हैं इधर रानुई, जहां पर हैं जयपी कमलेश नायडू जी और आपकी प्यारी सी पत्नी है। उधर पिछले इतवार को उनसे मुलाकात हुई थी नॉर्थ वेस्ट शॉपिंग सेंटर में, आप दोनों के साथ आप फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे अपने पोते निकलस के साथ, और हमेशा हर एक प्रोग्राम में आप रानुई से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आप दोनों के हम शुक्रगुजार हैं। तो ऐसे में जयपी कमलेश नायडू जी और साथ में उधर आपकी पत्नी डोरिस जी, आइए इस अगले तराने में आप सभी को हम शामिल करते चलें। आप भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और लव इज इन द एयर के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इन गीतों के साथ मोहब्बत बिखेर सकते हैं। लीजिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दिलरुबा ये तराना इस बार आज के इस सफर में।

0: दोस्तों इधर 16 मिनट रह गए हैं रात के 9 बजने में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेलोडियस ये नगमा भी आप सुन रहे थे। आजकल ऐसी फिल्में ना ही बनती हैं और ना तो ऐसे गाने। ये वो फिल्म है जिसे 2004 में बनाई गई थी और इस फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर एक ही थे, कुणाल कोहली, जिन्होंने कुछ अच्छी अच्छी फिल्मों को तैयार किया है, जिनमें से एक फिल्म थी हम तुम, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में, इस गीत में और ये जो जोड़ी थी सैफ अली खान साहब की और साथ में रानी मुखर्जी की, ये भी बहुत ही अच्छी लगी और बेहद पसंद भी की गई उस ज़माने में। और इन्होंने कुछ और भी फिल्मों में एक साथ काम किया, क्योंकि इनकी जोड़ी जो है इनके चाहने वालों को बेहद पसंद आने लगी थी। और हम तुम जो फिल्म है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आपने आज तक इस फिल्म को नहीं देखा है, शायद उस वक्त आप सैफ अली खान या फिर रानी मुखर्जी के फैन नहीं थे, लेकिन अब शायद आपकी सोच जो है वो बदल चुकी है, तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म हम तुम, जिसके और भी गाने बहुत ही प्यारे रहे हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को तैयार किया गया और इस फिल्म के ये इस गीत को भी आप सुन रहे थे अलका याज्निक और साथ में बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में। और इस गीत को गाने के लिए अलका याज्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। जतिन और ललित ने इस फिल्म में बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेलोडियस जो संगीत वो तैयार किया। कभी मौका लगा तो फिल्म हम तुम के और भी जो नगमे हैं वो भी आप तक हम पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इस गीत का जो पिक्चराइजेशन, ये भी वेरी क्यूट और बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक। कभी कभार कुछ फिल्मों के गाने जब आप पर्दे पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद ब खुद उस गीत में हैं, उस गाने में हैं, अपने महबूब या फिर अपने महबूबा के साथ। ये वो नगमे हैं जो ऐसे वाइब आपको दे जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे वाइब चाहते हैं, ऐसे नगमे सुनना चाहते हैं, तो इस गीत को भी आप जरूर सुन सकते हैं और देख सकते हैं।
1: In the Big Ben six pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
3: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
4: तराना पर अगर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको लगता है कि रेडियो पर नहीं होना चाहिए, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। पहले हमारे पास info@tarana.co.nz पर लिखें। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप info@bsa.govt.nz पर ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तराना पर हमारी कोशिश यही होती है कि सारे प्रोग्राम्स अच्छे स्टैंडर्ड के हों।
5: आज आपके शो होस्ट हैं सागर।
0: दोस्तों इधर 12 मिनट रह गए हैं रात के 9 बजने में, और याद रहे रात 12 तक हम आपका साथ देंगे। फिलहाल 12 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, और रात 12 तक लव इज इंडिया का ये प्रोग्राम आप तक हम पहुंचाएंगे। आज 155 न्यू नॉर्थ रोड, ईडन टेरेस, ऑकलैंड सिटी, न्यूजीलैंड से। आइए, इधर इत्तफाक की ये बात है कि अगला जो नगमा हमने आपके लिए चुन रखा है, इस गीत में भी आपको रानी मुखर्जी नजर आएंगी। हालांकि हीरो बदल गए हैं, खान ही हैं, लेकिन ये दूसरे खान हैं। इस बार पिछले गीत में रानी मुखर्जी के साथ सैफ अली खान नजर आए थे, और इस गाने में रानी मुखर्जी के साथ ही एक और खान यानी कि आमिर खान आपको नजर आएंगे। और ये पहली फिल्म थी जिसमें रानी मुखर्जी ने आमिर खान के साथ काम किया था। फिल्म का नाम है गुलाम। और इत्तफाकन इस गीत में भी संगीतकार जो है वो है जतिन और ललित। गीत को लिखने वाले गीतकार हैं समीर साहब, और जब भी समीर साहब कलम उठाते हैं तो उनके कलम से ऐसे अल्फाज निकलते हैं मानो कि वो एक एक अल्फाजों को शहद में घोल कर निकालते हैं। और इस गीत को आवाज़ दे रहे हैं कुमार सानू, और एक बार फिर आलका याजनिक की आवाज़। बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही प्यारा ये तराना, और ऐसे नगमे अगर आप रात को सुने गौर से तो इन गानों का सुनने का जो मज़ा कुछ और ही होता है। इन गीतों का रस रातों को कुछ अलग लेवल का ही होता है, जैसे कि ये वाला गीत।

दोस्तों इधर आंखों से आंखों की बातें तो हो चुकी हैं, और जब आंखों से आंखों की बातें हो जाती हैं तो फिर दिल ये करता है कि चलो आपको हम परियों की देश लेकर चलें। क्या कभी आपने परी देखा है, या फिर प्यार से आप अपने महबूबा को परी कहते हैं? कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ प्यार करने वाले हैं जो अपने महबूबा को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, एकदम क्यूट अंदाज से परी कहकर पुकारते हैं। तो आइए, आंखों से आंखें मिल चुकी हैं, आंखों ने आंखों से काफ़ी कुछ कह दिया है, प्यार हो गया है, और अब परियों की दुनिया में आपको हम लेकर चलें, जहां ढेर सारी प्यारी प्यारी खूबसूरत जो परियां ये होती हैं, या फिर आपके पास आपकी परी हैं। इन अल्फाजों को आप ज़रा गौर से सुने, और उनके लिए भी ऐसे ही अल्फाजों को आप गुनगुना कर उनकी तारीफ कर सकते हैं।

दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेलोडियस ये नगमा भी आप सुन रहे थे, और इस गीत को हमने आप तक पहुंचाया था उस फिल्म से जिसे 1976 में रिलीज की गई थी। फिल्म का नाम उधार का सिंदूर, और इस प्यारे से गीत को प्यारे अंदाज में पिक्चराइज किया गया बॉलीवुड के दो अजीम फनकार अदाकार जंपिंग जैक जितेंद्र और परी बनी हुई थी। इस गीत में उनके साथ एक और निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अजीम फनकारा रीना रॉय जी। राजेश रोशन ने लाजवाब संगीत प्रदान किया और इस गीत को लिखा एक और बहुत ही उच्च कोटि के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म का नाम उधार का सिंदूर, 1976 में इस फिल्म को तैयार की गई थी, और आज इस कार्यक्रम में हमने इस गीत को पूरा का पूरा आपके लिए पेश किया। ओरिजिनल साउंड ट्रैक, आवाजें थी मुकेश जी की और साथ दे रही थी आशा जी।

0: The Rana. Dime check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: हाय दोस्तों, अपने जो घड़ी का समय है वो हमारी घड़ी से मैच करते हैं। चले आज है 5th of May 2026। याद रहे, इस साल को खत्म होने में 240

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड नंबर वन हिंदी रेडियो रेडियो तराना का ये ब्रॉडकास्ट 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड सिटी न्यूजीलैंड से। उम्मीद है कि आपने रोवा ऐप और साथ में आई हार्ट रेडियो ऐप ये जरूर डाउनलोड कर लिया होगा ताकि आप अपने जो प्रोग्राम ये मिस ना करें डिजिटल साउंड में। याद रखिएगा कि 1386 AM जो फ्रिक्वेंसी है इस पर फिलहाल मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं और जैसे ही ये मेंटेनेंस के काम निपट जाते हैं तो फिर 1386 AM पर आप दोबारा से पहले की तरह जो प्रोग्राम्स ये सुन सकेंगे।
1: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर
2: नकीला नकीला हम्बा हम्बा नकीला

0: are tuned in with Sagar.
1: दोस्तों, आज ओखलैंड में दिन भर मौसम काफ़ी खुशनुमा रहा और काफ़ी चटक ब्राइट मौसम भी कई दोस्तों ने इंजॉय किया। कुछ जगहों पर काफ़ी गर्मी भी महसूस की गई, लेकिन जैसे जैसे रात ढलती जाती है टेम्परेचर जो होता है इसमें गिरावट महसूस करते हैं और कई दोस्त ठंड महसूस करने लगते हैं। क्या आप भी आज रात को ठंड महसूस कर रहे हैं? कहीं कहीं पर कुछ दोस्त है जो हीटर का इस्तेमाल भी आपने शुरू कर दिया है और कुछ दोस्त हैं जिनके घरों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ठंड के मौसम में ऐसे नगमे अगर कानों के पर्दों से टकराकर दिल की गहराइयों को छू जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, ख़ासतौर से रात्रि के वक्त। कुछ नगमे ऐसे होते हैं उनको चाहे आप सुबह सुने, चाहे दोपहर को सुने, शाम को सुने, लेकिन असली मज़ा जब इन गीतों को आप रात को सुनते हैं तभी आता है। जैसे कि ये वाला गीत, शायद आप भी बिस्तर में हैं, करवटे बदल रहे हैं या फिर फोन पर हैं, अपने महबूब या फिर महबूबा से बातें कर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें ये शेयर कर रहे हैं, अपने दिल की जो बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश में हैं आप। आइए आपको हम इस गीत में शामिल कर रहे हैं कि ये सुनने की कोशिश करें कि आपका दिल क्या कहने की कोशिश कर रहा है।

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
1: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.

रात के 9:18 हो चुके हैं दोस्तों, और एक और बहुत ही यादगार प्यारा सा ये तराना आपके लिए पेश कर रहे थे। और आई कैन से कि इस गीत के साथ आपके भी कुछ उन दिनों की यादें जो हैं ये ज़रूर ताज़ा हुई होंगी। और ये जो फिल्म थी, याद है आपको ये गीत कौन सी फिल्म का रहा है? ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही, और जब इस फिल्म की तैयारियां हो रही थी तो करण जौहर ने इस फिल्म का नाम जो है, पता है आपको क्या क्या सोचा था? इस फिल्म का नाम उन्होंने शुरू में ये सोचा था कि ये रखेंगे कभी अलविदा ना कहना। ये इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल जो है ये सोचा गया था, लेकिन फिर बाद में इस फिल्म का नाम बदल कर कल हो ना हो रख दिया गया। हालांकि कभी अलविदा ना कहना जो टाइटल है वो उसी वक्त करण जौहर साहब के जहन में रजिस्टर कर गई, और बाद में उन्होंने उसी टाइटल को लेकर एक और फिल्म बनाई थी कभी अलविदा ना कहना। लेकिन ओरिजिनली इस फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया था, लेकिन बाद में कल हो ना हो टाइटल रख दिया गया। उसी फिल्म का ये वाला गीत अभी आप सुन रहे थे, और इस गीत को फिल्मी पर्दे पर शाहरुख खान पर नहीं लेकिन सैफ अली खान पर पिक्चराइज की गई थी, जो कि सेकंड लीड में थे इस फिल्म में, और हीरोइन थी प्रीति जिंटा। और इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए, फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही, और आज तक इस फिल्म को याद किया जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे निखिल अडवाणी साहब, और प्रोड्यूसर थे करण जौहर साहब के पिता स्वर्गीय यश जौहर साहब, और इस फिल्म को लिखने वाले जो थे वो थे खुद करण जौहर जी। तो फिल्म का नाम कल हो ना हो, उसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा तराना जिसको तैयार किया शंकर, एहसान और लोए साहब ने, और इस गीत को आवाज़ दे रहे थे अलका याजनिक और साथ में शान। इस फिल्म के सभी गीतों को संगीत प्रेमियों ने बेहद पसंद किया। और आइए, जबकि पसंदीदा गीतों की चर्चा हो रही है और एक से एक बढ़कर वो नगमे आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो आपको पसंद है, उन्हीं पसंदीदा गीतों में से ये गीत भी अव्वल नंबर पर आता है। आवाजें हैं कुमार सानू और साथ में लता जी की। इस गीत को आप सुनकर मदहोश हो जाएंगे, और उन्हीं मदहोशी में ये सोचें कि ये कौन सी फिल्म का गीत है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है और आपको मदहोश करके एक अलग दुनिया में लेकर चल देता है। इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक, जो आपको एकदम मदहोश करके अलग दुनिया में लेकर चल देगा अपने साथ।

बिल्कुल अपने अल्फाजों की तरह ये गीत यकीनन आपको मदहोश करने की ताकत रखता है। आनंद बख्शी साहब जब भी गीतों को लिखते हैं चुन चुन कर अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और इतने सरल भाषा का वो इस्तेमाल किया करते थे, और सरल अल्फाजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन अल्फाजों का जो असर आपके दिल और दिमाग पर वो छूट जाते थे, बहुत ही बाखूबी ये अंदाज रहा है उनका। और फिर ऊपर से जतिन और ललित का ये बहुत ही मेलोडियस संगीत और आवाज़ें, सोने पे सुहागा वाली बातें, कुमार सानू और साथ में लता जी की ये आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। फिल्मी पर्दे पर याद है कौन सी फिल्म का ये नगमा था और किन दो कलाकारों पर इस गीत का जो पिक्चराइजेशन वो किया गया, और फिर कौन सा वो साल था जब इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी, इस गीत को आपने सुना था, याद है 1998, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। और जब हम फिल्म जब प्यार किसी से होता का जिक्र करते हैं तो एक और फिल्म जो है इसी नाम से वो पहले आई थी 1961 में, ही याद है आपको। और 1961 वाली जो फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, उसमें जो कलाकार थे वो थे देवानंद साहब और आशा पारेख जी। उस फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे, और क्यों ना हो, क्योंकि उस फिल्म के राइटर डायरेक्टर जो थे और प्रोड्यूसर वो थे नासिर हुसैन साहब, शंकर जी किशन साहब ने, दोनों ने मिलकर उस फिल्म में भी लाजवाब संगीत प्रदान किया था 1961 में। लेकिन वापस आते हैं 1998 में, और इस वाले जब प्यार किसी से होता में हीरो थे डैशिंग सलमान खान, और दो हीरोइंस थी इसमें, एक तो थी ट्विंकल खन्ना और दूसरी जो थी वो थी नम्रता शिरोदकर। और नम्रता शिरोदकर के लिए एज ए लीडिंग लेडी ये, या फिर सेकंड लीड में वो थी, ये पहली फिल्म थी उनकी एज एन एडल्ट एक्ट्रेस। हालांकि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वो पहले भी काम कर चुकी थी शिरडी के साई बाबा में 1977 में, लेकिन एज एन एडल्ट एक्ट्रेस ये उनकी पहली फिल्म थी ऑपोजिट सलमान खान, जब प्यार किसी से होता है। उसी फिल्म का ये बहुत ही दिलकश नगमा आज कार्यक्रम में आप तक हम पहुंचा रहे थे। आए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इस बार कुछ और भी याद भरे नगमे, कुछ ऐसे तराने जिनका अल्फाज हमेशा आपके जहन में कहीं ना कहीं छिपी होती है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी, चाहे ड्राइविंग करते वक्त, चाहे कुकिंग करते वक्त, आप इन गीतों को कभी ना कभी गुनगुना जाते हैं। जैसे कि ये वाला गीत, सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब की ये आवाज़, और साथ दे रही हैं उषा मंगेशकर जी।

बप्पी लहरे के बहुत ही लहराते हुए संगीत पर रमेश पंत साहब ने इस गीत को लिखा, और रमेश पंत जो थे वो ज़्यादातर डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले वगैरह लिखा करते थे। गिने चुने फिल्मों में गिने चुने गाने उन्होंने लिख छोड़ रखे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा गीतों को नहीं लिखा है, लेकिन जितने भी गीतों को लिखा है बहुत ही प्यारे और काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। जैसे कि एक ये वाला गीत रमेश पंत साहब ने लिखा, और फिल्मी पर्दे पर 1981 की फिल्म वारदात में इस गीत को पिक्चराइज किया गया, डैशिंग मिथुन चक्रवर्ती, टॉल डार्क एंड हैंडसम। और एक और नई एक्ट्रेस उस जमाने में इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखी थी, काजल किरण, उन्हीं पर इस गीत को पहाड़ों की हसीन वादियों में पिक्चराइज किया गया। और ये जो फिल्म थी वारदात, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। आइए अगले मोड़ पर अलका याजनिक और हरिहरन साहब आ रहे हैं कार्यक्रम में, बाहों के दरमियां क्या कुछ किस्से कहानियां होते हैं, अब वो सुनते हैं और वो आपको बताएंगे कि बाहों के दरमियां क्या कुछ किए जाते हैं, क्या कुछ होते हैं, और बाहों के दरमियां किस तरह से प्यार मोहब्बत की जाती है, ये आपको बतलाएंगे समझाएंगे मेलोडियस अंदाज में अलका याजनिक और हरिहरन साहब। फिल्मी पर्दे पर डैशिंग सलमान खान और निहायत ही खूबसूरत मनीषा कोइराला पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया। फिल्म का नाम खामोशी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक और ये अंदाज 1982 की दुनिया से, फिल्म का नाम फर्ज और कानून। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा और इस फिल्म में, मतलब फर्ज और कानून में 1982 में, जितेंद्र साहब ने डबल रोल में काम किया था और उनकी हीरोइन थी जो पहले वाले थे जंपिंग जैक जितेंद्र, मतलब एसपी रंजीत कुमार, उनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी, और दूसरे वाले जो जितेंद्र थे यानी कि रामू, उनकी हीरोइन थी रति अग्निहोत्री। इस फिल्म में राज किरण, कादर खान, असरानी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर जैसे कलाकारों ने भी हम काम किया था। और उस वक्त जंपिंग जैक जितेंद्र की अच्छी तालमेल थी साउथ वाले जो फिल्म मेकर थे उनके साथ, और सबसे ज़्यादा इनके तालमेल जो थी उनके साथ, एक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया, वो थे वन ऑफ माय वेरी फेवरेट साउथ इंडियन डायरेक्टर के राघवेंद्र राव जी, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों को संभाला है और बनाया है और डायरेक्शन की दुनिया में कमाल धमाल किया है। इस फिल्म के राइटर थे कादर खान साहब और के राघवेंद्र राव साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन की थी। ये जो फिल्म थी फर्ज और कानून, ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया और जिस तरह से जंपिंग जैक जितेंद्र को इस फिल्म में पेश किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त। कभी मौका लगे तो फिल्म फर्ज और कानून ज़रूर देखिएगा। आइए अब आज रात के सन्नाटे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके होंठों पर क्या कुछ बातें आ रही हैं वो बस कह दीजिए। मदहोश कर देने वाली कुछ बातें, दिल को टच कर देने वाली कुछ बातें अगर आपके होंठों तक आ गई है, तो अब होंठों तक ये बातें आ ही गई हैं तो ज़रूर कह दीजिए।

0: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रोस, आसान, भरोसे or 24/7.
1: Drawing inspiration from urban communities around the world,
2: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
1: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
2: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
1: That's PIKOTOETOE.NZ.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: Radio Tarana. है ये प्लान बिजनेस को बनाए सुपरमैन,
1: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: This is Radio Tarana.
2: The DJ Shalin Show.
3: DJ Shalin Show every Saturday, subah 6 se.
4: Radio Tarana.
0: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
5: हाय दोस्तों, अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच करते हैं। चलें, 5 तारीख मई सन 2026, इस साल को खत्म होने में 240 दिन बाकी रह गए हैं। इंडेलेबल होम्स की ओर से इधर रात के 10:01 हो चुका है।

दोस्तों, फिलहाल रेडियो ताराना पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लव इज इन द एयर, और ये प्रोग्राम अक्सर हमारे साथी अजीम जी जो है वो आपके लिए पेश किया करते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से उनकी गैर हाजिरी में मैं सागर आपका साथ देता आ रहा हूँ। आप दोस्त भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, साथ देते हैं, इसके लिए आप तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रात 12 तक ये जो प्रोग्राम ये चलता है, 7 वाले समाचारों के बाद से लेकर, और आप भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अभी भी इस प्रोग्राम को 2 घंटा बाकी रह गए हैं। 8812 पर आप हमें टेक्स्ट भेज सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी एक मुल्क से आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टेलीफोन करना चाहें तो टेलीफोन भी कर सकते हैं, 09303-1386 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। याद रहे कि फिलहाल खासतौर से जितने भी दोस्त ओकलैंड में रहते हैं और 1386 AM पर प्रोग्राम सुना करते थे,

0: भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इन एप्स के जरिए डिजिटल साउंड में आप लव इज इन द एयर का प्रोग्राम, ट्रिपल एस का जो प्रोग्राम और भी अन्य प्रोग्रामों को आप किसी भी वक्त कहीं से भी इंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो याद रहे, ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। 1386 AM जो फ्रीक्वेंसी है, मेंटेनेंस मुकम्मल होने के बाद इट विल बी बैक। याद रहे, 1386 AM जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही जल्द वापस आएगा, लेकिन तब तक आप रेडियो ऐप और डिजिटल साउंड में हर एक प्रोग्राम का जो मजा ये लेते रहें।
1: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर।

0: यू आर ट्यून इन विद सागर सागर।
1: और आइए दोस्तों, हम आज भी यह प्रोग्राम लव इज इन द एयर को हमने आप ही के लिए तैयार किया हुआ है। और जब गीतों का इंतखाब करना होता है तो काफ़ी मुश्किलात कभी कभार होती हैं, ये सोचकर, ये देखकर कि कितने अच्छे अच्छे नगमे हैं, कितने प्यारे प्यारे तराने हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो हमें आप तक पहुंचानी होती हैं, और कुछ वो कलाकार होते हैं या फिर ऐसे कलाकार होते हैं जिनके मुरीद आप भी होते हैं, हम भी होते हैं। और इन मुख्तलिफ नगमों को, इन मुख्तलिफ आवाज़ों को आप तक पहुंचाने का ज़िम्मा हमारा होता है, और आप भी हमसे यही तवक्कु रखते हैं कि एक से बढ़कर बेहतर से बेहतरीन जो नगमे होंगे वो आप तक हम पहुंचाएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम लव इज़ इन द एयर में। तो ऐसे ही कुछ नगमे अगले दो घंटों तक आप तक हम पहुंचाएंगे, जिनको सुनकर इन नगमों के और इन कलाकारों के आप भी मुरीद हो जाएंगे। आइए इस नई घंटे की शुरुआत करें एक और बहुत ही प्यारे से नगमे के साथ। बहुत ही दिलकश ये नगमा है, उतने ही प्यारे अल्फाज हैं और उतने ही दिलरुबा इस गीत से जुड़ी आवाज़ें हैं अलका याजनिक और कुमार सानू साहब की, और बहुत ही प्यारा सा ये तराना है। आप भी अगर इन नगमों के साथ अपने दिली पैगाम हमसे शेयर करना चाहें तो आपका मौका है। आप 8812 पर टेक्स्ट कर दें, टेलीफोन करें 09303-1386 पर, या फिर फेसबुक के ज़रिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और इन गानों को सुनकर आपको ज़हनी सुकून मिलता है, मुतमईन हो जाएंगे इन नगमों के। तो आइए बहुत ही प्यारा सा ये तराना इस बार रात के सन्नाटे में, जब ऐसे गीतों के अल्फाज आप सुनते हैं तो आपको भी किसी को गले लगाने को जी चाहता होगा, या फिर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने की ख्वाहिश जागती होगी।

0: दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मी दुनिया के दो बहुत ही खूबसूरत अदाकार, एक तो थे वेरी हैंडसम शशि कपूर साहब, और उनके साथ इस गीत पर नजर आई बॉलीवुड की एक और निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री। और जितने भी फिल्मों में इन्होंने काम किया, सभी फिल्मों में ये छा गई और इन पर पिक्चराइज किया गया कई ऐसे आइकॉनिक नगमे हैं जो आज की तारीख में भी कई जगहों पर कई जो कलाकार हैं, कई जो संगीत प्रेमी हैं, गुनगुनाते हैं। और ये अदाकारा जो इस गीत पर शशि कपूर साहब के साथ नजर आई, निहायत ही खूबसूरत परवीन बाबी जी। और इस गीत को हमने आपके लिए पेश किया फिल्म काला पत्थर से, जिसमें राजेश रोशन साहब ने लाजवाब ना भूलने वाला संगीत प्रदान किया। और इस गीत को प्यारे अल्फाज जो दिए वो थे गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने। फिल्म का नाम काला पत्थर।
1: ये है सागर।

1991 की सुपरहिट फिल्म एक दूजे के लिए का ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक आप इंजॉय कर रहे थे। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने लाजवाब संगीत प्रदान किया और आनंद बख्शी साहब ने उतने ही चाव से उतने ही दिल से इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा। फिल्मी पर्दे पर फिल्म एक दूजे के लिए में इस गीत को पिक्चराइज किया गया फिल्म के हीरो कमल हसन और साथ में हीरोइन रति अग्निहोत्री के लिए। दोस्तों यकीन नहीं होता कि ये वही फिल्म है और ये वही प्लेबैक सिंगर थे एसपी बालासुब्रमण्यम जी और साथ दे रही थी लता जी। और जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग की बात आई तब इस फिल्म के जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने ये तय किया कि कमल हसन के लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगे साउथ के जाने माने प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी। लेकिन लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल इस बात से खुश नहीं थे। खुश नहीं थे इसलिए कि उनका ये सोचना था, उनका ये मानना था कि एक मद्रासी मतलब साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी जो हैं वो गीतों के अल्फाजों को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जो हिंदी अल्फाज होंगे और उनमें वो जो एक एक्सेंट होता है मद्रासी वाला वो आ सकता है। तो उनका ये मानना था कि शायद एसपी बालासुब्रमण्यम जी के जो तलफ़ुज़ हैं हिंदी अल्फाजों को लेकर वो सही नहीं हो और इस बात से वो नाखुश थे और उनको बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो उनके लिए इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करें। लेकिन फिर लक्ष्मीकांत जी को और प्यारेलाल जी को समझाया गया, बताया गया कि एक मौका दिया जाए और तब कहीं जाकर उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा एक मौका देते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जी को। और एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने सभी को ख़ास तौर से लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी को गलत साबित करके इस फिल्म में गीत गाने के लिए ख़ास तौर से वो वाला गीत तेरे मेरे बीच में इस गीत को गाने के लिए इस फिल्म एक दूजे के लिए में उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवार्ड दी गई। और उसके बाद लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने एसपी बालासुब्रमण्यम जी के साथ और भी फिल्मों के लिए और भी गीतों को रिकॉर्ड किया और उन्होंने ये मान लिया कि हाँ हम गलत थे। एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने सिर्फ लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के लिए ही नहीं लेकिन बॉलीवुड में जब उन्होंने दाखिला किया इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने आगे चलकर और भी कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बॉलीवुड में काम किया और ये आवाज़ बने बॉलीवुड के सुपरस्टार, बॉलीवुड के भाईजान, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की। और सलमान खान के लिए उन्होंने बेशुमार गीतों को रिकॉर्ड किया और उनके गाए हुए जितने भी हिंदी गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए, बहुत ही पसंद किए गए। लेकिन शुरुआती में मुश्किलात का सामना किया एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने जब लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये हिंदी अल्फाजों को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभी को गलत साबित कर दिया एसपी बालाजी ने। आइए दोस्तों और भी कुछ किस्से कहानियाँ फिल्मी दुनिया से जुड़ी आपसे हम शेयर करते रहेंगे आज लव इज इंडिया के इस प्रोग्राम में। मोहब्बत भरे गीतों का ये सफर और जबकि लव इज इंडिया का ये प्रोग्राम है प्यार की कुछ बातें, मोहब्बत की कुछ बातें, दिल की कुछ बातें, निगाहों की कुछ बातें। और अक्सर कहते हैं कि प्यार की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बात करने पर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो होती हैं वो निगाहें कही जाती हैं एक दूसरे से। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?

0: जिंदगी की पहली जरूरत है क्या, और आपने सुन लिया और उम्मीद है कि मान भी लिया होगा कि सचमुच में खास तौर से आज के इस जमाने में जहां पर कम ये चीज मिलती है लेकिन जरूरत सभी को है। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या, इंदिवर साहब ने लिखा प्यार। और अगर आपको भी किसी का प्यार मिल जाता है तो आप बहुत ही खुशनसीब है, उस प्यार को जरा संभाल कर रखिएगा। किशोर दा और लता जी की ये आवाज़, 1983 में ये फिल्म आई थी, फिल्म का नाम जस्टिस चौधरी। फिल्मी पर्दे पर वो दो कलाकार अगर ऐन मौके पर धर्मपाल जी ने एंट्री नहीं मारी होती तो आज ये दोनों शादी कर चुके होते। जंपिंग जैक जितेंद्र जो हेमा जी के घर पर अपना रिश्ता लेकर गए थे रियल लाइफ में, क्योंकि वो भी हेमा जी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। और धर्मपाल जी जबकि पहले से ही शादीशुदा थे तो उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं अपने शादी का जो रिश्ता ये इनके घर पर ले जाता हूँ। लेकिन ऐन मौके पर ये खबर जो है धर्मपाल जी के कानों तक पहुँची और वो अगली फ्लाइट पकड़कर सीधे मद्रास पहुँच गए और अपने प्यार को उन्होंने बचा लिया। नहीं तो ये दोनों कलाकार आज एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ होते। लेकिन इसके बावजूद अच्छे दोस्त हमेशा से बने रहे और कई फिल्मों में इन्होंने एक साथ लाजवाब अभिनय किया, जिनमें से एक फिल्म थी जस्टिस चौधरी, 1983 की फिल्म। बप्पी दा ने इस फिल्म में लाजवाब संगीत प्रदान किया और किशोर दा और लता जी की आवाज़ों में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया और इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बहुत ही खूबसूरत। कभी मौका लगे जरूर चेकआउट कीजिएगा।
1: A healthy relationship has both sides. Speak out your heart to us by liking and following our Facebook page. facebook.com/radiotaranaNZ
0: Love is India के इस प्रोग्राम में फेसबुक के जरिए भी है कई दोस्त हमारे साथ अलग अलग देशों से अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। 14 मिनट रह गए हैं रात के 11 बजने में और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए कुछ और भी हमारे दोस्त हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। चलें, बलबीन कौर आपका भी साथ हो गया है और आपके साथ साथ इधर कोटमा नारायण जी नमस्कारम, साथ ही साथ चलते हैं उधर पोरीरुआ वेलिंगटन जहां पर हैं राइज एंड शाइन फूड मार्ट और यहां की शाजमीन निशा साथ में रोनील आपको भी हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और शाजमीन निशा आपकी अम्मी जो है वो फिलहाल फिजी से आई हुई हैं और आप बेहद खुश हैं और अपने अम्मी के साथ कुछ क्वालिटी समय बिता रहे हैं बच्चों के साथ, तो ऐसे में आपकी जो अम्मी हैं उनको भी आज के इस प्रोग्राम में हम शरीक कर रहे हैं। शुक्रिया आज लव इज इंडिया के इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए और प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इधर चलते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से विनी प्रसाद आपका भी साथ हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड इवनिंग। और ऐसे में सिडनी से आप हमारा साथ दे रही हैं और ऑनलाइन डिजिटल साउंड में प्रोग्राम का मजा ले रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आपके हस्बैंड हैं मिस्टर रत्नेश राज, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके दो बच्चे हैं, बेटा है ऋत्विक और बेटी है वियाना, उनको भी आज कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो विनी प्रसाद एंड फैमिली शुक्रिया एक बार फिर लव इज इंडिया के इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और भी दोस्त हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, वेलिंगटन में हैं रानिया हुसैन आपका भी इस्तकबाल कर रहे हैं और आपके साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुमन चंद आपका भी स्वागत है, संगीता देवी आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वेलिंगटन में ही जरीना एस अली आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी दोस्त हैं, कुछ और भी साथी हैं जो फिलहाल घर पर हैं, लेटे लेटे प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। शबनम शर्मा आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। और इधर फ्लैट बुश से संदीप राय, आइए कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल करें। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो किसी के घर पर आज बैठे हुए हैं और कुछ गपशप हो रही हैं और साथ में लव इज इंडिया के इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद और रेहाना शरीफ आपका भी इस्तकबाल है। उधर लवाहट से स्वाद किचन की कल्पू पटेल, आइए इस गीत में आपको भी शामिल करें। वॉलस रोड पापा टोई टोई के डेनी कुमार आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। शर्मिला शर्मा आइए आज प्रोग्राम में आपको भी हम शामिल करते हैं, चलें।

दोस्तों एक और बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस नगमा भी आप सुन रहे थे, कुछ प्यार की बातें, कुछ मोहब्बत की बातें, कुछ वादों की बातें। 1986 की फिल्म सदा सुहागन का ये गीत शब्बीर कुमार और साथ में लता जी की आवाजों में, पर्दे पर जंपिंग जैक जितेंद्र और साथ में पद्मनी कोल्हापुरी के लिए बप्पी लहरी के संगीत पर इंदिवर साहब के ये कलाम।

0: से मैं हूँ आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyen Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.
2: Radio Tirana. Night check.
3: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indeliblehomes.co.nz.
4: हाय दोस्तों, इंडेलेबल होम्स की ओर से अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच कर लें। और इस वक्त तराना स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:01 हो चुका है।

0: और आजकल रेडियो तराना का जो प्रसारण ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे दोस्त जो है ये सुन रहे हैं और डिजिटल साउंड ये एंजॉय कर रहे हैं। आपने अभी तक डिजिटल जो एप्स ये डाउनलोड नहीं किया है तो रोवा ऐप और आई हार्ट ऐप तुरंत डाउनलोड कर लें।
1: यू आर ट्यून्ड इन विद सागर।
2: सागर मेरी दुनिया में आना न जाना कभी फिर सनम।

यू आर ट्यून्ड इन विद सागर. सागर हाय दोस्तों, अब इस आखिरी घंटे की शुरुआत करें और आखिरी घंटे प्रोग्राम का भी, और आज 5 मई 2026 का भी आखिरी घंटा. इस घंटे के बाद एक नई

तमन्नाएं ये अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर देती हैं। और आज भी इस गीत को सुनकर आपके दिल में कहीं ना कहीं वो गुदगुदी महसूस करते हैं आप, मोहब्बत वाली गुदगुदी। तो आइए उन्हीं यादों को ताजा करें आज इस गीत के साथ इस नए घंटे की शुरुआत करते हुए।

0: लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की मौसीकी पर एक और बहुत ही लोकप्रिय यह नगमा और बहुत ही प्यारे अंदाज में, नटखट अंदाज में रिकॉर्ड की गई ये गीत नटखट किशोरदा और साथ में अनुराधा पोडवाल जी की आवाज़ों में, बैक इन द डेज जब अनुराधा पोडवाल यहाँ वहाँ गाने गा लिया करती थी, उसी दौरान 1979 में उनको एक सुनहरा मौका मिला किशोरदा के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये उस फिल्म का नगमा है जिनको देखकर शायद आज भी अगर आप सोचें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म का नाम जानी दुश्मन, वो हॉरर फिल्म, वो डरावनी फिल्म आपको याद है जहां पर खूंखार भेड़िया जो है वो आकर नई नवेली दुल्हन को उठा ले जाते हैं और कहां गायब हो जाती हैं ये दुल्हन किसी को पता नहीं चलता। फिल्म का नाम जानी दुश्मन और जानी दुश्मन के सभी गीतों को लिखा एक और ये गीतकार जिनका बहुत ही कम जिक्र होता है और ये गीतकार जिन्होंने इस लोकप्रिय गीत को लिखा वो है वर्मा मलिक साहब। किशोरदा और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों को फिल्मी पर्दे पर पिक्चराइज किया गया। जंपिंग जैक जितेंद्र और साथ में खूबसूरत नीतू सिंह जी के लिए। कभी मौका लगे और आपको आपका दिल ये चाहे कि आप डरावनी फिल्म देखना चाहते हैं और कुछ दोस्तों को हॉरर फिल्में बेहद पसंद हैं तो ये फिल्म आप देखिएगा, 1979 की फिल्म जानी दुश्मन। और अगर उस समय के हिसाब से स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बातें करें तो इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था, मेकअप स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया बहुत ही लाजवाब। तो ये हॉरर फिल्म जानी दुश्मन का ये रोमांटिक गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: With Radio Tarana. Download now the free Tarana mobile app.
0: विजेता पंडित ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया, ये जो फिल्म है ये उनकी फिल्म थी, इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ उनको काम करना था लेकिन राजेंद्र कुमार साहब ने उनको हटाकर पूनम ढिल्लन को इस फिल्म में मौका दिलवा दिया। वजह यह थी कि कुमार गौरव जो है सचमुच में अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित से सचमुच में प्यार करने लगे थे और इस बात को राजेंद्र कुमार को कतई पसंद नहीं आई थी।

एक बार फिर आर डी बर्मन साहब और आनंद बख्शी साहब ने मिलकर कमाल किया इस गीत के साथ। फिल्म का नाम तेरी कसम, बहुत ही प्यारा ये तराना। अमित कुमार और लता जी की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जबकि 20 मिनट हो चुके हैं रात के 11 बजकर। जितने भी नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, केयर गिवर्स हैं और गैस स्टेशन पर जितने भी दोस्त फिलहाल काम कर रहे हैं, आप सभी को आइए इस प्यारे से गीत में शामिल करें। फिल्म का नाम फरेब, कुमार सानू और अलका याज्ञिक की आवाज, जतिन ललित की मौसीकी पर।

0: You are tuned into Radio Tarana.
1: हाय दोस्तों, इधर 26 मिनट हो गए हैं रात के 11 बजकर, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो सोने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हमारे साथ ही काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट काम है और ओवरनाइट आज आप काम करने वाले हैं, तो ऐसे में ऑल द वेरी बेस्ट। याद रहे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप रेडियो तराना सुनते रह सकते हैं। अगले मोड़ पर गीत और संगीत के इस सफ़र में, लव इज़ इन द एयर के इस प्रोग्राम में, दिल की जो कलम होती हैं ये ढेर सारी बातें अक्सर आपके दिलों पर लिख जाया करती हैं। ऐसे ही कुछ अल्फाजों के साथ अगले गीत को भी लिखा गया है, और इस गीत को रिलीज़ की गई थी 1988 में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का एक और लाजवाब संगीत, और आनंद बख्शी साहब ने इस बार इस गीत को लिखा है। आवाज़ें हैं शबीर कुमार साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की, और फिल्मी पर्दे पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया एकदम यंग हैंडसम गोविंदा और एक और निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री उस जमाने की मंदाकिनी के लिए। फिल्म प्यार मोहब्बत याद है आपको? अगर नहीं तो ये गीत सुनकर आपको ये फिल्म भी याद आएगी, ये गीत भी याद आएगा, और इस गीत के ज़रिए आपको वो ज़माने भी याद आएंगे जब इस गीत को शायद आप भी गुनगुनाया करते थे, और हो सकता है कि इसी गीत के ज़रिए आपने किसी से अपने दिल की जो बातें हैं वो कही थी, या फिर अपने प्यार का इकरार किया था, इजहार किया था। तो आइए, दिल की जो कलम, इससे हम क्या कुछ लिख सकते हैं किसी के दिल पर, वो सुनते हैं मिलकर शबीर कुमार और साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में।

हाय दोस्तों, और प्यार मोहब्बत के इस गीत के बाद अगले मोड़ पर आगे बढ़ते हुए इस बार बारी है आरडी बर्मन जी के मौसिकी पर। गुलशन बारा जी के अल्फाजों के साथ कार्यक्रम में तशरीफ लेकर आ रहे हैं एक और बेमिसाल जोड़ी जिनको हम हमेशा से पसंद किया है, और इस जोड़ी ने एक से बढ़कर गीत हमको दिए हैं अपनी आवाज़ों में। आवाज़ें हैं इस बार किशोरदा और साथ में आशा भोंसले जी की, और ये जो नगमा है इसको हमने इस बार चुना है उस फिल्म से जिसमें मिथुन चक्रवर्ती आपको बॉक्सिंग करते हुए नज़र आए थे, मतलब फिल्म बॉक्सर से। और बॉक्सर का ये गीत फिल्मी पर्दे पर मिथुन चक्रवर्ती और साथ में उनकी निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री रति अग्निहोत्री पर पिक्चराइज की गई थी 1984 में। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ तनुजा और साथ में डेनी ने भी ये काम किया था, साथ में शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी इस फिल्म में इन्होंने एक अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो आइए फिल्म बॉक्सर का यह नगमा 1984 की एक बहुत ही सुनहरी याद इस बार काफ़ी दिनों बाद लव इज़ इन द एयर के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। और लव इज़ इन द एयर वो प्रोग्राम जहाँ पर मोहब्बत की कुछ बातें, प्यार का जिक्र और दिल की बातें होती हैं, और जब किसी को किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है ये तो लाजमी है कि दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। क्या आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है? अगर होता है तो आइए, आपको तो यकीनन प्यार हो गया है, और जब आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं आपको भी इस गीत में हम शामिल करते चलें। सवाल भरा ये नगमा, लेकिन सवाल भरे इस गीत को और इन अल्फाजों को मोहब्बत का जवाब जरूर दीजिएगा।

बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेलोडियस सी अंदाज किशोर दा और साथ में आशा जी को भी आप सुन रहे थे। और इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बहुत ही लाजवाब। फिल्म का नाम बॉक्सर, 1984 की सुपरहिट फिल्म का ये सुपरहिट तराना भी आप सुन रहे थे। हाय दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जबकि सिर्फ 20 ही मिनट रह गए हैं रात के 12 बजने में, उसके अगले पड़ाव पर एक नई सुबह, एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है और ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये नई सुबह, ये नया दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। आइए इधर अगले मोड़ पर वो फिल्म जिसको कहा जाता है कि इट वॉज आई सरप्राइज हिट ऑफ 1985, और इस फिल्म को बनाने वाले जो फिल्म मेकर थे कैसी बोकाडिया साहब, इन्होंने जेकी दादा को इस फिल्म के लिए साइन किया और उन्होंने उनके साथ करीबन 7 फिल्मों को साइन की थी जिसमें से एक फिल्म ये थी 1985 की फिल्म जिसका ये वाला गीत अनुराधापुर अडवाल जी और शब्बीर कुमार की आवाज़ में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। काफ़ी मेलोडियस ये नगमा है और इस फिल्म में संगीत प्रदान कर रहे हैं लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, लेकिन इस बार गीतकार जो है वो है SH बिहारी साहब। फिल्मी पर्दे पर जैकी शरफ और साथ में निहायत ही खूबसूरत पूनम ढिल्लन के लिए इस गीत को पिक्चराइज किया गया। फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियां, 1985 में ये फिल्म आई थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। उसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना आज लव इज इंडिया के इस प्रोग्राम में आप दोस्तों के नाम।

0: You are tuned in with Sagar.
1: दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत और शिद्दत के साथ प्रोग्राम लव इज इन द एयर में हमारा साथ दिया। इसके लिए आप तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जबकि रात के 12 बजने वाले हैं और मंगलवार का ये दिन, मंगलवार की ये रात अब समाप्त होने को आया है, तो इसी मोड़ पर अपने साथ ही सागर को आज के लिए यहीं पर इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, और कुछ ही क्षणों में एक नई सुबह और एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है। जाते जाते ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे कि ये जो नया दिन है, ये जो नई सुबह है, आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, और कल का जो दिन ये खुशियों से भरा हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम यहां से रुखसत हो रहे हैं। और अगर जिंदगी ने हमें जिंदा रखा और अगर धड़कनों ने दिल का साथ नहीं छोड़ा, तो आने वाले इतवार की सुबह ठीक 9 पर एक बार फिर आपका साथ देने के लिए हम हाजिर खिदमत हो जाएंगे और आपके लिए पेश करेंगे एक बार फिर प्रोग्राम SSS यानी कि सुपर संडे विद सागर, जहां पर गाने वो जो आपके दिल को टच कर जाए। लेकिन आज के लिए हमें इजाजत दें। जाते जाते आपको हम याद दिलाते चले कि एक बात आप गांठ बांध कर जिए कि जियो और जीने दो। इससे होगा ये कि आपको जहनी सुकून मिलेगा और साथ में आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी आपसे बेहद खुश रहेंगे। तो बस ये बात हमेशा याद रखें कि जियो और जीने दो। अब इन्हीं बातों के साथ हम यहां से रुखसत हो रहे हैं और मुलाकात होगी आने वाले इतवार की सुबह ठीक 9 पर SSS वाले प्रोग्राम में। तब तक लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, खुदा हाफिज़।

0: हसल से ब्रेक लीजिए, पजल को छोड़ म्यूजिक की दुनिया में चलिए और थोड़ा चिल कीजिए विद मी नेहा इन द शो चिल विद नेहा, मंडे टू सैटरडे 1 PM to 4 PM ओनली ऑन रेडियो तराना।
1: लाइफ तो बस हसल है।

0: से मैं हूँ आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyen Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.

0: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
1: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।

0: वतन से दूर आपको वतन की याद दिलाता है, आपको खुश करता है, आपका ख्याल रखता है, आपका फेवरेट, आपका साथी रेडियो तराना।
1: आप सुनने जा रहे हैं तराना पर डिवोशनल शो।
2: जय साई राम। आज बुधवार है और 6 तारीख मई का है और हमारा एक घंटे का कार्यक्रम आज हमारे साथ पवन जी भी हैं, तो लीजिए सुनिए एक सुंदर सा गणेश भजन।

बंसी की तान सुन के भगवान कृष्ण के सुंदर सांवली सूरत अनायास आंखों के सामने आ जाती है और हम उन सुखद कल्पनाओं में खो जाते हैं जब कान्हा ने बंसी बजाकर धूम मचाई थी और रास रचाया था। और जब बातें आती है माखन चोरी की तो होठों पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। गोकुल नगरी हम सबके मन और हृदय के भीतर है। यदि कृष्ण हमारे अंतर मन में नहीं बसे हैं, तो ये मन की नगरी सूनी सूनी लगती है।

अब जो भजन मैंने सुना है ये इतना सुंदर भजन है जो मुझे भाया है, और मैं आशा करता हूँ आपको भी भाएगा। अब हम आपको कल जरूर से मिलेंगे, तो मगन भाई का और पवन जी के रेडियो तराना से जय साई राम।

0: Loss of a loved one is an unfilled vacuum. Demise News.
1: और अब लीजिए सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यालांद्रोता वुआफिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे ऑकलैंड के शारदा मणि के पति ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन मनुरेवा के श्री कृष्णा हैरी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0292-65-78 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि यालांद्रोता वुआफिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे ऑकलैंड के शारदा मणि के पति ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन मनुरेवा के श्री कृष्णा हैरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-0292-65-78 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पांजलि के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के पूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-55-26-77 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता स्वर्गीय पांजाली के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी एस्को मोटर्स के भूतपूर्व सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार के दिन में 10 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-552-677 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रागी राखी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-93-2666 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि राखी राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-93-2666 पर कॉल करें।
2: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
3: रेडियो
4: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
5: Hey, a very good morning. Time check. ये कर लेते हैं. आज 6th of May है. Wednesday का दिन ये हम शुरू कर रहे हैं. Radio Tarana Studio के घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं.
6: Auckland and Wellington traffic report.
7: Be part of one of the most important and listened to segments on Radio Tirana. The traffic report, aired during peak hours 6 a.m. to 9 a.m. and 3 p.m. to 7 p.m.
5: ट्रैफिक ये चेकआउट कर लेते हैं। द नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टलेशन ड्राइव से अभी आपको 16 मिनट्स ये लग रहा है। सिल्वरडेल से 32, नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 17 मिनट्स। उधर ट्रैफिक वेस्ट ऑफ मैसी यह बिल्डअप होने लगा है। सदर्न पर मैनेकाओ से 20, ड्रूरी से 32, साउथ वेस्टर्न पर अभी दोनों साइड से ठीक ठाक। एंड सिटी सेंटर से एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स जो है ये लगेगा। वेलिंगटन में परी रोड सिटी सेंटर 17 मिनट्स, लवाहट से 16, अपर हट 30, ईस्टबर्न से 27 मिनट्स लग रहा है और एयरपोर्ट माउंट विक्टोरिया टनल द्वारा आपको 17 मिनट्स ये लगेगा।
7: इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस by contacting Ajeshni at 0219613860.

0: दिलेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 दिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बस, मॉर्निंग बस, मॉर्निंग बस।
3: यस मॉर्निंग बस, ये हम शुरू कर रहे हैं आज सोनू के साथ में। जिलेश आई डोंट नो किधर है, बट उन्होंने कहा कि सोनल आप प्रोग्राम कर दोगे, तो ये सप्ताह भर अब मैं आपका साथ देने वाला हूँ। आज वेंसडे, कल थर्सडे और फिर उधर परसों फ्राइडे तक आपका जो साथ है ये हम देने वाले हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक आप मेरा साथ जो है जरूर दीजिएगा, और थोड़ी देर में संजेश ये भी शामिल हो जाएंगे, और न्यूज़ अपडेट और फिर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है ये तो आपको तो पता है ये चलता रहेगा। तो जितने भी हमारे नॉर्मल लिसनर्स जाग चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको कहना चाहेंगे। आई नो संजना आप सुबह जाग जाती है, धर्मेश भाई आप भी हमेशा ट्यून इन कर लेते हैं, तो आप दोस्तों को गुड मॉर्निंग, और धीरे धीरे और भी जो हमारे लिसनर्स शामिल होंगे उनको भी हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। होपफुली आपका मंडे एंड ट्यूजडे ठीक ठाक बीता। आज वेंसडे है, हम्प डे जिसे कहते हैं, हाफ वे थ्रू द वीक, और फिर एक और एक वीकेंड का वेलकम हम करने लगेंगे कल थर्सडे से, और फ्राइडे को TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे ये भी हम कहेंगे। सो वंस अगेन मॉर्निंग बज में सोनल का साथ है, एंड आपको अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
1: Indelible Homes are specialized in building high quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit IndelibleHomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
2: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply. Love is in the
3: air. Azim ke saath Mangal ki.

मॉर्निंग बस ये जारी है, वेलकम बैक आपको कहना चाहते हैं। उधर राकेश सिंह भाई आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप भी प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं ऑल द वे इन नेवाडा और रेनो नेवाडा में आप ऑनलाइन प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू। इसी तरह से जितने भी हमारे लिसनर्स हैं साथ देते रहते हैं तो अच्छा लगता है। न्यूज में भी काफी कुछ चल रहा है, कांट बिलीव अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं कितना अलग अलग सप्ताह में आ चुका हूँ, बट दैट वो इन ईरान अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहा है, ईरान कुछ कर रहा है, एंड देन थिंग्स वो वहां पर कर रहे हैं बट इफेक्ट हमको यहां पर पड़ रहा है। तो इस सब पर पूरा ओवरव्यू जो है ये संजेश आपको देंगे। 7 AM से जो न्यूज है ये भी शुरू हो जाएगा। ओवरनाइट IPL ये भी चल रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो रेस है ये भी काफी जोर दौर से चेंज हो रहा है, इस पर भी कुछ बातें करेंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कमिंग वीक एंड वीक एंड क्या कुछ और होने वाला है। आई थिंक ओकलैंड FC का जो फर्स्ट लेग का सेमीफाइनल ये भी रहेगा गो मीडिया माउंट स्मार्ट पर, और इसके साथ में क्या कुछ और एक्टिविटीज हो रहे हैं अराउंड ओकलैंड, अराउंड न्यूजीलैंड जो मेजर है, इस पर भी हम बातें जो है करेंगे। आपको कोई गाना सुनना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड आई डू माई बेस्ट कि आपके लिए आपका जो फेवरेट गाना है ये मैं पेश करूँ।

0: A good lawyer is recognised for their experience, trustworthiness, and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction, for property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters. Call Schaubner on 021 625 708 or email schaubner@smlaw.net.nz.
1: Drawing inspiration from urban communities around the world,
2: we present Big O Toi Toi, a brand new urban development in Papa Toi Toi. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
1: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange, and major motorways.
2: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
1: That's pikotoetoe.nz.
3: Kia ora, Aotearoa. Good news. The starting age for the National Power Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just
4: want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: Morning Buzz, Morning Buzz, Morning Buzz.
6: Sunye Morning Buzz. Sombar se Shukravar, subah.
7: Auckland and Wellington Traffic Report. Partner with Radio Tirana and reach commuters across Auckland with our Traffic Report sponsorship.
8: ट्रैफिक के चेकआउट कर लेते हैं. वेल, नॉर्दर्न मोटरवे से कॉन्स्टलेशन ड्राइव से आपको 16 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 17, मैनेकाउ से 20 और उधर टू द एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स जो है ये लगने वाला है. वेलिंगटन की ओर देखा जाए तो पोरिडवा से सिटी सेंटर 17 मिनट्स, लवाहट से 16, ईस्ट बर्न से 27 और एयरपोर्ट आप जा रहे हैं तो आपको 17 मिनट्स जो है ये लगने वाला है.
7: योर ब्रांड विल फीचर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून पीक आवर्स, इंश्योरिंग मैक्सिमम एक्सपोजर.
8: और उधर सुजी, आप भी प्रोग्राम का मजा ले रही हैं, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? होपफुली ठीक ठाक. आपने कहा कि आज आपके सुबह का जो सुबह है ये अच्छी तरह से शुरू हुआ विद द लवली सेट ऑफ सॉन्ग्स. चलो, वेरी गुड. यही हमारा कोशिश होता है कि आप दोस्तों को जो सुबह का गाना है ये पसंद आए. रीमा सुंदर जी, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग, आप भी साथ दे रही हैं. आपको भी हम कहेंगे अ वेरी हैप्पी वेंसडे. आपको भी विश कर रहे हैं कि आपका जो दिन है ये भी अच्छी तरह से बीते. राकेश भाई, आपने कहा आपको एक गाना सुनना है. चलो, आप मुझे बताइएगा कौन सा है करेक्ट गाना, तो वो भी आपके लिए मैं जो है ये पेश करूंगा. आने वाले दिनों में कुछ ओबीज भी है इस वीक, कुछ नहीं, एक ही ओबी है इस वीकेंड में. ट्रेलर्स आप सुन रहे हैं, आई थिंक एनजेड बेड वाला जो ब्रॉडकास्ट है ये इस सैटरडे को होने वाला है. इस पर भी और जानकारी, और डिजिसेल का एक प्रमोशन चल रहा है, ये भी आपके साथ में मैं अगले घंटे में ज़रूर शेयर करूंगा. अभी के लिए कुछ और प्यारे प्यारे गाने आप दोस्तों के लिए मैं आज सुबह पेश करना चाहूँगा.

0: आर ट्यून्ड इन विद सोनल।
1: उधर दिनेश भाई आप भी प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, आप भी घर से निकल गए हैं काम की ओर आप जा रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और आपने कहा आपको फिल्म संगम 1964 का ये जो फिल्म है संगम, बट इसका एक इंग्लिश वर्जन का जो गाना है आपको आज सुबह सुनना है। तो चलो अभी जो मैंने क्यू अप किया था उसको मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देता हूँ। आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, काम की ओर जा रहे हैं, आपका जो दिन है ये भी हम चलो बना देते हैं सुबह सुबह।

0: आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ये जो गाना है मुझे Spotify पर मिल गया. आई couldn't फाइंड इट ऑन द सिस्टम. तो मैंने पहले गूगल किया कि ये कौन सा गाना है. दिनेश भाई ने पूछा, बोले इंग्लिश गाना. मैंने बोला इंग्लिश गाना, एंड देन संगम फिल्म 1964. आई टू डू सम रिसर्च बट ओवर द फोन. चलो होपफुली दिनेश भाई आपका जो दिन है ये अब एकदम अच्छा जो है ये जाएगा. अली भाई आप भी प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं उधर लोअर हट वेलिंगटन में. आपको और रोमियो का एक गाना सुनना है, ये एड ब्रेक के बाद में जरूर हम प्ले करेंगे. और भी हमारे जो नॉर्मल लिसनर्स है, गुड टू सी एवरीबॉडी इज अवेक. मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे पता चल जाता है कि लोग जाग चुके हैं और प्रोग्राम का मजा जो है ये ले रहे हैं. लेते एक छोटा सा एड ब्रेक, ब्रेक के बाद में और भी बातें.
1: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं. 20 सालों से हैं बिजनेस में. इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस. घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा. इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265-0505 और सुनिए ये पोर्टल लो भी हायर पर देते हैं. इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265-0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा.
3: यार मुझे फिजी जाना था.
4: कब जाना है?
3: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे.
4: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
3: नहीं यार, नहीं मिला कुछ.
4: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स. इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में.
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228.
5: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे.
6: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today. Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड. सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर.
0: और उधर शैली आपको भी गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं. आप भी जाग चुकी है, आपको भी मैसेज आया है, वेरी गुड मॉर्निंग. आपको भी हम कहना चाहते हैं होपफुली यू हैव अ लवली लवली वेंसडे अहेड. अली भाई होपफुली लोहाट में सब ठीक ठाक है, आप भी हमारे साथ दे रहे हैं और आपका जो गाना है बस मैं पेश करने ही वाला हूँ. और थैंक यू वेरी मच. अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, आज सुबह इतने ढेर सारे लोगों ने कल बर्थडे विशेस जो है ये भेजा. थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज. यार आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है ये भेजते हैं, एकदम आँख जो है कभी कभी ये भर आता है, इमोशनल जो है ये हम होने लगते हैं. आप भी मुझे बता सकते हैं, जैसे कि राकेश भाई उधर प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं नेवाडा अमेरिका, और वहाँ से भी आपने अपना जो रिक्वेस्ट भेजा है कुमार शानू का ये जो प्यारा सा गाना. राकेश भाई अभी इस घंटे में मैं ज़रूर पेश करूँगा. न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, ये भी हम चेकआउट करेंगे. IPL फैंस आज सुबह के मैच में क्या हुआ ये भी आपको हम बताएंगे. आई थिंक आज दिल्ली कैपिटल्स वाला जो गेम है ये हुआ था, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. तो इस पर जो रिजल्ट्स है ये भी आपके साथ में नेक्स्ट आवर में मैं शेयर करूंगा. और थोड़ी देर में एक और एक ट्रैफिक रिपोर्ट इस घंटे के लिए ये भी मैं पेश करूंगा. बट सबसे पहले अली भाई आपको भी हम शामिल कर रहे हैं. आपने बोला कि और रोमियो का ये गाना आपको सुना है, इश्क का फीवा. चलो आपको हम शामिल कर रहे हैं इस गीत में.

0: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
1: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग. कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे.
2: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस. कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश. फोन नंबर 0210584711.
3: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग दी पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप.
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. क्योंकि हम देंगे IPL पर सभी अपडेट्स, रिव्यूज और प्रीव्यूज. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
7: Auckland and Wellington traffic report.
8: Pacific में अपने family and friends को भेजे DigiCell का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माय कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस.
9: ट्रैफिक ये चेकआउट कर लेते हैं. नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 28 मिनट्स, सिल्वरडेल से 55 मिनट्स ये लग रहा है. नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 29, सदर्न पर मैनेकाउ से 32, ड्रूरी से 57, साउथ वेस्टर्न फाइन बोथ वेज टू द एयरपोर्ट आपको 27 मिनट्स जो है ये लगेगा. वेलिंगटन में वेल अर्बन इज स्लो सिटी बाउंड, एक बड़ा सा क्यू आपको मिलने वाला है बिफोर द टेरिस टनल. परिडुआ से सिटी सेंटर 31 मिनट्स, लोहाहट से 16, ईस्ट बंद से 40, एयरपोर्ट आपको 17 मिनट्स ये लगने वाला है.
8: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजीसेल. तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक.
9: आज वेंसडे है तो आज वैसे भी ढेर सारे लोग जो है गणपति बप्पा का जो पूजन है ये करते हैं. बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, कल जब मैं मंदिर गया था बर्थडे के लिए तो वहां पर पता चला कि कल एक और एक स्पेशल डे था जहां पर एक दंत संकष्टी चतुर्थी जो है, वो छोटा गणेश चतुर्थी और अदरवाइज इस अनगर की चतुर्थी जो है, एक स्पेशल डे ये होता है जहां पर गणेश भगवान का जो पूजन है ये किया जाता है. सो इट वॉज वेरी गुड टू नो कि बर्थडे के दिन पर एक और एक स्पेशल जो दिन है ये पड़ता है. एंड इट वाज नाइस टू बी देयर और वहां पर उनका भी जो पूजन वगैरह है ये भी करने का मौका जो है ये मिला. तो कल से ये तिथि शुरू हुआ था, आज जाकर सुबह ये खत्म हुआ. तो जितने भी हमारे गणेश जी के भक्त हैं, आप दोस्तों को भी आज सुबह मॉर्निंग बज में शामिल कर रहे हैं और आप दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गाना अभी मॉर्निंग बज में हम प्ले करने जा रहे हैं.

0: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
2: There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is. I just can't.

0: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz.
1: अभी अपने घड़ी का समय मिला लीजिएगा, सुबह स्टूडियो के घड़ी में 7 बज चुके हैं।
2: वेदर रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय क्रूकिया, विजिट क्रूकिया.co.nz।
1: वेल संजेश तैयार हो गए हैं न्यूज के साथ में, बट जल्द से देख लेते हैं आज मौसम ये क्या बता रहा है। ओकलैंड में आज मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड ये रहेगा, 20 डिग्रीज दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर, ऑफ नाइट 16 डिग्री सेल्सियस ये होने वाला है। वेलिंगटन में आज काफी विंडी सा जो मौसम है ये बना रहेगा, विंडी एंड क्लाउडी, 17 डिग्रीज आज दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस। और उधर क्राइस्टचर्च में आज मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड ये रहेगा, धूप खिली रहेगी, इसके साथ में बादल जो है ये भी गहरे रहेंगे, रात्रि तक कुछ लाइट रेन हल्की सी बारिश ये भी हो सकती है आपके लिए। क्राइस्टचर्च में आज 20 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा। संजेश तैयार हो गए हैं न्यूज के साथ।
3: This is Tarana News.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। पुलिस वेस्ट ऑकलैंड में दो अलग अलग स्टैबिंग वाली घटनाओं के संबंध में जांच कर रही है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पहली घटना में कल मध्याह्न से कुछ पहले स्वानसन रोड पर कुछ लोगों के बीच में झगड़े होने के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। पते पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिले थे, उन पर चाकू से वार किया गया था, लेकिन जान को खतरा नहीं है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और 23 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया गया है। उन पर वाउंडिंग विद इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस बॉडीली हार्म वाले चार्जेस लगे हैं। उन्हें 11 मई को वाइथाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स जब पीड़ित व्यक्ति जिन पर चाकू से वार किया गया था को स्वानसन रोड पर मेडिकल सेंटर लेकर गए हुए थे, तो मेडिकल सेंटर के बाहर एक अन्य घटना में व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया। उनके सिर में चाकू का घाव देखा गया था। जब पुलिस ऑफिसर्स मेडिकल सेंटर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चाकू लेकर के पीड़ित व्यक्ति को खदेड़ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ऑफिसर पर भी प्रहार किया गया, लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंची। बाद में 29 वर्षीय आरोपी ने एक आम व्यक्ति जो कि बस का इंतजार कर रहे थे उन पर चाकू से वार किया। उन्हें पहुंची चोट से उनकी जान को खतरा नहीं है। पुलिस ने 29 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। नेल्सन में दो पुलिस ऑफिसर्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मारने वाले आरोपी ने मैनस्लॉटर या नरहत्या के आरोप को स्वीकार कर लिया है। हेडन टस्का पर क्राइस्टचर्च हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने मेरा वाले चार्ज को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने दो पुलिस ऑफिसर्स को गाड़ी से टक्कर मारी थी। इस घटना में सीनियर सर्जन लिन फ्लेमिंग की जान चली गई। दूसरे ऑफिसर सीनियर सर्जन एडम रमसे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रमसे ने ज्यूरी को बताया कि उन्होंने बस गाड़ी की लाइट को ही देखा था, उसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं है। लिन फ्लेमिंग को इतनी जोर से टक्कर मारी गई थी कि वह 20 मीटर दूर जाकर गिरी थी, जिसके फलस्वरूप उनकी जान चली गई। मुकदमे की सुनवाई जारी है। एक डच शिप जिस पर हंटा वायरस की चपेट में आने के बाद में 3 यात्रियों की मौत हो गई, बहुत जल्द स्पेन पहुंचेगा। क्रूज शिप पर 150 यात्री सफर कर रहे हैं, जिनमें एक कीवी भी बताए गए हैं। समझा जा रहा है कि कुछ और लोग हंटा वायरस की चपेट में आए हैं, लेकिन अभी सिम्टम्स उनमें नहीं दिखे हैं। फ्यूल के खर्चे बढ़ने की वजह से लोग सोच समझकर पैसे खर्च कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 84% लोगों ने अपने खर्चों को एडजस्ट किया है। कार स्पेंडिंग के मुताबिक आजकल सबसे ज्यादा पैसे फ्यूल पर ही खर्च हो रहे हैं। ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात पर और मिसाइल दागे गए हैं। इन हमलों के बीच में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहने से इनकार किया है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस बीच अमरीका का दावा है कि उसके कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरने में सफल हुए हैं। अमरीका का कहना है कि इससे यही कहा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब ईरान का कब्जा नहीं है।
3: स्पोर्ट्स न्यूज।
4: दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन के लिए प्राइज मनी में बढ़ोतरी नहीं की गई तो वे इस टूर्नामेंट का बॉयकॉट करेंगे। इन खिलाड़ियों में वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सेबालेंका और मेंस वर्ल्ड नंबर 1 एनिक सिन्हा शामिल है। इस साल के टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी में 9.5% या $122.5 मिलियन की बढ़ोतरी की गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि ये टूर्नामेंट रेवेन्यू से 15% कम है। खिलाड़ी ATP और WTA कॉम्बाइंड 1000 इवेंट्स के लिए प्राइज मनी में 22% का इंक्रीज देखना चाहते हैं। ओवरनाइट हुए आईपीएल मैच में चेन्नई ने जीत दर्ज की है। चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 बॉल्स के रहते 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 155/47 बनाए थे, जबकि चेन्नई ने 159/2 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया। कैपिटल्स की ओर से समीर रिजवी ने सबसे ज्यादा 40, ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 रन बनाए थे, जबकि सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 87 रनों का योगदान दिया। आईपीएल पर जानकारी चेसर्स और इनडेलेबल होम्स की ओर से। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग का मैच आर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड के बीच में शुरू हो गया है। मैच आर्सेनल के होम ग्राउंड में हो रहा है। पहले लेग के मैच में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर थी। 5 मिनट का मैच हो चुका है, दोनों टीमें नील ओल से बराबर चल रही है।
3: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
0: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: ट्रैफिक ये चेकआउट कर लेते हैं। नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 30 मिनट्स आपको लग रहा है स्लो एट सिल्वरडेल, हैवी फ्रॉम ग्रेवल टू वायराव वैली। नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 32 मिनट्स, सदर्न पर मैनेकाउ से 30, ड्रूरी से 1 आवर प्लस ये हो चुका है। साउथ वेस्टर्न पर इट्स स्लो नॉर्थ बाउंड वीडी के पास में टू द एयरपोर्ट आपको 27 मिनट्स ये लगेगा। वेलिंगटन में वेरी स्लो अराउंड अर्बन स्लो सिटी बाउंड और परिरुआ में सिटी सेंटर 31 मिनट्स, लवाहाट 16, अपहाट 1 आवर 5 मिनट्स, हेवी पैचेस टू सिल्वर स्ट्रीम, ईस्टबर्न 43 एयरपोर्ट आपको 17 मिनट्स लगेगा माउंट विक्टोरिया के द्वारा।
0: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजी सेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड

0: रमेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बस मॉर्निंग बस मॉर्निंग बस
3: मॉर्निंग बस ब्रॉट टू यू बाय वेस्टर्न यूनियन इंडिया। पैसे भेजे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप।
4: यस मॉर्निंग बस ये चल रहा है पर सोनू के साथ आप दे रहे हैं। अब सप्ताह भर में आपका साथ देने वाला हूँ तो आज वेंसडे कल थर्सडे और फ्राइडे को भी मैं यहाँ

में शामिल कर रहे हैं, और आप दोनों के लिए ये प्यारा सा जो गाना है ये भी हम पेश कर रहे हैं मॉर्निंग बज में। और भी जितने भी हमारे दोस्त शामिल हो चुके हैं, आप भी रास्ते में बस निकलने ही वाले हैं, आपको भी हम गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं। जितने भी बच्चे हैं, अब स्कूल की तैयारी ये भी होने लगी है, अब मॉर्निंग रश जो है आफ्टर 7 ये भी शुरू हो जाता है, तो आप सभी दोस्तों को हम गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मॉर्निंग बज।

0: इतनी जल्दी?
1: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255550 पर।

0: घर रखना हो गरम या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: लुकिंग फॉर दैट अनफॉरगेटेबल हॉलिडे इन पैराडाइस? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi home. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
4: मॉर्निंग बस ये चल रहा है सोनल के साथ में, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग ये कहना चाह रहे हैं, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। आप भी रास्ते पर अब निकल चुके हैं, काम की ओर बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक का सामना आप भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका साथ देने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। आजकल आई नो रेडियो जो है ये तो स्टेशन पर नहीं चल रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल अपने एप्स पर सुन रहे हैं, दे लविंग द क्वालिटी, क्योंकि ऐप का जो क्वालिटी है ये डिफरेंट होता है टू जो आप रेडियो पर सुनते हैं। एंड आई थिंक होपफुली, आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट कब है कि रेडियो पर चालू हो जाएगा जहाँ पर आप अपने रेडियो के एयरवेज पर सुन सकते हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक काम जो है होपफुली ये खत्म हो जाए एंड देन एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। क्योंकि जहां पर भी मैं जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी डे एक ही सवाल होता है कि सोनल रेडियो नहीं चल रहा है, क्या हो गया है। देन आई हैव टू एक्सप्लेन कि अभी हमारे मास्ट पर काम जो है ये हो रहा था एंड इट इज ऑलमोस्ट डन। आज 6 मई है तो इंटरनेशनल नो डाइट डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल बेवरेज डे और उसके साथ में नेशनल नर्सेस डे ये भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आपको आपके लाइफ में आप किसी नर्स को जानती हैं तो उनको भी आप यू नो आज मैसेज करके बोल सकते हैं कि डू यू नो आज इंटरनेशनल नहीं आज नेशनल नर्सेस डे है, तो उनको भी आप याद कर सकते हैं। कुछ और प्यारे प्यारे गाने मैंने चुन रखा है, थोड़ी देर में पॉजिटिव अफर्मेशन ये भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। आज कम्युनिटी फोकस्ड रहेगा कि हम कम्युनिटी एक साथ बनकर कैसे काम कर सकते हैं, उस पर भी कुछ पॉजिटिव बातें ये मैं शेयर

0: are tuned in with Sono.
1: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
2: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
1: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM,
2: 378 RRIMU रोड, रामारामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
1: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
2: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
3: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
4: Jaisa sochoge, waisa paoge. Positive affirmation every day in Morning Buzz with Jilesh.
5: वेल, जिरेश के साथ में पॉजिटिव एफर्मेशन ये होता है एवरी मॉर्निंग, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें वो शेयर करते हैं। और जब भी मैं भी आता हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम में, मैं भी इसी तरह के कुछ सोच और विचार जो है ये लेकर आता हूँ। आज कम्युनिटी फोकस्ड रहेगा कि कैसे हम अपने कम्युनिटी में अगर साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और काम करेंगे एक साथ, तो काफी अच्छा रहेगा। तो आज का जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, इट्स अबाउट कम्युनिटी। टुडे वी राइज टुगेदर, कि एक कम्युनिटी के साथ में बंधन में रहकर वी राइज टुगेदर। हमारा स्ट्रेंथ, हमारा यूनिटी ही हमारा स्ट्रेंथ है। सो आवर स्ट्रेंथ इज इन आवर यूनिटी, द काइंडनेस एंड द वे वी सपोर्ट वन अनदर, और एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ गुड मेक्स आवर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो आज का पॉजिटिव एफर्मेशन है, टुडे वी राइज टुगेदर, आवर स्ट्रेंथ इज इन आवर यूनिटी, काइंडनेस एंड द वे वी सपोर्ट वन अनदर, एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ गुड मेक्स आवर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर।

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: मम्मी एयरफोन कान माथी निकाल जरा।
4: શું કીધું દીકરા?
3: અરે કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર।
4: તું કેટલો સારો છો દીકરા।
3: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે।
4: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘડીમાં કામ કરાવો છો, હે ભગવાન।
3: મમ્મી,
4: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
3: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ।
5: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ। ફોન 0800-233-111।
6: ઇસ મધર્સ ડે को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रो स्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रो स्किल। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
7: दिस इज तराना न्यूज।
8: संजेश तैयार हो गए हैं एक न्यूज अपडेट के साथ।
9: ऑकलैंड के एक बस ड्राइवर जिन्होंने एक यात्री से पूछा था कि क्या वे उनका हाथ चूम सकते हैं, ने आरोप स्वीकार नहीं किया है। बस ड्राइवर पर आरोप लगा है कि एक रात अपनी बस की अंदर की बत्तियां बुझाने के बाद में उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था और अकेली यात्री से पूछा था कि क्या वह उनका हाथ चूम सकते हैं। अपनी जान के डर से महिला, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बताई गई है, ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। बस ड्राइवर कार्तिक कुमार ने महिला का हाथ चूमा था और 46 वर्षीय महिला के स्तन को छुआ। इसके बाद में ड्राइवर पर अश्लील हमले का आरोप लगाया गया। कल वैटाकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अलोन ट्रायल में कार्तिक को अदालत में पेश किया गया। कुमार ने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जज टेरी सिंह ने कहा कि बस के सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि कुमार ने ऐसा किया था। इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने देश वापस लौट गई है, वह अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए न्यूजीलैंड आई हुई थी। कुमार, जो पिछले 13 सालों से बस ड्राइविंग कर रहे हैं, पीजी से न्यूजीलैंड काम करने के लिए आए हुए हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद में उनकी नौकरी अब छूट गई है। उनके वकील ने कुमार को आरोप मुक्त करने की मांग की है। मुकदमे का फैसला इसी महीने के अंत में सुनाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आज जारी किया जाएगा। समझा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% ही बना रहेगा। फ्यूल के खर्चे बढ़ने की वजह से लोग सोच समझकर पैसे खर्च कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 84% लोगों ने अपने खर्चों को एडजस्ट किया है। कार स्पेंडिंग के मुताबिक आजकल सबसे ज्यादा पैसे फ्यूल पर ही खर्च हो रहे हैं। ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब अमीरात पर और मिसाइल दागे जाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहने से इनकार किया है कि क्या ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिका का कहना है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर अभी भी लागू है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहुत ही आसान काम कर सकता है, वह बस यूएस की शर्तों को स्वीकार कर ले और ये युद्ध रुक जाएगा। और आर्सेनल एथलेटिको मैड्रिड के बीच में 32 मिनट्स का मैच खेला जा चुका है। ये यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का दूसरे लेग का मैच है। दोनों टीमें नील ओल से बराबर है। पहला मैच दोनों टीमों के बीच में एक एक गोल से बराबर में समाप्त हुआ था।
8: फुल न्यूज संजेश लेकर आएंगे 8 बजे के करीब, और उधर उसके साथ में वेदर अपडेट ये भी हम चेकआउट करेंगे। इस गाने के बाद में रास्ते में ट्रैफिक ये क्या बता रहा है ये भी हम चेकआउट करेंगे। आप आज देरी से शामिल हुए हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आज मॉर्निंग बज़ में मैं सोनल आपका साथ दे रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Auckland and Wellington traffic report.
1: Indelible Homes, trusted and experienced subdivision and build specialist. Call 0800 233 111.
2: ट्रैफिक ये भी चेकआउट कर लेते हैं, रास्ते का हाल ये क्या चल रहा है। उधर नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 39 मिनट, सिल्वरडेल से एक घंटा से ऊपर आपको लग रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 42 मिनट्स, उधर हेवी फ्रॉम अपर हाबर हाईवे टू थिएटर 2 और पॉइंट शेफ से लेकर सिटी तक काफी हेवी पैचेस आपको मिलने वाले हैं। सदर्न पर मनेकाव से आपको 49 मिनट्स, ड्रूरी से 1 आवर 10 मिनट्स। साउथ वेस्टर्न पर स्लो नॉर्थ बाउंड एट वीरी टू द एयरपोर्ट आपको सिटी सेंटर से 27 मिनट्स जो है ये लगने वाला है। वेलिंगटन की ओर देखा जाए, वेल अर्बन इज स्लो सिटी बाउंड और काफी धीरे धीरे वहां पर चल रहा है टेरिस टनल के करीब। परिरुआ से सिटी सेंटर आपको 40 मिनट्स ये लग रहा है और लवाहट से 16, अपरहट से 1 आवर 5 मिनट्स। हैवी पैचेज टू सिल्वर स्ट्रीम एंड हैवी एट केजीबी। ईस्टबर्न 50 मिनट्स और एयरपोर्ट माउंट विक्टोरिया के द्वारा आपको 17 मिनट्स ये लगने वाला है।
1: Indelible Homes. They specialize in building standalone and terraced houses and provide 10 years master builder guarantee. Built with Indelible Homes.
3: Morning Buzz, Morning Buzz, Morning Buzz.
4: Suniye Morning Buzz. Sombar se Shukravar, subah 6 se 9. Shilesh aur Sanjesh ke saath.
2: मॉर्निंग बज ये चल रहा है सोनल और संजेश के साथ में। एक एड ब्रेक ये हम लेते हैं। एड ब्रेक के बाद में आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है ये भी प्ले होगा। फिर उसके बाद में एक और एक ट्रैफिक अपडेट, स्टार ऑफ द वीक, और इसी तरह से ये जो आवर है ये समाप्त हो जाएगा। एंड देन 8 to 9 ऑलरेडी टाइम कहाँ चला गया आज सुबह ये पता नहीं चला। सो लेट्स हैव दैट क्विक एड ब्रेक। ब्रेक के बाद में एक कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है ये हम सुनेंगे।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
6: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
5: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
6: सिंपल, KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए। वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748711 पर या विजिट कीजिए KMBConstruction.co.nz.
7: KMB Construction. Ghar banaye bina stress.
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
9: Money Matters on Morning Number 1 brought to you by Global Financial Service Limited. Weekdays at 7:45 AM. Global Finance, phone 0925-5500.
10: आप लोगों ने नोटिस किया होगा हम रेडियो पे एवरी सिंगल मॉर्निंग ग्लोबल फाइनेंस के कस्टमर से बात करते हैं। टुडे अगेन वील बी स्पीकिंग विद वन इंटरेस्टिंग कस्टमर। द नेम इज नलेश। गुड मॉर्निंग नलेश, हाउ आर यू?
11: गुड मॉर्निंग जिलेश, आई एम गुड थैंक यू।
10: हे लुक, कांग्रेचुलेशंस, आई हर्ड यू वन लाइक $500 प्रेजी कार्ड थ्रू ग्लोबल फाइनेंस।
11: यस दैट इज करेक्ट, दैट वाज थ्रू वन ऑफ द प्रमोशंस दे हैड रिगार्डिंग रेफरिंग कस्टमर्स।
10: सो या व्हाट्स द कंप्लीट स्टोरी, हाउ डू यू विन दिस, व्हाट डू यू हैव टू डू टू
11: Well,
10: this.
11: Basically, it's not very hard. Everything is there on their Facebook page. So basically, you just enter, and you would have obviously referred our clients to Global Finance, and that's pretty much it, really.
10: Right. But the biggest question is, in this competitive market, why would you refer your friends and family to Global Finance and not someone else?
11: That's because I've already had experience with Global Finance. Going back around, I joined up with Global Finance going back around 2011, 12.
10: Right.
11: So I have been with them for a very long time. They have looked after us really well, our mortgages, our business, insurances. So that's why we recommend to our friends and family. We've recommended a lot of people through Global Finance.
10: As a customer, what is something that you look for in a mortgage advisor that Global Finance has?
11: First of all, it's trust. Trust is the main key. Great advice, best advice, best deals through banks. Obviously, with Global Finance, they have a good rapport with banks. I mean, going back maybe 25, 30, 40 years.
10: Wow.
11: So I think the main three things that has led us to keep with Global Finance is obviously trust.
10: Right. Also, tell me a bit about, so for example, someone that you've already recommended to Global Finance, I'm sure they call you back and be like, hey, this was my experience. What do you hear from people you've referred to Global Finance?
11: We have referred a lot of friends and family, different walks of life, backgrounds. I haven't had one bad comment come back.
10: Wow.
11: Yep. So,
10: that's massive.
11: And generally it's to do with their finance or refinancing. But a lot of my friends and family have taken up insurances with them as well.
10: Nice.
11: And they could not be happier. It's just given them more flexibility around their lifestyle.
10: Right.
11: Which is hard to believe. But one thing I just say to people is, until you don't give Global Finance a chance, you don't go through it, you don't know.
10: Perfect. So, hey, listen, if you want to get in touch with Global Finance, the number is 0925-5500. It is 0925-5500. And as you heard, if you refer Global Finance to your friends and family, you get into a draw where you can win big as well. Check it out on globalfinance.co.nz.

0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डिजिसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 36 मिनट, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी से 42 मिनट्स लग रहा है, सदर्न पर मैंने कहा से 55, साउथ वेस्टर्न स्लो नॉर्थ बाउंड एट वेरिंग टू द एयरपोर्ट 27 मिनट्स ये आपको लगेगा। परिरुव से सिटी सेंटर 38 मिनट्स, लेवन से 1 hour 25, लोअर हट से 16, ईस्ट बर्न से 50 मिनट्स और एयरपोर्ट आपको 17 मिनट्स ये लगने वाला है।
1: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSale. So, bheje $20 ka top up ya $300 cash to your family and friends in the Pacific.
3: Is hafte ke star of the week hai music director Dilip aur Samir Singh.
4: Brought to you by KMB Construction. Naya ghar bana rahe hain ya extension kar rahe hain, to aaj hi call kare Bhupendra Kumar ko 01874871 par.

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। isubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ isubscribe.co.nz। Ashik Homes Limited, for the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
1: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
3: तो डॉक्टर अजीक के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
2: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
3: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
2: पर यह सुरक्षित तो है ना?
3: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
0: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurda.com।
4: माँ के प्यार की हदें नहीं होती, अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जान बसती है इनकी हम में और हमारी इनमें, इसीलिए सुबह सुबह उठकर आवाज देती हूँ, सूरज आता होगा अपने वक्त पर। मैं तो अपना सूरज माँ की सूरत में ही देख लेती हूँ। जब आस पास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आंख मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ, तुरंत उनकी आवाज सुन लेती।
5: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
6: रेडियो तराना, टाइम चेक, टाइम चेक।
0: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
7: टाइम चेक ये कर लेते हैं। रेडियो तराना स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज चुके हैं।
8: Weather report brought to you by Krukia. Visit krukia.co.nz.
7: वेदर ये चेकआउट कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट आवर में मिस कर दिया था तो वेल, आज ओकलैंड में 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये रहेगा। मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, धूप जो है ये खिली रहेगी और उसके साथ में बादल जो है ये भी घेरे रहेंगे। आज ओवरनाइट 16 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहेगा। कल थर्सडे के लिए मोस्टली क्लाउडी रहेगा ओकलैंड में और काफी ब्रीजी ये भी होने वाला है। 20 डिग्री सेल्सियस कल का हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 5 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा। वेलिंगटन की ओर देखा जाए तो आज विंडी वेलिंगटन अपना नाम जो है ये बरकरार जरूर रखेगा, काफी विंडी रहेगा। 17 डिग्री आपका हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रहेगा। कल थर्सडे है तो कल भी सेम मौसम जो है वेलिंगटन में ये बना रहेगा, विंडी सा जो मौसम है। 18 डिग्री आपका हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये होने वाला है। क्राइस्टचर्च आज आपके लिए भी मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, ओकलैंड की तरह लाइट नॉर्दर्ली विंड्स ये रहेंगे। 20 डिग्रीज हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है दिन भर में, ओवरनाइट 14 डिग्रीज और रात को कुछ बारिश जो है ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल थर्सडे के लिए बताया गया है कि जो क्लाउडी सा मौसम है ये बना रहेगा। क्राइस्टचर्च में 19 डिग्रीज हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर जो है ये होने वाला है। ऑलराइट संजेश, ये तैयार हो गए हैं न्यूज के साथ।
9: दिस इज तराना न्यूज,
10: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन 82 यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो एयरलिंक की उस फ्लाइट में थे जिसमें सफर करने वाले एक यात्री की मौत क्रूज शिप पर हंटर वायरस की वजह से हो गई। साउथ अफ्रीकन एयरलाइन एयरलिंक में 82 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, अब उनसे संपर्क किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी फ्लाइट में गई एक महिला क्रूज शिप पर हंटर वायरस का शिकार हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनकी मौत हो गई। हंटर वायरस का शिकार होने के बाद में क्रूज शिप पर 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ और लोग इस वायरस के चपेट में आए होंगे, लेकिन अभी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक लीडर डेविड सीमो का कहना है कि कुछ बीमारियों का इलाज स्वयं फार्मासिस्ट तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे जीपीज पर जो दबाव बना हुआ है उसे कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन सहित स्किन चेक्स फार्मासिस्ट कर सकते हैं तथा इसमें जीपीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वे ऑकलैंड के नॉर्दर्न क्लब में पार्टी पॉलिसी के अनाउंसमेंट करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्किन कंडीशंस के लिए कौन सी दवा होती है ये स्वयं फार्मासिस्ट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को जीपी के पास में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेबर पार्टी ने अंतिम माउरी सीट के लिए अपने उम्मीदवार का चयन कर लिया है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के फुल ब्राइट स्कॉलर टे अपोहो कथिने को तेताई हाउआरु सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल नेशनल पार्टी की ओर से रियल एस्टेट ब्रोकर ललित आर्या को ओटहू सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। आर्या 2017 से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे इससे पहले फैशन और रिटेल में भी काम कर चुके हैं। ऑकलैंड के एक बस ड्राइवर जिन्होंने एक यात्री से पूछा था कि क्या वे उनका हाथ चूम सकते हैं, ने आरोप स्वीकार नहीं किया है। बस ड्राइवर पर आरोप लगा है कि एक रात अपनी बस की अंदर की बत्तियां बुझाने के बाद में उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था और अकेली यात्री से पूछा था कि क्या वह उनका हाथ चूम सकते हैं। अपनी जान के डर से महिला, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बताई गई है, ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। बस ड्राइवर कार्तिक कुमार ने महिला का हाथ चूमा था और 46 वर्षीय महिला के स्तन को छुआ। इसके बाद में ड्राइवर पर अश्लील हमले का आरोप लगाया गया। कल वैटाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अलोन ट्रायल में कार्तिक को अदालत में पेश किया गया। कुमार ने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जज टेरी सिंह ने कहा कि बस के सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि कुमार ने ऐसा किया था। इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने देश वापस लौट गई है। वह अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए न्यूजीलैंड आई हुई थी। कुमार, जो पिछले 13 सालों से बस ड्राइविंग कर रहे हैं, पीजी से न्यूजीलैंड काम करने के लिए आए हुए हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद में उनकी नौकरी अब छूट गई है। उनके वकील ने कुमार को आरोप मुक्त करने की मांग की है। मुकदमे का फैसला इसी महीने के अंत में सुनाया जाएगा। अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वैत्री कशगम TVK कल तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की कोर टीम बहुमत साबित करने के लिए द्रविड मुनेंद्र कशगम DMK गठबंधन के सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस, विदुतलाई चिरुथैगल खाची VCK और वामपंथी दलों से औपचारिक बातचीत शुरू कर चुकी है। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालन ने दावा किया है कि विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। पार्टी 108 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद कल अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि ये चुनाव परिणाम जनता का वास्तविक जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। पीजी के लंबासा में व्यापारी प्रेमचंद की हत्या करने के आरोप लगे 26 वर्षीय अननायसा ओनो को कल लंबासा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। उन पर मेदावाला एक मामला दर्ज हुआ है। 55 वर्षीय प्रेमचंद पर रविवार की तड़के सुबह हमला हुआ था, जिसके फलस्वरूप उनकी मौत हो गई। कुछ वाद विवाद के बाद में प्रेमचंद पर चाकू से वार किया गया था, जिसके फलस्वरूप उनकी जान चली गई।
9: स्पोर्ट्स न्यूज।
10: यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच में अब आर्सेनल की जीत एटलेटिको मैड्रिड से 1-0 से होने लगी है। मैच आर्सेनल के होम ग्राउंड में खेला जा रहा है। 44th मिनट में साका ने गोल बनाकर के आर्सेनल को 1-0 से आगे कर दिया है। आर्सेनल टीम एग्रीगेट 2-1 से अब आगे हो गई है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन में प्राइज मनी नहीं बढ़ाया गया तो वे टूर्नामेंट का बॉयकॉट करेंगे। वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सेवालेंका और मेंस वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिन्हा उन खिलाड़ियों में शामिल है जो प्राइज मनी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइजर्स ने इस साल के टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी में 10% की बढ़ोतरी की है। कुल $123 million प्राइज पूल रखा गया है, यानी कि $5.3 million की बढ़ोतरी प्राइज पूल में की गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि प्राइज मनी में जो बढ़ोतरी की जा रही है वह टूर्नामेंट रेवेन्यू से 15% कम है। फ्रेंच ओपन मई 24 से खेला जाना है। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच जीतने के बाद में पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर चली गई है। दिल्ली कैपिटल्स को उसके होम ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 बॉल्स के रहते 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर्स में 155 फॉर 7 बनाए थे, जवाब में 17.3 ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने 159 फॉर 2 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से समीर रिजवी ने सबसे ज्यादा 24 में से 40 रन दिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 में से 38 रन बनाए। सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन ने 52 में से 87, कार्तिक शर्मा ने 31 में से 41 रनों का योगदान दिया। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई के पास में 10 मैचों के बाद में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स लेकर के सातवें स्थान पर है। पंजाब 13 पॉइंट्स लेकर के शीर्ष पर है, जबकि चार टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के पास में 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल का अगला मैच कल सुबह

अपबीट एंड फंकी वे, कि जो जो बच्चे जो हैं अगर वो नहीं बिलीव करते हैं आजकल के बच्चे, यू नो दे नॉट एज स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, अगर उनको थोड़ा सा यू नो स्टोरी बताना है, सुनाना है, या थोड़ा सा उनके अंदाज में अगर बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा अगर अपबीट और फंकी म्यूजिक के साथ में कोई स्टोरी बताएं, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स जो उनको जो है छोटे छोटे बच्चे और जो आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो, आपने शायद ये गाना को कभी नहीं सुना है, आज आपको मैं रेडियो तराना मॉर्निंग बस पर सुनाता हूँ। इंजॉय।

0: चलो लेट्स गो।
1: बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
0: अरे जाना जरूरी है, चलो।
1: मैं जाऊंगा, डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा।
0: बाबा वी आर गोइंग टू डॉक्टर राजीव, जिनके पास 25 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेंटल केयर। और इनके यहाँ आजकल डेंटल क्लीन एंड पॉलिश पे स्पेशल्स भी चल रहे हैं फॉर जस्ट $120 टीज एंड सी सप्लाई एट 357 ग्रेट साउथ रोड ओटाहू।
2: सालों से न्यूजीलैंड में डेंटल केयर में विश्वसनीय नाम डॉक्टर राजीव एट ओटाहू डेंटल केयर। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल ऑन 0927675 64, that's 2767 564, or visit otahuhudental.co.nz.
0: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
3: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एनजेड मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
3: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा क्या होगा भाभी?
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09

0: 2650505 or visit NZ Mandap Facebook page.
1: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट.
2: अरे इंडेलिबल होम्स वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई.
3: हाय मैं हूँ गुड़िया भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था. अब मेरे पास मेरा अपना रूम है बहुत बड़ा बहुत अच्छा. Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
2: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
4: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the step mums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in store today.
5: You are tuned in with Sono.
6: यस सोनल के साथ में चल रहा है मॉर्निंग बज. आपका भी स्वागत कर रहे हैं. दूसरी ओर मैं देख रहा था आज उधर ओएससी प्रो लीग का जो सेकंड फेज है ये अब शुरू हो रहा है जहां पर टॉप फोर और बॉटम फोर को सेपरेट कर दिया गया है. एंड आज से जो मैचेस हैं यहाँ पर गो मीडिया माउंट स्मार्ट स्टेडियम पर शुरू हो जाएंगे. काफ़ी दिलचस्पी है अराउंड दी बुला एफसी गेम. बुला एफसी जो फिजी की टीम है अगेंस्ट साउथ आइलैंड यूनाइटेड. ये आज 3 PM किक ऑफ जो है ये होने वाला है एट गो मीडिया माउंट स्मार्ट स्टेडियम. और फिर उसके बाद में 7 PM पर ओकलैंड एफसी और उसके साथ में साउथ मेलबर्न के बीच में जो खेल है ये रहेगा. तो आई नो ढेर सारे फैंस जो है इकट्ठा होने वाले हैं आज गो मीडिया माउंट स्मार्ट के पास और बुला एफसी को जो है सपोर्ट करने के लिए जरूर जाने वाले हैं. और उसके साथ में उधर बता दें कि अब मदर्स डे जो है ये आ रहा है तो आप भी अपने माँ के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं थैंक्स टू डिजिसेल. अगर आप $20 का टॉपअप जो है या $300 का मनी ट्रांसफर आप एक माई कैश वॉलेट इन द पैसिफिक को वापस घर भेजते हैं देन आप भी वन ऑफ $15,500 का जो कैश प्राइज है ये आप जीत सकते हैं. सो डिजिसेल मेकिंग इट इजी टू शेयर द लव टीज एंड सीज अप्लाई. आप भी और भी जानकारी के लिए डिजिसेल का जो फेसबुक पेज है या इनका वेबसाइट ये चेकआउट कर सकते हैं. थोड़ी देर में संजय शेखर एक न्यूज अपडेट लेकर हाजिर हो जाएंगे. तब तक के लिए कुछ और प्यारे प्यारे गाने आप दोस्तों के लिए ऐसाओं में मैं पेश करता चलूंगा.

0: You are tuned in with Sono.
1: उधर दीपक टेला भाई आपको भी स्वागत कर रहे हैं, आप प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं उधर वेलिंगटन में, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और मास्टर सत्यदत्त आपको भी स्वागत कर रहे हैं फ्लैटबुश में, आप भी प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं।

0: relationship has both sides.
1: Speak out your heart to us by liking and following our Facebook page, facebook.com/radiotaranaNZ.
2: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। और डुबे ब्लैंकेट और स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
3: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
4: इट्स इजी फॉर लाइफ एडमिंटस Slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
6: दिस इज तराना न्यूज।
7: संजेश, ये तैयार हो गए एक और एक न्यूज अपडेट के साथ।
8: एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वेसल को निशाना बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि न्यूजीलैंड समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एक कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है। अननोन प्रोजेक्टाइल से उसे निशाना बनाया गया है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार से दुनिया के साथ वही करेगा जो वह अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि परमाणु हथियार विकसित न करने के ईरानी दावे उन के कार्यों से झूठा साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को युद्ध और शांति में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन शांति के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि ईरानी सरकार परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं करेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% है तथा 5.4% पर इसे कायम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य पूर्व में जारी संकट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई सुधार नहीं देखा जाएगा। नए डाटा 10:45 AM जारी किया जाना है। ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। ऑस्ट्रिया ने रूसी दूतावास के 3 कर्मचारियों को निष्कासित इसलिए कर दिया है क्योंकि उन पर वियना में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। चीन में फायरवर्क्स फैक्ट्री में हुए धमाके में 26 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया है कि ये ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है क्योंकि पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। ट्रंप ने इस जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के मजबूत समर्थन का प्रतीक बताया और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। सुबह के मिड रोड स्थित टॉपलाइन हाउसिंग के एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले इलाके में हुए हमले के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह मामला फिजी सेना के एक अधिकारी के 20 वर्षीय बेटे पर हुए हमले से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि 20 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया था। पुलिस का कहना है कि वे और अधिक जानकारी और बयान जुटा रहे हैं। अगला समाचार अगले घंटे पर।

0: मॉर्निंग बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
1: नमस्ते ऑकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
2: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
1: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवना कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
2: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
1: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हे हैमिल्टनियंस, गेस व्हाट, अब आपके यहाँ हैमिल्टन में आ गया है ग्लोबल फाइनेंस। For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं। Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. ग्लोबल फाइनेंस नाउ इन हैमिल्टन।
4: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
5: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
6: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल्ला लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0222-353-0872 और विजिट gullaw.co.nz।
2: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
7: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
2: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
7: सिंपल, KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए। वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748871 पर या विजिट कीजिए kmbconstruction.co.nz।
2: KMB कंस्ट्रक्शन, घर बनाए बिना स्ट्रेस।
8: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
2: पापाटोई, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड, हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग।
9: ऑकलैंड मोटरवेज की ओर देखा जाए, नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 32 मिनट्स ये लग रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 36, सदर्न पर मैनेकाओ से 47, ड्रूरी से 58, साउथ वेस्टर्न पर स्लो। नॉर्थ बाउंड एट वेरी टू द एयरपोर्ट आपको 27 मिनट्स ये लगेगा। वेलिंगटन पोलिडोरा से सिटी सेंटर 36 मिनट्स, लवहट से 16, अपर हट से 1 घंटा, ईस्टबर्न 45, एयरपोर्ट माउंट विक्टोरिया के द्वारा 17 मिनट्स ये लगने वाला है।
2: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।

0: Quality Care Dental, with over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800-MY-DENTIST or 09626-5205.
1: Quality Care Dental. Always very gentle.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: यार मुझे फीजी जाना था।
4: कब जाना है?
3: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
4: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
3: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
4: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
5: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
6: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
7: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with great value to prepare your site and keep jobs moving no matter the weather. From lighting, site safety and security to drainage and moisture control, we've got you covered. Get set for winter with Bunnings Trade.
8: Auckland and Wellington traffic report.
9: Saturday 9th May को तराना टीम के साथ आएं शॉपिंग करने के लिए at NZ Beds Manukau Super Center store and get some exclusive deals जैसे one free pillow with every purchase of any bed.
10: ऑकलैंड मोटरवेज की ओर देखा जाए तो उधर नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 32 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी से 36, सदर्न पर मैनेकाओ से 47, ड्रूरी से 58, साउथ वेस्टर्न पर स्टिल स्लो, नॉर्थ बाउंड बाय विरी टू द एयरपोर्ट 27 मिनट्स ये लगेगा। वेलिंगटन में पोरिरोस से सिटी सेंटर 36 मिनट्स, लेवन से 1 आवर 25, लोअर हट से 16, अपर हट से 1 घंटा, Eastburn 45, airport via Mount Victoria, 17 minutes, ये आपको लगेगा।
9: Mattresses starting from just $299, the widest range of budget beds and high-tech beds at NZ Beds. तो आए इनके Manukau Supercenter store में on Saturday 9th May, at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
11: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सिंह।
12: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
10: और स्टार ऑफ द वीक का जो गाना है आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मॉर्निंग बज में आज आपने मेरा साथ दिया। अब मुलाकात करेंगे कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस, थर्सडे मॉर्निंग 6 AM मॉर्निंग बज की शुरुआत ये हम करेंगे। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक वेंसडे, मिलेंगे टुमारो मॉर्निंग, बाय।

0: कौन?
1: मैं यमराज हूँ।
0: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
1: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
0: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
1: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
0: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
2: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218-7-0-0-1-2 पर।
3: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग्स।
5: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
4: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
2: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
3: रेडियो तराना टाइम चेक,
0: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111, वेबसाइट indeliblehomes.co.nz।
4: रेडियो तराना स्टूडियो में सुबह के 9 बजे हैं।
5: This is Tarana News.
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। नॉर्थलैंड में कल रात दो डेड बाइक राइडर्स के बीच में हुई एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए। रात 11 बजे के बाद में हुई एक गंभीर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को कायकोहे के पास नापीपीटो रोड पर बुलाया गया था। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि एक व्यक्ति घटना स्थल पर मृत पाए गए। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दो लोग अपनी डेड बाइक से गिर गए, एक कायकोहे के नापीपीटो रोड पर और दूसरा मोरेवा के ताना रोड पर। पुलिस ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। अमरीकी सेना द्वारा समर्थित शोध के अनुसार क्रूज शिप पर फैले हंटर वायरस के एंडस स्ट्रेन में सुपर स्प्रेडर घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता है। नेदरलैंड्स के क्रूज शिप पर 3 लोगों की मौत हंटर वायरस की चपेट में आने के बाद में हो गई। क्रूज शिप पर 140 से अधिक लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, उन्हें जहाज से उतरने से मना किया गया है। हंटर वायरस चूहों से फैलने वाला एक वायरस है जो मनुष्यों के बीच में फैल सकता है। यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस, जिसे सेंटर ऑफ द यूएस बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, का कहना है कि साल 2020 में किए गए एक शोध से पता चला था कि हंटा वायरस का एंडस स्ट्रेन लोगों के बीच में तेजी से फैल सकता है, यानी कि कोरोना वायरस जिस तरह से लोगों में फैला था उसी तेजी से ये वायरस लोगों में फैल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वेसल को निशाना बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि न्यूजीलैंड समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एक कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है। अननोन प्रोजेक्टाइल से उसे निशाना बनाया गया है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार से दुनिया के साथ वही करेगा जो वह अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि परमाणु हथियार विकसित न करने के ईरानी दावे उनके कार्यों से झूठा साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को युद्ध और शांति में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन शांति के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि ईरानी सरकार परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं करेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% है तथा 5.4% पर इसे कायम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य पूर्व में जारी संकट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई सुधार नहीं देखा जाएगा। नए डाटा 10:45 AM जारी किया जाना है। ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। ऑस्ट्रिया ने रूसी दूतावास के 3 कर्मचारियों को निष्कासित इसलिए कर दिया है क्योंकि उन पर वियना में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। चीन में फायरवर्क्स फैक्ट्री में हुए धमाके में 26 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया है कि यह ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है क्योंकि पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। ट्रंप ने इस जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के मजबूत समर्थन का प्रतीक बताया और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। सुबह के मिड रोड स्थित टॉपलाइन हाउसिंग के एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले इलाके में हुए हमले के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह मामला फिजी सेना के एक अधिकारी के 20 वर्षीय बेटे पर हुए हमले से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि 20 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया था। पुलिस का कहना है कि वे और अधिक जानकारी और बयान जुटा रहे हैं।
7: स्पोर्ट्स न्यूज।
6: आर्सेनल सोकर टीम यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। आर्सेनल ने यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच में अपने होम ग्राउंड में एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया है। साका ने 44th मिनट में गोल बनाया था। 2-1 एग्रीगेट स्कोर के साथ में आर्सेनल टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। फाइनल में उसका सामना बायर्न म्यूनिख या फिर पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। पहले मैच में पेरिस सेंट जर्मेन ने बायर्न म्यूनिख को उसके होम ग्राउंड में 5-4 से हराया था। फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स के पहले वार्म अप मैच की पुष्टि कर दी गई है। वर्ल्ड नंबर 85 ऑल वाइट्स का सामना हैती से जून सेड को होगा। 7 जून को टेम्पा में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ऑल वाइट्स का ये वार्म अप मैच खेला जाना है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 जून से होगी। ऑल वाइट्स टीम लॉस एंजलिस में पहले मैच में ईरान का सामना करेगी, दूसरे मैच में इजिप्ट और तीसरे ग्रुप मैच में ऑल वाइट्स का सामना बेल्जियम से होगा। ये दोनों मैचेस वैंकूवर में 22nd और 27 जून को खेला जाना है।
4: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
8: There's a reason the Big Ben six pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming. But so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben. Feed your mission.
9: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
10: IKEA.
11: Taji, AJ ke ghar diya aur humme?
12: Tumhe paas hai ghar?
11: Wo to hum kharida hai. Tum nahi dega humme kuch.
12: Ye tum log ko jo mangta humse hai. Humme de dega ki nahi yaar?
11: Raan do, nahi mangta.
12: Tum chahe muh phulao, chahe chillao. Ek cent nahi dega.
11: Haan, sab leke jana.
12: Haan, hum leke jayega. लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
11: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
13: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करें कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस। Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
14: ऐसा लगता है कि दूर किसी पुराने जमाने की पगडंडी पर कोई मुसाफिर बहुत सारी स्मृतियां एक बोरी में डाले खड़ा सुबह 9 का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही घड़ी टन से 9 बजाती है, मुसाफिर बोरियों को खोलता है और ब्लैक एंड व्हाइट तराने की झनकार सारे घर में फैल जाती है।
4: प्यारे सुनने वाले श्रोताओं, हमारे साथी मगन डाया के साथ मैं पवन आपका स्वागत कर रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट तराने प्रोग्राम में। आज हम मुबारक बेगम पर एक और प्रोग्राम लेकर आए हैं। मुबारक बेगम जी ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में और इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, और वो फिल्मों के गाने इतने बेमिसाल है कि उनको हम छोड़ना नहीं चाहते थे, उन गानों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहते थे। हो सकता है आज ही नहीं, कल और कल भी ही नहीं, परसों भी शायद मुबारक बेगम के ऊपर ही

काफी सफल हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। दीवान बहादुर अटल राय एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही धनवान बिजनेसमैन होते हैं। गुलिस्तान नाम का उनका मेंशन होता है, बंगला होता है मलबा हिल बॉम्बे में, और उनकी पत्नी होती है मालती, दो बच्चे होते हैं पवित्र और साथ में चरित्र। सो पवित्र को एडॉप्ट किया होता है परिवार वालों ने, और उसका जो भाई होता है बायोलॉजिकल सन जो इस परिवार का होता है, कैसे वो लापरवाह किस्म का होता है और लड़कियां कैसे फिर अपने परिवार और घर को संभालती है, यही इस फिल्म की कहानी है। उसका ये गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं और दो नगमे हम आपको बैक टू बैक सुनाएंगे। मैंने कभी नहीं सुना था इस फिल्म का नाम, लेकिन हाँ 1962 में एक फिल्म बनाई गई थी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, रोमांटिक फैमिली फिल्म, डॉक्टर विद्या। फिल्म बनाने वाले थे मोहन सैगल और डायरेक्ट किया था राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म में टाइटल रोल किया था मनोज कुमार ने, और लीला चिटनिस इनके साथ में थी, नज़ीर खान, हेरन सुंदर और मुमताज़ बेगम ने प्रोमिनेंट रोल इस फिल्म में किया था। फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले मोहन सैगल, उन्होंने खुद के बैनर तले, उन्होंने अपना खुद का बैनर तब बनाया था डीलक्स फिल्म्स, उसके झंडे तले उन्होंने फिल्म बनाई थी। उन्होंने एस जी बर्मन को चूज़ किया था इस फिल्म में संगीत से गानों को सजाने के लिए, और इस फिल्म में गानों को लिखने वाले राजा मेहंदी अली खान साहब और साथ में मजरूह सुल्तानपुरी। तो पहला गाना रहेगा फिल्म दो फूल का, उसके बाद डॉक्टर विद्या।

0: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
1: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Kia ora, Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.

0: मॉर्निंग बज विद जिलेश।
1: आजकल गैर भारतीय भी पड़ोसियों के रेडियो पर बज रहे पुराने गाने गुनगुनाने लगे हैं, क्योंकि अब 9 बजे रेडियो का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अब पड़ोसी भी हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट तराने गुनगुनाने लगे हैं। मेरी जान संडे के संडे आना, मेरी जान संडे के संडे।
2: आज पुराने जमाने की एक्ट्रेस मुबारक बेगम को हम एक बार फिर से रेडियो तराना के जरिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उन्होंने ज़्यादातर साइड रोल्स ही किए, कभी माँ, कभी बहन, कभी दादी, कभी कभी विलनस का रोल भी उन्होंने किया। बहुत सारी 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। फिर अचानक से 1980s में एक्टिंग करने के बाद वो गायब हो गई कि उनके बारे में हार्डली कोई जानकारी इस दुनिया वालों को या फिर उनके साथ में काम कर रहे लोगों के को पता है। लेकिन हाँ, ये जानकारी तो है कि उनकी बहन की एक बेटी ने भी, नाज़मीन नाम की लड़की ने भी इस इंडस्ट्री में नाम कमाया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत सारा कर जाते हैं और चुपके से बस खिसक लेते हैं इस इंडस्ट्री से। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है मुबारक बेगम साहिबा। आप उनके बारे में जब गूगल सर्च करेंगे मुबारक बेगम एक्ट्रेस, एक्चुअली में मुबारक बेगम सिंगा का बार बार आता रहेगा, या पाकिस्तान के एक दो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आएंगे। बहुत ढूंढने पर आपको एक्ट्रेस मुबारक बेगम के बारे में कुछ जानकारियां मिलेंगी। उन्होंने ही 1960 की फिल्म में काम किया था जिसका नाम था मंजिल। मंजिल नाम की बहुत सारी फिल्में बाद में भी आई थी 70s और 80s में, लेकिन ये फिल्म देवानंद और नूतन जी को लेकर के बनाई गई थी। अचला सचदेव कैन सिंह इस फिल्म में भी नजर आए थे रोल में। ये एक बहुत ही सक्सेस फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इसको एवरेज बताया गया कि बॉक्स ऑफिस पर थी। शिमला में 1929 में ये फिल्म की कहानी है, 1929 में राजकुमार मेहता की कहानी, या राजू उनका नाम होता है जिनको प्यार से लोग कहते हैं, जो देव साहब ने ये रोल निभाया था। और वो अभी भी इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौट के आते हैं और वहीं पर उनकी बचपन की दोस्त पुष्पा के साथ में उनकी मुलाकात होती है। और राजू के पिताजी मेहता चाहते हैं कि वो परिवार के बिजनेस के साथ में कंटिन्यू करे, लेकिन राजू का रुझान मौसीकी की तरफ, संगीत की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो प्यार में भी पड़ जाता है और अपने प्रोफेशन के ज़रिए वो कैसे अमीर से फ़कीर के रास्ते पर चलता है, पिताजी इसकी अनुमति नहीं देती है। फिर मोहब्बत क्या रंग लाती है, यही इस फिल्म की कहानी है। उसका अगला गाना हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद का जो गाना है वो हमने लिया है फिल्म हम सब चोर से। अच्छा, हम सब चोर नाम की मूवी 1956 में सबसे पहले बनाई गई थी, उसके बाद में 60s में और फिर 90s में भी हम सब चोर नाम की फिल्म बनाई गई थी। ये जो हम सब चोर है 1956 की फिल्म है, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, भरपूर थी, लोग कहते हैं कि हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी है और ये बचपन में जब खो जाते हैं और फिर कैसे इनका मिलन होता है, और बीच में जो कॉमेडी डाली गई है इस फिल्म में, लोग कहते हैं देखने वाले कि ये बेमिसाल है। तो दूसरा गाना फिल्म हम सब चोर का होगा।

0: And now, making their debut for Macca's, dishing up the new Dunk Chicken Range with Korean sticky barbecue sauce, the Harlem Globetrotters! Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
1: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz। Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 a.m. टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।
3: उन दिनों भी फिल्मों के सेट्स के पीछे की कहानियाँ उतनी ही दिलचस्प होती थी। अभिनेत्री, अभिनेता, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, असिस्टेंट की आप बीती कहानियां तब की भी बड़ी दिलचस्प होती थी। और वही कहानियां हम गानों के साथ आपको सुनाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने में।
4: ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी कुछ ऐसी फिल्में आई थी जिनके नाम बड़े ही अजीब गरीब हुआ करते थे, और लोगों को लगता है अभी हम मॉडर्न हैं, लेकिन उस जमाने में भी बहुत ब्रॉड थिंकिंग वाले लोग भारत भर में थे, हर एक इंडस्ट्री में, एंड फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। यहाँ पर ऐसी ऐसी फिल्में बनाई गई, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाई गई, ऐसे ऐसे नाम रखे गए कि आज की डेट में हमें हैरानी होती है जब हम इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखते हैं। और एक और हैरानी की बात थी कि 1959 में एक फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था ब्लैक कैट। इस फिल्म में संगीत बहुत ही ब्यूटीफुल था, डायरेक्ट किया था इस फिल्म को NA अंसारी साहब ने, GP सिप्पी ने इस फिल्म में अपने पैसे लगाए थे, और बलराज साहनी और मीनू मुमताज़ और जॉनी वॉकर इस फिल्म के मेन किरदार थे। ये बॉम्बे पुलिस या अब मुंबई पुलिस हो गई है, ये कैसे एक चोर को पकड़ने की कोशिश करती है इसकी कहानी है। चोर का नाम ब्लैक कैट के नाम से होते हैं, और ये क्राइम सीन पर कोई ना कोई सुराग छोड़ करके चले जाते हैं, और फिर उसी के पीछे मुंबई पुलिस भागती रहती है और कैसे इनको पकड़ा जाता है। एन दत्ता ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। मैं तुम्ही से पूछती हूँ, कल इस फिल्म का एक गाना हमने लता दीदी और रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाई थी, आज मैं इस फिल्म का एक और गाना आपको सुनाती हूँ। इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ है, और उसके बाद हम सब चोर है का एक और गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में।
5: कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, दुनिया को दिए जा धोखे पे धोखे। कौन तुझे रोके,

दिखाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़म बाजी, करेगा डंडा सट्टा और रहेगा हट्टा कट्टा, जा जा जा दुनिया को जो लूट दिखाए दुनिया उससे राजी, जब तक तेरे दम में दम है करना तिकड़म बाजी, चुपके चुपके फूल चुने जा लाखों कांटे बोके।

हेटा, क्या डर क्या शर्म, होने दे बस जेब गरम। ला ला ला कोई तेरे काम न आए, बेटी हो या बेटा, जिसके पल्ले माल नहीं है किस्मत का वो हेटा, छोड़ पर आई खातिर मन्ना जी ले अपना होके। कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, कौन तुझे रोके, कौन तुझे टोके, दुनिया को दिए धोखे पे धोखे। कौन तुझे रोके,

0: यहाँ हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर है समझ का है फेर जरा।
0: अरे चोर सारी दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर है समझ का है फेर जरा।
0: चलता है जले कोई यहाँ है फिकर किसे, आज का ठिकाना करो कल की।

0: दिल बर कहे साय हमको मगर कहे चोरवाह मेरे रब दिल जो चुराए उसे दिल बर कहे सब हमको मगर कहे चोरवाह मेरे रब
1: चलता है जल कोई यहाँ है फिकर किसे
2: आज का ठिकाना करो कल की खबर।

0: अक्सर पुरानी फिल्मों के सिर्फ सबसे सुपर हिट गाने ही सुनने को मिलते हैं। इसी चक्कर में थोड़े से कम हिट गाने भुला दिए जाते हैं। उन्हीं भूली बिसरी यादों को हम ताजा करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने में।
1: मजा आ रहा है ना, हमारे साथी मगन डाया ने गानों को चुन चुन के आपके लिए इस प्रोग्राम को सजाया है, इसीलिए आज की सुबह सुबह ये आपके कानों में रस घोल रहा है। मैं यहाँ स्टूडियो में झूम रही हूँ और आप, मैं बहुत शुआ हूँ कि आप घर पर बैठे इन नगमों को सुन सुन के झूम रहे हैं। इस बार 1956 की फिल्म है, इसमें मुबारक बेगम साहिबा थी। न्यू दिल्ली नाम की फिल्म बनाई गई थी और इसमें किशोर कुमार मेन आर्टिस्ट थे। उनका नाम फिल्मी पर्दे पर आनंद डी खन्ना था, आनंद कुमार स्वामी। वैजयंती माला और साथ में जबीन जलील के साथ में इन्होंने इस फिल्म में काम किया था। नजीर हुसैन इस फिल्म में थे। इस फिल्म में मुमताज़ बेगम साहिबा ने माँ का रोल किया था, इसलिए इस फिल्म के इस गाने को हम आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। इस फिल्म के बारे में ये भी हम कह सकते हैं कि शंकर जयकिशन ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक दिया था, जहाँ वहीं पर उन्होंने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी से बहुत ही खूबसूरत नगमे भी लिखाए थे। इस फिल्म की एक और बात भी मैं बताना चाहूँगी, इस फिल्म की एडिटिंग प्रताप दवे ने की थी और प्रताप दवे एक बहुत ही जाने माने एडिटर थे। फिल्म की खूबसूरती पर्दे पर जब आप देखते हैं तो वो बीच बीच में से कट हो करके नहीं आए, एक सीन दूसरे सीन से बड़े ही स्मूदली ट्रांजिशन हो, इन सब चीज़ में प्रताप दवे बहुत ही कमाल का काम करते थे। तो ये फिल्म 1956 की न्यू दिल्ली में ये देखने को मौका मिला था, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजीज़ अब लाने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों इंडस्ट्री में। ये एक पंजाबी लड़के आनंद की कहानी है, जिनकी मुलाकात तमिल लड़की जानकी के साथ में होती है और फिर कैसे वो मोहब्बत में पड़ते हैं और परिवार कैसे उन दोनों को रुसवा कर देती है, यही इस फिल्म की कहानी है। इसके बाद का जो गाना होगा उसे हमने लिया है फिल्म पतंग से। ये फिल्म भी बड़ी ही पुरानी फिल्म 1960 में बनाई गई थी। हर गोविंद दुग्गल ने और सूरज प्रकाश ने मिलकर के बनाई थी। राजेंद्र किशन और कादरी वेंकटा रेड्डी इस फिल्म के मेन किरदार या लिखने वाले थे। इसमें मेन किरदार में राजेंद्र कुमार तुली के साथ साथ में उल्हास और माला सिन्हा लीड एक्ट्रेस थी।

0: मोआ पॉइंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कुक स्ट्रेट में डिस्चार्ज हो रहा है और वेलिंगटन साउथ कोस्ट तक जा सकता है। वाटर क्वालिटी जानकारियों के लिए हमेशा याद करके LAWA वेबसाइट देखें। तैरने जाने से पहले LAWA.org.nz देख लें। साउथ कोस्ट के तारकेना बे से दूर रहें। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तट के करीब डिस्चार्ज हो सकता है शॉर्ट नोटिस पर और बगैर चेतावनी के, खासतौर पर गंभीर बारिश के समय। और जानकारी के लिए वेलिंगटन वाटर .co.nz देखें।
1: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनुकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505। और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505।
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: देयर आर डेज व्हेन यू नेल पेरेंटिंग बट दिस इजंट वन ऑफ देम। There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
4: Dash! Ah! Savior of the lunchbox!
3: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
4: Dash!
5: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
6: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
7: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
8: वो records जिन पर शायद धूल बैठ गई थी, पर उन पर खरोच न आने दी हमने. तभी तो वो LP वाले गाने आज भी बगैर किसी दिक्कत के ब्लैक एंड व्हाइट तराने में सुन रहे हैं आप।
0: ब्लैक एंड व्हाइट तराने प्रोग्राम के प्रेमियों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मगन डाया जी ने मुबारक बेगम पर जो गगमे चून करके रखे हैं, वो तो दिलीप कुमार जी देव साहब को भी मुबारक बेगम जी बीट कर गई, क्योंकि उनके ऊपर भी हमने 3-3 दिन के लिए प्रोग्राम किए हैं। मुबारक बेगम के लिए उन्होंने 4 दिन के लिए प्रोग्राम तैयार करके रखे हैं। अच्छा, कल जो नगमे हम आपको सुनाने वाले हैं, और आप ये गाने सुन के कहेंगे सिर हिला के हम ही भरेंगे कि हाँ बात सही है, ये गाने हम मिस कैसे कर सकते थे। जैसे

0: Radio Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: Adha minute ho gaya hai subah 10 bajkar.
3: This is Tarana News.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। कोलिशन सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस लुईस अब्स्टन का कहना है कि वह ईरान द्वारा पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर किए गए हमलों की निंदा करती हैं। रेडियो तराना से बातें करते हुए मंत्री ने कहा कि एक और जबकि वह ईरान की निंदा कर रही है, वह चाहती है कि अमरीका और इसराइल समर्थित इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए।
5: Both on the countries involved, but also the impact it's having across the world. And that's why we want to see an end to the conflict, an end to the hostilities. And we're really very keen for the two countries to get together and continue those peace discussions.
4: पाभाकुरा के रेड हिल में एक घर में हुए धमाके के बाद में पुलिस ने 42 वर्षीय एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सीनियर सर्जन नेटली नेल्सन का कहना है कि घर में धमाके के बाद में क्लेन लैब के बारे में पता चला है। पुलिस के मुताबिक पॉसिबल आर्म्ड इंसिडेंट के बाद में ऑफिसर्स को रेड हिल के एनक्रॉफ्ट स्ट्रीट में एक पते पर भेजा गया था। पुलिस को वहां से ड्रग्स की सप्लाई से संबंधित कई संदिग्ध वस्तुएं मिली है। 42 वर्षीय संदिग्ध पर फिलहाल अनलॉफुल पोजीशन ऑफ ए पिस्तौल वाला मामला दर्ज हुआ है। उन पर और चार्जेस लगाए जा सकते हैं। नॉर्थलैंड में कल रात दो डेड बाइक राइडर्स के बीच में हुई एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए। रात 11 बजे के बाद में हुई एक गंभीर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को कायकोहे के पास नापीपीटो रोड पर बुलाया गया था। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि एक व्यक्ति घटना स्थल पर मृत पाए गए। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दो लोग अपनी डेड बाइक से गिर गए, एक कायकोहे के नापीपीटो रोड पर और दूसरा मोरेवा के अताना रोड पर। पुलिस ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। नेशनल सरकार में मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस लुईस अब्स्टन का कहना है कि एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी सोच समझकर तैयार नहीं की गई है। रेडियो ताराना से बातें करते हुए मंत्री लुईस अब्स्टन ने कहा कि एक्ट पार्टी की पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो देश में एम्प्लॉयर्स के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को हायर करना और भी मुश्किल हो जाएगा।
5: Which would make it incredibly expensive for a main applicant. And then if their partner was on a work visa as well, you're adding double that. So you could be talking about $22,000 up front on top of the standard visa application costs. So in many cases, what we would expect is an employer who is seeking a skilled migrant to fill a gap in their business would be the one that ends up paying that immigration levy. So it's really strange for ACT to be coming up with a policy that we know will just be an extra cost on businesses or farms.
4: Mantri Lewis Upston.
3: Sports News.
4: आर्सेनल सोकर टीम 20 सालों में पहली बार चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई की है। एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच में आर्सेनल की ओर से बुकायो साको ने गोल बनाए 1-0 स्कोर के साथ और एग्रीगेट 2-1 स्कोर के साथ में आर्सेनल ने सेमीफाइनल मैच को जीतते हुए चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये दूसरी बार है जब आर्सेनल टीम चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है। इससे पहले 2006 में उसे फाइनल में बार्सिलोना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल में उसका सामना फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन या जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख से होगा। पेरिस सेंट जर्मेन ने बायर्न म्यूनिख को पहले लेग के मैच में 5-4 से हराया था। दूसरे लेग का मैच कल सुबह होगा।
6: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
1: Chemist Warehouse has now opened in Whangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Whangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
2: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They're open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
1: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
0: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
1: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
0: सिंपल, KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए। वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748871 पर, या विजिट कीजिए kmbconstruction.co.nz।
2: KMB कंस्ट्रक्शन, घर बनाए बिना स्ट्रेस।
1: यार मुझे फिजी जाना था।
7: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
7: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
7: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं, और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965220228।
6: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।

हार्डशिप दुनिया में हर कहीं पर अभी फिलहाल है। फूल की वजह से और बाकी अन्य चीज़ों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है और न्यूजीलैंड भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया के बारे में छोड़ते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में हम जानते हैं। एक सर्वे डाटा बता रहा है कि फाइनेंशियल हार्डशिप एज ऑफ जून 2025 यहाँ लोगों के बीच में महसूस किया जा रहा है, लेकिन अभी फ्यूल के बढ़ते दाम की वजह से बाकी चीज़ों पर भी दाम ऊपर जा रहा है। ये बात सामने आई है कि लोग अब बहुत सुलझे हुए तरीके से शॉपिंग करने लगे हैं, ब्रांड देखते हैं, चीज़ों के दाम देखते हैं, ज़्यादा समय अब शॉपिंग मॉल्स में या सुपरमार्केट्स में गुजारते हैं इन आइल्स, लेकिन पैसा पहले

0: के मुकाबले कम खर्च करते हैं, सोच समझ करके खर्च कर रहे हैं। जहां तक डिपेंडेंसी का सवाल है तो स्टेट डिपेंडेंसी में अभी भी वर्किंग एज के 12% लोग वेलफेयर के पैसे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। 55% ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में ये बात है कि वो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, और 3.5% ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जहाँ तक इनकम का सवाल है तो उसमें 10 में से 4 लोग विच इज़ 36.3% ऑफ ऑकलैंड में ये सर्वे किया, उन्होंने बताया कि हमारा इतना पैसा आ जाता है घर में कि हम डे टू डे लिविंग में रोज़ कमाए रोज़ खाए वाले सिचुएशन में हैं। वाइल एक में से 5 ने बताया, विच इज़ लाइक ह्यूज नंबर, 18.8% ने ये कहा है कि उनके पास इनफ पैसे ही नहीं है, इनफ है ही नहीं उनके पास।
1: भवान,
2: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 आश्रमों की कहानी जो आमने सामने थे। दोनों आश्रम में जो गुरुजी रहते थे उनका नियम था कि वो सिर्फ एक शिष्य रखते थे, और दोनों गुरुजी जो हैं जब भी कभी किसी शास्त्रार्थ में मिलते थे तो आपस में जो है उनके बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, बड़ा कॉम्पिटिशन होता था, एक दूसरे को हराने की सोचा करते थे। और धीरे धीरे वो जो कॉम्पिटिशन था वो कटुता में बदलता चला गया, कटुता शत्रुता में बदल गई, और इस हद तक जो है बात बढ़ गई कि अब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, सिवाय किसी शास्त्रार्थ में मिलना हो उसके अलावा बातचीत नहीं। एक दूसरे को देख करके नजरें इधर उधर घुमा लेते थे, बात ही नहीं करना। और इनके आश्रम में जो शिष्य आए थे उनको भी यही सिखाते थे। जो पहले आश्रम के गुरुजी थे वो अपने शिष्य को कहते थे कि सामने वाले से बातचीत नहीं करनी, सामने वाले भी ये कहते थे कि बातचीत नहीं करनी, हमारी बोलचाल बंद। शिष्य भी बेचारे सोचते थे कि बातचीत क्यों नहीं करनी है, ये क्या बात हुई। पहले आश्रम में जो शिष्य रहता था वो सोचता था कि मेरे गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, अध्यात्म की इतनी गूढ़ बातें करते हैं, अब मेरे तो समझ में आती नहीं है क्योंकि मेरा तो वो स्तर पहुंचा नहीं, मैं तो उस लेवल का अभी स्टूडेंट बना नहीं, और गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो सोचता था सामने वाले आश्रम के शिष्य से अगर मित्रता हो जाती, दोस्ती हो जाती तो चलो कोई तो होता है इससे बात कर पाता। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। जब वो शाम के समय गांव की ओर जा रहा था सब्जी खरीदने के लिए तो उसने दूसरे आश्रम के शिष्य को देखा और उसे रोक करके पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो। तो जो दूसरे आश्रम का शिष्य था उसने बड़ा तार्किक उत्तर दिया, उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जहां मुझे वो ले जा रहा है मैं वहां जा रहा हूं, परमात्मा ले जाता है, मैं तो हवा के साथ बह रहा हूं, हवा मुझे ले जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो सूखा पत्ता हूं। ये बात सुनते ही जो पहले आश्रम का शिष्य था उसने कहा भाई ये क्या बात कर रहा है, उसके पास जवाब ही नहीं, क्या बोले आगे। तो बातचीत वहीं पर स्टॉप हो गई, बातचीत बंद। पता तो उसे था कि ये भी सब्जी खरीद नहीं जा रहा है गांव में, लेकिन क्या बोले। वापस आया आश्रम में आकर के अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आप सही कहते थे, वाकई में बड़ा जो है डेंजरस मामला, बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा हवा के साथ जा रहा हूं, मुझे तो वो ले जा रहा है और मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूं, मैं तो सूखा पत्ता हूं, हवा के साथ बह जाता हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात कर दी, बेटा हमें हारना नहीं है, तर्क में हमें हारना नहीं है, कल फिर से जाना, उसी जगह खड़े रहना, प्रतीक्षा करना उसके आने की, और फिर से यही सवाल करना कि कहां जा रहे हो। वो कहेगा कि हवा के साथ बह रहा हूं, जा रहा हूं, उससे कहना हवा तो चली नहीं रही है, देखना फिर वो चुपचाप हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, हमारी जीत होगी। बोले ठीक है गुरुजी। अब उस शिष्य को भी लगा कि बात तो जीत हार पे आ गई। गया अगली शाम में फिर से, दूसरे आश्रम में रहने वाला जो शिष्य था वो आया, वही सब्जी खरीदने जा रहा था गांव में। जो पहले आश्रम का शिष्य था उसने कहा कि और भाई कहां जा रहे हो, इसे पता था कि वो बोलेगा हवा जहां ले जा रही है और मैं बोलूंगा हवा तो चल ही नहीं रही है। लेकिन उसने क्या कहा, पहले आश्रम के शिष्य ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरे पैर ले जा रहे हैं। उसने हवा की बात ही नहीं की, परमात्मा की बात ही नहीं की, पत्ते की बात ही नहीं की। इस बेचारे का जो जवाब था गोलमोल हो गया, इसने कहा क्या करें, फिर से चुप हो गया। फिर आया आश्रम में आकर के बोला कि गुरुजी अब की बार तो उसने कोई बात ही नहीं की, ना परमात्मा की, ना हवा की, ना सूखे पत्ते की, आज तो उसने सीधा सा बोला कि जहां पैर ले जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा, मतलब वो हमसे ज्यादा जो है तार्किक हो रहा, हम ज्यादा स्मार्ट बन रहा, अब सुनो तुम कल फिर से जाना और अब की बार कहना कि अगर तुम्हारे पैर ही नहीं होते तो कहां जाते। शिष्य गया, जाकर के फिर वहीं खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। वो आया दूसरे आश्रम का शिष्य, उससे फिर पूछा कि भाई कहां जा रहे हो। उसने कहा मैं तो गांव जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए। आज ना पांव की बात, ना पैर की बात, ना पत्ते की बात, ना हवा की बात, सीधा जवाब, गांव जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए। बेचारा पहले आश्रम का जो शिष्य था फिर से चुपचाप होकर के आश्रम लौट आया। बहुत छोटी सी कहानी है। हम पास्ट में उलझे रहते हैं और भूतकाल के हिसाब से वर्तमान के जवाब तलाश रहे होते हैं, जबकि जिंदगी रोजाना बदल रही है। अगर आप पास्ट में अटके रह जाओगे कभी भी जीवन में कमाल नहीं कर पाओगे। पास्ट के हिसाब से जवाब तैयार करोगे तो जिंदगी के एग्जाम में फेल होकर के आते रहोगे। इसलिए जो है अभी में है, इसी वक्त में है, जिंदगी हर पल बदल रही है, उसके हिसाब से खुद को ढालना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे।
0: आरजे कार्तिक जैसा, शर्मिला जी आपके रिक्वेस्ट पर हमने ये रेपिटेशन आपके लिए किया। होपफुली जितने लोगों ने इसको रिपीटेड सुना होगा, अच्छी बातें बार बार सुनने में भी मजा आना चाहिए। डिजिसेल की ओर से आपके लिए ये लाया जा रहा था। आने वाले एतवार को, रविवार को मदर्स डे है, आप अपनी माँ को स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं। जो गिफ्ट आप दे रहे हैं उसके अलावा भी डिजिसेल, एक तो $20 टॉप अप अगर आप करेंगे या 300 से ज्यादा मनी ट्रांसफर करते हैं पैसिफिक में कहीं भी माई कैश वॉलेट में, तो $500 के 15 $500 वाले ड्रो में आपका नाम शामिल होगा। डिजिसेल, मेकिंग इट इजी टू शेयर द लव। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसके लिए रहेंगी। अगले ब्रेक के बाद मैं बातें करने जा रही हूँ इमिग्रेशन कंसल्टेंट आतिश नारायण के साथ में। अभी आपने सुना है कि अभी चर्चा का विषय यहाँ पर न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन के दुनिया में बना हुआ है कि ऐसा क्या है इमिग्रेशन, ऐसा क्या ही बदल जाएगा एक्ट के पॉलिसी को लेकर के जो सख्त कर देगा बाहर से लोगों को आने के लिए यहाँ पर, और कौन आ रहा है इसको बहुत ही सरली या फिल्टर करने की पॉलिसी पर वो बात कर रहे हैं। सो उसके बारे में, और साथ में ओवरऑल अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड में लोग कह रहे हैं कि आके यहाँ की रेसिडेंसी हासिल करना उतना आसान नहीं रह गया है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि प्रोसेसिंग टाइम अभी भी काफी लंबा समय लग रहा है। तो आतिश नारायण से ओवरऑल हम इमिग्रेशन का हाल जानना चाहेंगे राइट आफ्टर दिस एडवर्ट ब्रेक।
1: डैडी कैसे? राम राम।
3: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
1: पेंटिंग हुए डैडी।
3: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे, क्या नाम है उन लोगों के?
1: इनडेलेबल होम्स।
3: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
1: अभी भी सकता बनाए डैडी, बनाए के हमें दे दो। हाँ,
3: वाह।
0: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इनडेलेबल होम्स। फोन 0800 233 111।

0: Chases Abuja Mix ka full range dekhe on chases.co.nz. Chases, feel the flavor.
1: Saturday 9th May को Radio Tarana की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन NZ Beds, Manikau Supercenter Store. और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड. ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है. T's and C's apply. NZ Beds with 40 years in business and thousands of happy customers, ये आपको देंगे guaranteed best price. और 9th May को मिलते हैं इनके Manikau Supercenter वाले स्टोर में at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
2: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रेज से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी. इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट. कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट. फोन 09815-3811. डी कैरोल कर्टन्स.
3: ऑकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड के आतिश नारायण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हुए. आतिश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी रियलिस्टिक पाथवे अगर हम देखें रेसिडेंसी हासिल करने के लिए यहाँ पर स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए, कितना आसान है या कितना कठिन है आज की डेट में?
4: ऑल्दो ये जो रेसिडेंसी पाथवे है वो काफी रियलिस्टिक है, स्टिल देर इज काफी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इनकम है, ऑक्यूपेशन है, अगर वो स्किल्ड काम करते हैं, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जैसे पॉइंट्स है या एम्प्लॉयर लेट सिस्टम्स है, तो उसके लिए डिफरेंट स्किल्स का डिफरेंट ग्रेडिंग है. तो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स जो जिसमें शॉर्टेजेस है, जैसे जो ग्रीन लिस्ट में है, दे हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, और अदरवाइज कोई स्किल्स में है जिसमें वो नहीं हासिल कर पाते हैं क्योंकि उसका इनकम लेवल या ऑक्यूपेशन नहीं होता है. अलावा पेड जॉब्स जैसे इट कैन बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज इमिग्रेशन क्या मांगे, दे वांट टू फिल द क्रिटिकल गैप जिसमें आदमी कम है या लेबर शॉर्टेज है, उसके लिए इट्स मोर रियलिस्टिक. बट देर इज नाउ गारंटीड आउटकम फॉर एवरी वन, किसी का काम बन सकता है किसी का नहीं, बट वी रिकमेंड पीपल की जो जॉब शॉर्टेज है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से आदमी चल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जब वो कुछ क्वालिफाइड हो जाते हैं एंड दे लुक फॉर बेटर मनी. तो जो जो जगह पे यहाँ क्रिटिकल गैप्स है जैसे ट्रेड जॉब्स में, तो उसमें द सिस्टम इज मोर रियलिस्टिक एज लॉन्ग एज द पर्सन मीट्स द सिलेक्शन क्राइटेरिया.
3: ओके, आतिश, ये बात भी सामने आई थी कि बहुत समय लग रहा है यहाँ पर वीजा प्रोसेसिंग में, इज इट स्टिल एन इशू?
4: द थिंग इज कि इट्स नॉट ऑलवेज द केस, पहले रहा, देवर सिग्निफिकेंट बैकलॉग्स, पहले बहुत ज्यादा टाइम लगते थे. द रीजन बीइंग बिफोर इमिग्रेशन हैज मूव फ्रॉम ऑल राइट, पहले देखो सब कुछ हम कबा लेटा बना के और बहुत जस्टी मैनुअल चीज होता था. इमिग्रेशन हैज सीन, वो देख ली है कि कहाँ कहाँ पे उन लोगों के इम्प्रूव करना चाहिए अपना सिस्टम्स. वी एडवाइजर्स, हम लोग के पास एक ट्रस्टेड लाइन है, तो वी ऑलवेज रिंग, इट्स अ मैटर ऑफ कस्टमर सर्विस, मैं रिंग करके एवरी फ्राइडे पूछते हैं कि जो जो एप्लीकेशन चलता है तो क्या होता है. कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट अपने ही खुद एप्लीकेशन करते हैं एंड देन वो जब अपने रिंग करते हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, दे गेट 914 नंबर. तो हम लोग के ट्रस्टेड लाइन है, तो आई जस्ट रिंग इमिग्रेशन पूछते हैं. कभी कभी जैसे मेडिकल वगैरह ये आते हैं, तो उसमें अगर उसमें कुछ उसमें पैदा टेस्ट होते हैं, तो उसका जब ले असेसमेंट नहीं होता है तो इट्स डिलेड. बट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड इज ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन ऑल दो सिस्टम्स, तो अभी के हाल में काफी फास्ट हो गया है. बट मैं ये बोल सकते हैं कि आधे और सब कंट्री से न्यूजीलैंड इज मच बेटर. द रीजन बीइंग आई ऑल्सो आर माइग्रेशन एजेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट हम लोग के पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि हम रिंग करके कोई एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से पूछूं कि किसके क्या है. इफ यू कंपेयर न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक न्यूजीलैंड इज मच फास्टर, बिकॉज अभी सब चीज ऑनलाइन भी होता है और जो पार्टनर वीजा है वो एक दो चीज अभी बचा है जो नया पोर्टल में, दे विल गेट इट ऑल डन बाय ऑगस्ट, तो काफी चीज फास्ट हो गया है, बट इट्स अ मैटर ऑफ हैविंग सब कंप्लीट एप्लीकेशन और सब कुछ उसमें होना चाहिए. अगर वो सब कुछ नहीं है एप्लीकेशन, देन देर आर डिलेज. ये तो कभी क्या होता है कि बंदे अपने ही एप्लीकेशन करते हैं. कल ही एप्लीकेशन करना तो एक चीज है, उसका कबालेटा बना के उसके ठीक से करना है. अगर सही सलामत जाएगा कई चौपसा देखेगा इन इट्स कंप्लीट एप्लीकेशन तो जल्द से हो जाता है.
3: ओके,
4: सो ये करने से एप्लीकेशन जल्द से नहीं हो जाएगा. देयर आर लॉट मोर टू इट.
3: ओके,
4: व्हेन यू थिंक अबाउट पॉलिसी.
3: ओके आदेश, ये जो डेडिकेटेड लाइन आप बता रहे हैं ये सभी कंसल्टेंट्स के पास में होते हैं एक्सेस टू दैट ओ सर्टेन ओनली?
4: इमिग्रेशन इज ओपन टू, वो सबको देते हैं, बट सम एडवाइजर्स दे डोंट इवन नो. मैं जो नया है उनको बताना पड़ता है ना, तो उसके लिए सभी एडवाइजर को, जैसे मेरे पास अभी एक प्रोविजनल लाइसेंस होल्डर है तो उसका वो उनको वो एक ईमेल भेजता है, तो वो लोग दो तीन रोज में दे बिकम ऑन द ट्रस्टेड लाइन. द रीजन बीइंग, अगर आप ट्रस्टेड लाइन में रिंग करता है एंड यू आर अ ट्रस्टेड कॉलर, तो वो मे बी विद इन वन मिनट दे विल आंसर द फोन, इवन समटाइम्स इन 10-15 सेकंड्स. बट दैट्स ओनली अवेलेबल फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टू 6 o'clock मंडे टू फ्राइडे. बट जोन जोन एडवाइजर्स नहीं करते ट्रस्टेड लाइन में एंड दे रिंग फ्रॉम द नॉर्मल लाइन लाइक अ पब्लिक, तो उसमें अगर नंबर 60 मिला नंबर 50 तो यू हैव टू वेट ऑन द लाइन दैट लॉन्ग. वो सब पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि जो एडवाइजर्स है दे नो व्हाट टू आस्क नॉट. और कभी कभी जो पब्लिक है दे विल आस्क क्वेश्चंस दैट आई मीन दे विल बी ऑब्वियसली समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो एंड वो उनका टाइम वेस्ट होता है ना. सो दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द बाउंड्रीज.
3: तो आतिश, आई मीन दिस इंट्रिग्स मी कि आप लोगों के पास में ट्रस्टेड लाइन भी होता है. सो कुछ क्राइटेरिया आप लोगों के लिए भी तो होंगे उस ट्रस्टेड लाइन पर कॉल करने के लिए, राइट?
4: उसके लिए कुछ बाउंड्रीज है. ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी मांगते पूछे तो ड्यूरिंग इमिग्रेशन. अगर आप ट्रस्टेड कॉलर है एंड यू आर अ एडवाइजर, हम लोग के अपना ही रिसर्च पहले करना पड़ता है. हालांकि वो हम लोग के इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस में जोन जोन सेक्शन है वो बता देते हैं अगर कोई जगह शुआ नहीं है या क्या. बट सब कुछ आप पूछ नहीं सकते उनसे. देर आर सर्टेन रूल्स बिहाइंड इट. अगर सब कुछ तो पूछे लगा तो दे विल से व्हाई आर यू एन एडवाइजर. अगर आप जानते हैं तो पहले अपना ही रिसर्च करो. इफ देर इज एनी वे, जस्ट लाइक इफ यू वांट टू नो मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस इन्फॉर्मेशन, वो सब तो हम लोग के पास नहीं रहते. एंड देन दी अदर क्वेश्चन दे समटाइम्स आस्क कि वो बंदा कब लौट के गया लास्ट फीजी से, उनका ट्रबल मतलब कब फीजी गया लौट किया अपना देश. एंड देन उसका क्लाइंट नंबर एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब एडवाइजर को पूछना पड़ता है. बट सभी चीज नहीं वो बताएंगे, कुछ कुछ आपको अपने ही रिसर्च करना पड़ेगा. अदरवाइज दे कैन मेक अ कंप्लेंट दैट द एडवाइजर इज मेकिंग अननेसेसरी कॉल व्हेन ही शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इट हिमसेल्फ.
3: 100%. ओके, अभी कोई कॉमन रीजन है अगर रेसिडेंसी डिक्लाइन किया जा रहा है?
4: रेसिडेंसी डिक्लाइन होते हैं कि पीपल डू नॉट, अगर वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से समझते नहीं है एंड दे वर्किंग इन जॉब, वो जो के स्किल्स चेक करते हैं, इफ इट्स नॉट सफिशेंटली स्किल्स, वो अगर वो पॉइंट थ्रेशोल्ड नहीं मीट करते हैं. तो ऐसे मेरे पास कोई आया थे दे डिडंट मीट द क्राइटेरिया. अभी जैसे वर्क टू रेसिडेंस में बोलते हैं कि यू मस्ट वर्क इन दैट रोल फॉर 2 साल काम करके तब अप्लाई करते हैं. अब अगर एनजेक्यूआई रिक्वायरमेंट है वो करना है, तो वो सब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो बंदा को अपना ही जानना चाहिए. अगर नहीं जानते हैं देर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व. अगर 6,450 आप खर्चा कर दे और वो काम नहीं बनेगा तो आप बोलेगा इमिग्रेशन गलत किया है. इसमें इमिग्रेशन का गलती नहीं है, इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शन सब कट एंड ड्राइड सब लाइड है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ रहा है. एंड दी अदर रीजन इज सम पीपल फॉल्सिफाई रिकॉर्ड्स. कभी कभी वो लोग ब्रीच कर लेते हैं वीजा कंडीशन वाइल वर्किंग ऑन वर्क वीजा. एंड कभी कभी थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग होता है या एम्प्लॉयमेंट एविडेंस जो ठीक से नहीं रहते हैं. और जैसे कोई कोई पोजीशन है, जैसे अगर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन, उसको सब टाइम मीडियन वाइज नहीं मिलता है एंड दे हैव डिक्लेयर्ड समथिंग इन द प्रीवियस एप्लीकेशन एंड जो नया है उसमें नहीं करते हैं, उनको हेल्थ एंड कैरेक्टर इश्यूज भी आ जाता है. तो इसके लिए वो एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकता है।
3: अच्छा।
4: इसीलिए मैं जब आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो मैं सब क्वेश्चंस क्लाइंट को पूछना चाहिए। इन्हें कि समटाइम्स पीपल गिव देम अ फॉर्म की बोलते हैं ये फॉर्म फिल कर दो, एन एग्जांपल दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन। अगर पहले उनका कन्विक्शन कुछ हुआ है और वो डिक्लेयर किया है एंड इफ दे यूज सम अदर एडवाइजर, तो मैं क्या करता है आई कैन गेट द अदर एडवाइजर टू शेयर द एप्लीकेशन, तो वो सब नया एप्लीकेशन में फिर से टिक करना पड़ता है। अगर उसको फॉर्म दे दो एंड यू डोंट टॉक टू देम एंड डोंट आस्क दोस थिंग्स, तो इट कैन गो डाउन एज टू यू एज एडवाइजर, बिकॉज अगर एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है तो वो रीजन देते क्यों डिक्लाइन हुआ ना।
3: अच्छा।
4: और क्लाइंट जब अपने करते हैं वो सोचते पहले तो डिक्लेयर कर दिया तो वो खत्म हो गया, खत्म तो नहीं होगा। इफ यू हैड अ कन्विक्शन इट स्टिल देयर इन द रिकॉर्ड्स, तो वो आपको डिक्लेयर ही करना पड़ता है सभी एप्लीकेशन।
3: आपका कितने सालों का इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस है आतिश?
4: मेरा एक्सपीरियंस है फॉर अबाउट 25 years, बट आई वॉज नॉट 25 years, अबाउट 22 years। बट मैं पहले विदाउट लाइसेंस था, वो जो पहले होता था कि यू कैन डू इमिग्रेशन, वो टाइम लाइसेंसिंग नहीं रहा, बट जब लाइसेंसिंग कंपलसरी हुआ आई गॉट लाइसेंस फ्रॉम 2010।
3: ओके, और उसके लिए क्या लाइसेंसिंग के लिए क्या करना होता है?
4: पहले घर इसके लिए पहले मैं आई गोट माई लाइसेंस इन द ओल्ड कैटेगरी, तो उसमें दो टेम्पररी फाइल दो फुल फाइल, तब रेसिडेंसी वो फुल लाइसेंस हो जाता था। तो मैं आई केम इन द ओल्ड वे वेयर माय सुपरविजन, मेरा एक आदमी उसका नाम है हंसराज, इफ यू नो अबाउट हिम, वो मूव हो गया ब्रिस्बेन में, उसके वो मुझे सुपरवाइज करता था। बट जब इमिग्रेशन सब चीज लीगलाइज किया और एक कोर्स भी कर दिया तो मैं उसका कोर्स भी कर लिया, उसके बाद मैं MBA कर लिया, तो वो सब इट ऑल हेल्प्स ना, जो इतना कॉन्फिडेंट अब है अपने काम में उतना ठीक है ना। आई डोंट रियली हैव टू डू दैट कोर्स, बट मैं सोचता अगर मैं कर लेगा तो आई विल लर्न मोर थिंग्स बेटर, एंड वी ऑल्सो डू गो टू NZIMI एंड सब प्रोफेशनल डेवलपमेंट लीगल वाइज में भी मैं जाता है, तो ये सब करने से हम लोग के नॉलेज बढ़ते हैं। वी बीट मोर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, वो जो क्लाइंट है ना वो पैसा देते हैं तो मैं मांगते हैं उनको एक्यूरेट और ट्रू एडवाइस मिलते हैं।
3: आतिश, आई मीन लाइक मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक रही हूँ, बट आई लाइक टू नो वन मोर थिंग। सो चूंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप डिटेल्ड में समझा रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपके डिक्लाइन जो इमिग्रेशन से रेट्स है वो कम होते होंगे ना, कम डिक्लाइन, क्योंकि पेपर वर्क आप ग्राउंड वर्क सही करके वेरी लिटल।
4: मैं क्या करता है अभी फिलहाल, मैं एक एक लोया मेरा काम, उसका अगर जो ज्यादा काम हो जाता है तो अगर आदमी बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि
3: आप लोगों को भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लोग, लाइक यू बीइंग द कंसल्टेंट आपको भी देते
4: दे कैन डू इट वन टाइम। एक टाइम मेरे पास कोई आया था इंडिया से एंड दे सेड कि ये डॉक्यूमेंट मैं फ्रॉड से लाया, तो आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट यू, तू जाके किसी को करा लो। ही यूज दैट थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई कांट रिलेट स्पेसिफिक केसेस, बट वो मुझसे बोला कि ये मैं वहां से कुछ खरीद और इसके लाए सर्टिफिकेट। मैं बोला आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट, किसी का जो बनता काम है तो बन सकता है, बट आई डोंट कंप्लेन एनीथिंग, आई जस्ट टोल्ड हिम कि मैं तुझको नहीं रिप्रेजेंट कर देगा। इन द सेम वे कभी कभी जो यहाँ पे विस्टा वीजा में, जनरल विस्टा वीजा में आदमी आते हैं एंड दे गॉट अ मल्टीपल एंट्री वीजा, तो यहाँ पे दूसरा काम कर लेता है, दे स्टार्ट फाइंडिंग पार्टनर्स, दे स्टार्ट फाइंडिंग एक दो रोज में दे स्टार्ट डूइंग स्टूडेंट वीजा, तो वो बोडा में जब पता लग जाते हैं तो वहां पे वो लोग इंटरव्यू करते हैं, तो अगर वो उनका पार्टनरशिप भी रहते हैं एंड दे डिनाय पार्टनरशिप, तो वो सब के लिए दे मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट। तो मैं क्या करता है, अगर वो उनको वापस चल जाते वो कैंसिल कर देते वीजा, तो उसका पूरा फाइल हम के निकाल के सब पढ़ना पड़ता है एंड देन क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ता है कि इसको अब ये सोल्यूशन है, इसको पैसा ज्यादा लगेगा बिकॉज यू डिड दिस लाइक दैट। तो अगर कभी बहुत डिफिकल्ट केस आता है, वट आई डू आई रिपीट टू अ लॉयर एंड वी वर्क टूगेदर। वो एक लॉयर है वो एस्क्रॉप मैग्रेगा के, वो चाइनीज लॉयर है, बट आई वो अंडर हिज सुपरविजन व्हेन थिंग्स गेट वेरी वेरी लाइकली दैट उनको नहीं मिलेगा, तो उनको काम भी मैं बना देता है। मुझे अभी तो मुझे आई कांट रिमेम्बर कि लास्ट वन एक वीजा हम लोग के डिक्लाइन हुआ था, बट देट वॉज अंडर हिज सुपरविजन, अदरवाइज सब मिल जाता है. तो इसके लिए मैं प्रोफेशनल ऑफिस में हो गया है, तो आई ओनली टेक द केसेस इफ आई सी इट्स गोना बी सक्सेसफुल. अगर आप उसमें नॉर्मल वे जोड़ो तो इट्स अबाउट 97-98% सक्सेस.
3: वाओ, दैट्स वेरी गुड. वन वेरी लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक जो इनिशियली हम डिस्कस कर रहे थे अतेश, तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो ओपन है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अभी फिलहाल?
4: अभी तो हेल्थ केयर में काफी बिगेस्ट एरिया डिमांड है, जैसे वहां पे शिफ्ट वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, अलाइक हेल्थ प्रोफेशनल्स वो कॉन्स्टेंटली इज नीडेड, इवन टीचर्स एंड डॉक्टर्स, वेल्डर्स, ये सब ग्रीन लिस्ट में हो गया है, इलेक्ट्रिशियंस है, प्लम्बर्स है, आईटी स्पेशलिस्ट है, ये सब जो ट्रेड जॉब्स है. आई रिकमेंड पीपल टू यहाँ पे अगर इंटरनेशनल एजुकेशन करना है. आई ऑल्सो लियस विद वन चाइनीज गाय, वो लोग उसका जो फैमिली यहाँ पे है उनको पास सिटीजन या रेसिडेंट है, तो उन लोग के वो लोन दे भी सकते हैं, तो दे कैन हेल्प पीपल फ्रॉम ओवरसीज टू कम इन स्टडी. तो जितना दिन वो पढ़ेगा वो 25 hours, अभी गवर्नमेंट कर दिया है कि स्टडी ला टाइम यू कैन स्टडी एंड वर्क 25 hours, और स्टडी ब्रेक और हॉलीडे में फुल टाइम काम कर लो, तो जितना पैसा भरेगा स्टडी में उससे जस्ती मिल जाएगा. और उसका पाथवे भी मैं बताएंगे रेसिडेंस के लिए. तो अभी मैं क्या करते हैं, मैं इंटरनेशनल एजुकेशन में काफी स्कूल्स का एजेंट भी है, तो वी वांट टू टेल द क्लाइंट टू डू द राइट थिंग कि उनका फ्यूचर यहाँ बन जाए. बिकॉज द थिंग इज इफ पीपल लिव इन न्यूजीलैंड, वो 6 महीना रह लेते हैं, अगर 1 साल दे कम टू लाइक न्यूजीलैंड, दे डोंट वांट टू गो बैक टू देयर होम कंट्री, बट उनका कोई पाथवे बनाना है ना. अगर किसी का तू पैसा ले लिया और उसका अगर काम नहीं बनता है रेसिडेंस के लिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा बाद में ना, वो बोलेगा कि मैं यहाँ आ गया, मेरा पैसा जा रहा है, मैं इतना पैसा लगा दिया, क्यों नहीं बनता है. तो वी हैव टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी इन द राइट वे इन द बिगिनिंग, और अगर वो ठीक से करता है तो उनको फ्यूचर बन जाता है, तो दे बिकम अवर लॉन्ग टर्म क्लाइंट. व्हाट आई ट्राई टू डू इज जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वही को जस्टी में सर्विस करता है, बट वी ऑल्सो हैव न्यू क्लाइंट, दैट मीन्स वी डजंट मैटर कोई भी आते हैं. पहले तो मैं घर से करते हैं, मोस्टली इट वॉज पीजी इंडियन, बट अभी आई मूव टू अ कमर्शियल ऑफिस अबाउट 3 years ago, तो यहाँ पे कोई भी कंट्री का आदमी आ जाते हैं, तो दैट डजंट मीन वी आर ओनली फॉर इंडियंस, इट कैन बी एनी वन.
3: गुड वन.
4: बट एज लॉन्ग एज दे मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दे फॉलो द फुटस्टेप वी टेल देम, तो उनका कोई आगा यहाँ बन सकता है. अगर उनका PR यहाँ नहीं मिलता है, पाथवे नहीं होता है, कभी भी कोई रास्ता दूसरा भी है, पार्टनरशिप हो जाता है, कुछ भी रास्ता निकलता है. और अगर मैं जानते हैं कि उसका कहीं से एकदम डंबफाउंडेड है, उनका काम नहीं बनेगा, तो मैं ऑनेस्टली बता देता है कि तू वापस चल जाओ, तेरा कोई रास्ता से मैं कोई रास्ता निकाल के फिर लेकर जाएगा.
3: ऑलराइट. हे हितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. मुझे लगता है मैंने पहली बार आपसे बातें की, though you've been advertising for ages, but thank you हितेश, some very good information there.
4: थैंक यू, हैव अ गुड डे.
3: यू टू. अतेश नारायण से हमारी बातें हो रही थी, ऑकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड के अतेश नारायण. कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सख्त किया जा रहा है, लोगों का कहना है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट कि किसी एक एक्सपर्ट से हम बातें करें.

0: नमस्ते ओकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
1: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
0: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवनर कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
1: ये विन्स अप्रूव्ड है, ओकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
0: ओकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Scammers want you to rush because it's harder to notice when things aren't right. Security features in the BNZ app help you take your sweet time. Bank of New Zealand, let's find a way.
3: I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
4: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स। दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग। कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे।
5: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट, दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस। कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश, फोन नंबर 0210584711।
6: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।

मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज प्रजापति आपको कहते हैं. हैमिल्टन में आज 9 ईयर्स के आप हो रहे हैं प्रजापति. खुशी के दिन पर आज आपके मम और डैड, बेबी ब्रदर आपके वंश है, आपके दादा दादी, मोटा पापा मोटी मामा है, कजन दक्ष और जिया है, ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटीज, कजन्स ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आपको बहुत प्यार दे रहे हैं. मोनिक प्रजापति, तराना टीम की ओर से 9th birthday आपको बहुत बार शुभ हो. आज मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जेन चंद्र आपको कहते हैं. वेस्ट ऑकलैंड में आपका बर्थडे मनाया जा रहा है. आपकी वाइफ है शैली, आपकी बेटियां हैं जानवी, जिया एंड शिवाली. साथ में बेबी डेज की ओर से आपको प्यार मिल रहा है. द फर बेबी डेज की ओर से प्यार मिल रहा है. आपके पिताजी हैं मिस्टर जयचंद, भाई एंड उनके परिवार वाले हैं. आपकी बहन है रोजी एंड फैमिली फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया. आपकी सासू माँ है सुनील प्रकाश. आपके साले साहब है अश्विन. साथ में सिस्टर इन लो है आशनी और नेफ्यू राहुल की ओर से भी आज आपको प्यार मिल रहा है. जैन चंद्र तराना टीम की ओर से भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज अनिल पटेल का सनी नुक में, सुनीता कुलदीप सिंह का यहाँ ऑकलैंड में, ऑकलैंड सीबीडी में सॉरी, आशा वी गुप्ता का माउंट रॉस्किल में और राजवंत बेम्स का द गार्डन्स मनूरिवा में बर्थडे मनाया जा रहा है. आप सभी को आपके परिवार वालों की ओर से बेस्ट विशेज मिल रहे हैं. हमारी टीम की ओर से भी अनिल पटेल, सुनीता कुलदीप सिंह, आशा वी गुप्ता, राजवंत बेंस, मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. शाम को 6:30 बजे आपको कैप्टन याद करेंगे. मैसेजेस इसके लिए आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं अभी ऑन 8812 या फिर आप ईमेल कर दें info@tarana.co.nz पर. सागर ने 1979 की फिल्म तराना का ये गाना भेजा है. उषा मंगेशकर शैलेंद्र की आवाज में, राम लक्ष्मण की म्यूजिक पर तिलक राज ठापर ने इस गाने को लिखा है. HMV EMI लेबल पर इस गाने को इनिशियली रिलीज किया गया था इन 1979 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म.

0: उषा भोसले और साथ में या उषा मंगेशकर भोसले नहीं उषा मंगेशकर और साथ में शैलेंद्र के आवाज में यह गाना भेजा था हमारे साथी सागर ने। फिल्म का नाम तराना, 1979 में यह फिल्म बनाई गई थी। आज का केक ड्रॉ भी हो चुका है, इसमें आशा जी आपका नाम निकला है, कंग्रेचुलेशन टू यू। आप रिंग कर लें ऑन 0800-786-101 पर, आज रिंग करना होगा बिफोर 2 PM प्लीज।
1: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
2: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
3: जी, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है अब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड एडिंगटन क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
2: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
6: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
2: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 02187487 पर.

0: The Rana.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indeliblehomes.co.nz.
2: सुबह के 11 बजे हैं.
3: This is Tarana News.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. न्यूजीलैंड सरकार सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एक नई नागरिकता परीक्षा यानी कि सिटीजनशिप टेस्ट शुरू करने जा रही है. 2027 के अंत से जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एप्लीकेशन करेंगे उन्हें ये परीक्षा देनी होगी, जिसमें बिल ऑफ राइट्स एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से लेकर के ट्रेवल टू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वे 75% प्रश्नों का सही जवाब दें. सवालों के लिए मल्टीपल चॉइस होंगे. न्यूजीलैंड सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए तभी आप अर्जी लगा सकते हैं जब आप देश में 5 सालों तक रेजिडेंट वीजा पर रह चुके हैं. आपके लिए बेसिक इंग्लिश और गुड कैरेक्टर होना जरूरी होगा और 5 सालों के अंदर आपके लिए जरूरी होगा कि आप 1,350 डेज न्यूजीलैंड में रहे हों. वर्तमान में जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए अर्जी लगाते हैं उन्हें बस एक डेक्लरेशन पर ही हस्ताक्षर करना होता है, वे टेस्ट नहीं करते हैं. लेकिन साल 2027 से नया टेस्ट लाया जा रहा है. कॉलिशन सरकार में मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अपस्टन ने न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी सांसद शेन जोन्स के चिकन सुनामी वाली टिप्पणी की निंदा की है और उन्हें कहा कि इस तरह के नस्लीय टिप्पणी किसी भी जाति के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. रेडियो तराना के साथ इंटरव्यू में मंत्री ने कहा कि ये बहुत अपमानजनक टिप्पणी थी.
5: I find those comments offensive and we should not accept comments like that to be made about any group of our population. And that kind of race-based rhetoric in New Zealand politics has zero place. And I think it's absolutely appalling that he made those comments.
4: ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि होम लोन रेट सिर्फ OCR के बढ़ने से ही नहीं बढ़ाए जाते हैं और उन्हें कहा कि और भी कई कारण हैं कि क्यों होम लेंडिंग रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं. रेडियो तराना के साथ बातें करते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि होलसेल रेट्स के कारण भी देश में होम लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है.
6: बैंक जब रेट ऑन इंटरेस्ट जब बढ़ाते हैं, जब होलसेल मार्केट में रेट बढ़ जाता है और इस समय होलसेल रेट बढ़े हैं तो इसलिए बैंकों ने अपने रिटेल रेट भी बढ़ा दिए हैं. और मेन चीज ये है कि पहले ये महसूस किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, OCR नीचे ही रहेगा, OCR नहीं बढ़ेगा, बट अभी ऐसा देखा गया है कि फीड प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है और इन्फ्लेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है तो वो दोनों ही जो हमको क्लोजली इम्पैक्ट करते हैं दोनों.
4: अजय कुमार से हमने जानना चाहा कि जो लोग इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने को लेकर के चिंतित है वे क्या कर सकते हैं.
6: संजय जी बताता हूँ, मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए 50 ईयर्स हो गया और मैंने देखा लोग बहुत OCR पे ध्यान देते हैं और रेट ऑन इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं. मैं ये नहीं कहता कि इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जिससे आप अपना इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपने किसी प्रकार का भी लोन लिया हुआ है और लेने की सोच रहे हैं तो डिस्कस कीजिए किसी एडवाइजर से या एक्सपर्ट से और ये फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे अपना बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑन इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो बैंक डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करता है. बट जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है आपकी इनकम, आपके कंट्रोल में है आपके एक्सपेंसेस, आपके कंट्रोल में है आपका मॉर्गेज, आपके कंट्रोल में है उसका मैनेजमेंट.
4: देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट हुई है. देश में 163,000 लोग अनएम्प्लॉयड है. पिछले कोटा में 165,000 या 5.4% लोग अनएम्प्लॉयड थे. ये आंकड़े अभी कुछ देर पहले ही जारी किए गए.
3: स्पोर्ट्स न्यूज.
4: फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स के पहले वार्म अप मैच की पुष्टि कर दी गई है. वर्ल्ड नंबर 85 ऑल वाइट्स का सामना हैती से जून सेड को होगा. 7 जून को टेम्पा में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ऑल वाइट्स का ये वार्म अप मैच खेला जाना है. वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 जून से होगी. ऑल वाइट्स टीम लॉस एंजलिस में पहले मैच में ईरान का सामना करेगी, दूसरे मैच में इजिप्ट और तीसरे ग्रुप मैच में ऑल वाइट्स का सामना बेल्जियम से होगा. ये दोनों मैचेस वैंकूवर में 22 और 27 जून को खेला जाना है.
7: Weather report brought to you by Crew Care. Visit crewcare.co.nz.
2: क्राइस्टचर्च में आज पार्टली क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे, हल्की हवा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर से चलेगी। आज का ट्रेंड ही चला जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम ऑफ नाइट 14 डिग्री सेल्सियस, यू विल फील ऑलमोस्ट लाइक समर। आज 5:25 PM पर सनसेट होगा। कल ज्यादा गहरे बादल रहेंगे और शुक्रवार को क्राइस्टचर्च में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वेलिंगटन में आज तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं होगी। 17 आज का मैक्सिमम, रात को 14 मिनिमम, 5:22 PM पर सनसेट होगा। कल भी आज जैसा वेदर रहेगा, परसों 90% चांसेस बारिश के हैं। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। हैमिल्टन में आज पार्टली क्लाउडी पीरियड रहेंगे, बारिश नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत धूप खिल सकती है, जस्ट लाइक ऑकलैंड में थोड़ी बहुत धूप बादलों के बीच से दिख जाती है। 21 आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, रात को 12 मिनिमम, 5:27 PM पर सनसेट होगा। कल सुबह बूंदाबांदी के साथ में हैमिल्टन में शुरुआत होगी। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। ऑकलैंड में आज पार्टली क्लाउडी पीरियड रहेंगे, बारिश नहीं होगी, आज गर्मी रहेगी क्योंकि अप टू 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा, मिनिमम 16, आज 5:30 PM पर सनसेट होगा। कल सुबह की शुरुआत ऑकलैंड में भी बूंदाबांदी के साथ में होने वाली है। कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस।
0: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम, डिमाइस न्यूज।
2: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यलांड्रो तावा फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति तथा रोनिल कृष्ण पुजारी, मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केल्टन मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी का अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे NZ इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनी रोड में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-029-265-78 पर संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, सूचित किया जाता है कि एलांड्रो तावा फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति तथा रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केल्टन मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी का अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे NZ इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनी रोड वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-029-265-78 पर संपर्क कर सकते हैं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राकिराके फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गोप्लेज द गार्डन्स मनुरेवा के बॉब कृष्ण चंद का अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, सूचित किया जाता है कि राकिराके फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गोप्लेज द गार्डन्स मनुरेवा के बॉब कृष्ण चंद का अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फिनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
2: जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है और एडवांस पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम, हर विदाई में सम्मान और सेवा।
8: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
9: Kick off the winter.

0: You are listening to Pavan.
1: आज जो खबर बड़ी है वो हैंटर वायरस को लेकर है. ये आउटब्रेक जो क्रूज शिप में हुआ है उसमें 3 और लोग बीमार पड़े हैं. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है आई थॉट कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट ये बताया जा रहा है कि हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है जिसकी वजह से ऑन बोर्ड 3 और लोग बीमार पड़े हैं. एयर एम्बुलेंस द्वारा इन लोगों को आज उस शिप से निकाला जाएगा. गौरतलब हो कि कई लोगों के बीमार होने की खबर है और 3 लोगों की जान हेंटर वायरस की वजह से हो गई है. ये क्रूज शिप में सवार है और इनिशियली ये बताया जा रहा था, जितनी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है. अभी एक रिपोर्टर ने अपने शब्दों में बताया, वी डू नो दैट सम ऑफ द केसेस हैव वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड सर्टनली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कांट बी रूल्ड आउट, सो एज अ प्रिकॉशन दिस इज वट वी आर अज्यूमिंग. सो देयर यू गो. इनिशियली जैसा बताया जा रहा था कि ह्यूमन फिसेस यूरिन द्वारा ही, सलाइवा द्वारा ही ये ट्रांसमिट होता है, पर नहीं, अभी ये बात सामने आई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन अगर से ट्रांसमिशन हो सकता है. ये बड़ी खबर है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता. वी डोंट नो कि ये लोग कितने लोगों से और मिले थे और कहाँ कहाँ लोग इस बीमारी को लेकर के गए हुए थे. इस न्यूज़ पर सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया ने नजर रखी हुई है. इफ देयर इज एनीथिंग न्यू वी शैल लेट यू नो.

0: डोंट टेल मी कि आई एम ऑब्सेस्ड विद आशा ताई'स इंटरव्यूज़, लेकिन अब इतने सारे इंटरव्यूज़ इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं जो शायद हमने पहले कभी उनकी तरफ से शायद ध्यान भी नहीं दिया था, और कुछ इंटरव्यूज़ डाले भी नहीं गए थे. बीबीसी ने अभी से 50 साल पहले आशा ताई के साथ में एक इंटरव्यू किया था, और उसमें से उन्होंने पूछा था, यू नो, एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं उस ज़माने के कलाकारों से कि आजकल की मौसीकी आपको कैसे लगती है, आजकल के गाने कैसे लगते हैं. जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो शी सेड,
1: ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ढाई ढाई म्यूजिक हो, और सबसे बड़ी बात है कि बोल अच्छे होने चाहिए. आप देखिए, पुराने गाने आप जब भी सुनते हैं तो आपके लाइफ से मिले जुले बोल होते हैं, तो आप उसको याद भी रखते हैं. अच्छे खूबसूरत बोल समझ में आए, ऐसे बोल होने चाहिए. आजकल बोल इतने बहुत अच्छे नहीं होते हैं. मेरा ज़्यादातर ये ख्याल है कि स्टोरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि देखिए, घरेलू स्टोरी होती है, बहन का गाना होता है तो राखी का गाना होता है, माँ बेटे का होता है तो लोरी होती है, कुछ अच्छे गाने आ सकते हैं. लेकिन जहाँ मार पिटाई की है, फिल्म हीरो आता है दरवाजे लातों से तोड़ता है और ये मारा मारी ढोए ढोए चलता है, उसमें क्या गाने आएंगे ये हमें भी नहीं समझ आती. तो सच्ची सोच के थोड़ा डर सा लगता है, अफसोस होता है. लेकिन सब ये सोचते हैं कि जो चलता है माल वही देना है. मेरा ख्याल है पब्लिक भी इसमें कसूरवार है. अगर जो वो ऐसे गाने ना सुने और कहें कि हमें पसंद नहीं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा. पब्लिक भी कहती नहीं या सुनती है, लेकिन हमेशा हमसे कहा जाता है कि भाई हमें पुराने गाने पसंद हैं, हम पुराने गाने सुनते हैं. फिर ये क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पाती. रात के बाद दिन आता है, फिर दिन के बाद रात, ये साइकिल है, चलती रहती है. तो आज जो स्टाइल चल रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, तो आज है वो भी नहीं रहेगा. फिर से मेरा ख्याल है लोग क्लासिकल के तरफ झुकेंगे, और क्लासिकल पे बेस गाने आएंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता.
0: डिजिटल की ओर से आपके लिए लाया जा रहा था इस मदर्स डे पर और मोहब्बत बिखेरिए. $20 का टॉपअप आप डिजिटल के जरिए करा सकते हैं पैसिफिक में कहीं पर, या $300 मनी ट्रांसफर आप माई कैश वॉलेट में करेंगे पैसिफिक में कहीं पर, तो यू हैव अ चांस टू विन वन ऑफ $15,500 कैश प्राइज. डिजिटल की ओर से ये मौका इस मदर्स डे को दिया जा रहा है. डिजिटल एंड टीम की ओर से, डिजिटल की टीम की ओर से आपको आने वाली मदर्स डे की शुभकामनाएं.
2: You are listening to Papa.
0: आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में स्टोरी लेकर के आई हुई हूँ, ये सच्ची कहानी है, जो कैसे एक गृहिणी से एक पॉलिटिशियन बन गई. भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है कलिता माझीन का नाम है, और ये ओसग्राम से रहने वाली हैं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है ओसग्राम. कैसे इनका ये सफ़र हुआ, अभी इनकी इतनी ज़्यादा मिल्कियत हो गई, टोटल एसेट इनका 161.2 का हो गया है ऑल टुगेदर, इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट वगैरह अगर देखा जाए. और ये जिस घर में रहती है वो 171 स्क्वायर फीट का घर भी है. तो कैसे इसने गरीबी से यहाँ तक तय की जिंदगी, इट्स वेरी इंट्रीगिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ग्रास रूट लोगों को भी पॉलिटिक्स में मौका मिल रहा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं. मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्योंकि उनको वोट्स भी उस कदर से मिल रहे हैं. सो मैं कहानी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नई नई बनी पॉलिटिशियन वेस्ट बंगाल की कलिता माझी की, राइट आफ्टर दिस एडवर्ट ब्रेक.
2: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाउ सुपर सेंटर स्टोर, और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड. ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है. टीज एंड सीज अप्लाई. एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस. और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाउ सुपर सेंटर वाले स्टोर में, एट द कॉर्नर of Lambie Drive and Cavendish Drive.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: इस Mother's Day को बनाए और भी special DigiCell के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज़्यादा ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश T's and C's apply.
3: Your weekly dose of love and great conversations with your very own Sapna.
4: Sapna Sunday ko 2 p.m. se aapke saath.
5: 3 minute ka Pavanpedia. Know something new on Pavanpedia.
0: कलिता माझी इनका नाम है ये जैसे मैंने बताया ओसग्राम सीट के लिए ये खड़ी हुई थी वेस्ट बंगाल में और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनल पॉलिटिकल माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया है तो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी ये हो गई है। माझी एक वक्त पर घरों में जाकर के बर्तन मांझा करती थी तब इनकी तनख्वाह कुल मिलाकर के तनख्वाह का ये कमाया करती थी तकरीबन 2500 मासिक तौर पर इनके इतने रुपीज वो कमाया करती है। अब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA चुन ली गई है अपने राइवल को उन्होंने 12,000 वोटों से मात दी है। उनकी इस जीत को लेकर के सभी और चर्चे उस जगह पर भी है और इंटरनेशनल तौर पर भी उनकी चर्चाएं होने लग गई है। एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से माझी बिलोंग करती है। पढ़ाई इनको छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वही गरीबी के हालात थी। उनको अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे घरों में बर्तन मांजने कपड़े धोने डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर काम किया था उन्होंने कई सालों तक। उनके हस्बैंड एक प्लमा है और कई सालों तक इकोनॉमिक स्ट्रगल के बाद में उन्होंने अपने बच्चे पार्थ को पढ़ाया लिखाया और क्लास 8 में अभी वो पढ़ रहा है। माझी अभी से नहीं पिछले 10 सालों से एक्टिव रही है अपनी पॉलिटिकल जर्नी में यहां तक पहुंचने के लिए। दरअसल बूथ लेवल पर एज अ कर्मचारी उन्होंने काम शुरू किया था। बीजेपी 2021 असेंबली इलेक्शन में वो खड़ी हुई थी और यहां पर उनको 41% वोट मिले थे। इससे पहले उन्होंने 2021 के असेंबली इलेक्शन में हार का सामना किया था। तब बीजेपी के लीडरशिप जो थी उसको लेकर के भी उस वक्त सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं खड़ी होंगी इस साल भी और 2026 में जब उनको एक बार फिर से मौका मिला तो उन्होंने जीत हासिल की है। 2 पेंडिंग क्रिमिनल केस भी उनके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि एकदम साफ चिट उनके कैरेक्टर पर है बट कोई सीरियस नीचा का नहीं है अकॉर्डिंग टू हर एफिडेविट। उनको क्योंकि ये जब खड़े होते हैं किसी एक चुनाव के लिए तो उनको ये सब साझा करनी पड़ती है। अब क्या है ये तो हमें नहीं पता है। उनका टोटल एसेट जैसे मैंने बताया 161.21 है अकाउंटिंग सॉरी उनके बैंक अकाउंट को लेकर के। उनके हस्बैंड के पास में एसेट है 871 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इनकी उन्हीं जिस डिस्ट्रिक्ट से वो खड़ी हुई है जो उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट किया था। तकरीबन $3,00,000 उनके एफिडेविट में ये बातें सामने है $3,00,000 की उनकी ये प्रॉपर्टी है। ओसग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी जीत हुई है पूर्वा बदधर्मन डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही एक्टिवली कैंपेनिंग की थी। अपनी जीत के बाद में बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने माझी को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि इस तरह के टैलेंट को बीजेपी ने बताया कि वो रिकग्नाइज करते हैं रिगार्डलेस आपका बैकग्राउंड कैसा हो आपके पास में वो जज्बा और वो हिम्मत की जरूरत होती है। विद इन पार्टी रैंक्स उनको बताया जा रहा है कि उनके एंथुसियाज्म को देख करके और जहां से वो शुरू की है और जहां पर अभी पहुंची हुई है उनको ऊंची रैंकिंग भी मिलने के आसार है।

0: माँ।
1: हाँ मेरे लाल।
0: खुश हो ना माँ?
1: बहुत मेरे पुत्र।
0: नागर अच्छा है ना माँ?
1: बहुत वधिया है पुत्र।
0: आशीर्वाद दो ना माँ।
1: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कला वाच रहे हैं मेरे पुत्र।
0: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
1: चुप, फिट्टे मुँह तेरे। ओह ते मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
2: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111। घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहे। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोरार्ड रोड मॉन्ट्रोस्किल। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
3: पापा टोय, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।
4: What kind of businesses run on business fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fiber.
5: What say, Kiwi Indians? Top trending talks. Pawan ke saath.
2: सबसे पहले भारत की खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है, मैं अपने दफ्तर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो बंगाल चीफ मिनिस्टर जो हार चुकी है अपनी सीट और उनकी पार्टी भी हार चुकी है, उनके सीनियर एडवोकेट महेश जेठलानी ने बताया कि इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कानून ये कहता है कि उनको जबरदस्ती निकाला जा सकता है अगर वो अपने पद से नहीं हटती है। दरअसल वो ट्रेसपास कर रही है अगर वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से नहीं हटती है। एज सून एज इलेक्शन सर्टिफाई हो जाता है, इलेक्शन रिजल्ट सर्टिफाई हो जाते हैं, और तब भी अगर कोई दफ्तर खाली करने को तैयार नहीं होता है तो उनके ऊपर सीधे सीधे ट्रेसपास का केस हो सकता है। टिप्पणियां ही आ रही, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि मैं नहीं हारी हूं और मैं नहीं राजभवन जाने वाली हूं, मैं अपना रिजिग्नेशन भी नहीं देने वाली हूं। उनका ये दावा है कि 100 सीट्स उनके थे और वो चुरा लिए गए हैं। जेठलानी का ये कहना है कि अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। फिजी के खबरों में, फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनिमरामा और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर सिथवेनी गिलेहो के म्यूटनी केस का जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे कि इंसाइट किया था उन्होंने म्यूटनी, उसको उन्होंने मांग की है कि अब हाई कोर्ट में एक केस दे दिया जाए। ये मजिस्ट्रेट योगेश प्रसाद के सामने आज कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो चूज कर रहे हैं कि ये मामला हाई कोर्ट के समक्ष ये ट्रायल हो। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जोन रंबुकू ने कोर्ट को बताया कि वो चार्जेस को अमेंड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फुल डिस्क्लोजर डिफेंस की तरफ से दिए जाएंगे। किसी ने, ना ही बेनिमरामा और ना ही गिलेहू ने अपने चार्जेस को स्वीकार या गिल्टी के लिए स्वीकार किया है, लेकिन लॉयर का, स्टेट लॉयर का ये कहना है कि उनके पास में इनफ सबूत है कि वो अपने पोजीशन को मेंटेन रख सकें।

0: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विथ एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ।
1: तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे। आशिक होम्स लिमिटेड, फॉर द फर्स्ट टाइम रेंट टू बाय, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू ओन अ ब्रांड न्यू होम। इफ यू हैव कीवी सेवर एंड सम डेट, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
3: Pawan ke saath suno, kahani abhi baki hai.
0: मोहब्बत में फितूरी किस तरह से चढ़ जाती है उसकी कहानी है। आ अब लौट चले, कुछ ऐसा कह दिया इस बैंक मैनेजर में जिनको वो दिल ही दिल में चाहने लगा है कि वो रूठ सी गई। अब वो रोज जाता पार्क में एक्सरसाइज के बहाने, उसकी आंखें उन्हीं को ढूंढती रहती। बैंक के दरवाजे पर वो टहलता रहता कि एक किसी ना किसी दिन तो वो आएगी। 3 दिन लगातार बस स्टॉप पर भी जाता रहा। मेरे मन की स्थिति एकदम पपीहा जैसी हो गई जो सिर्फ बरसात का इंतजार करता रहता है। उसका पता लेकर के एक दिन उसके घर जाने का मन भी बनाया पर लगा ये ठीक नहीं होगा। उसे स्वयं क्या सोचेगी, उसके बच्चों को क्या कहूंगा, वो क्या कह करके मेरा परिचय कराएगी और कोशिश के बावजूद कराएगी और ये क्या कह करके मेरा परिचय कराएगी और कोशिशों के बावजूद नहीं जा पाया। बैंक में उसके पते के साथ फोन नंबर ना होने का आज सचमुच मुझे बहुत ही शोक हुआ। कम से कम फोन तो इस मानसिक अंतर्द्वंद को कम करता। चपरासी के हाथ अकाउंट स्टेटमेंट के बहाने उसको बैंक में आने का संदेशा भिजवाया। रविवार की इस सुबह ने मुझे बेहद मायूस किया। इस पूरे आवास काल में पहला परिवार था कि घूमने का मन ही नहीं बन सका। दरवाजे पर अचानक घंटी ने दिल के सारे तार झंकृत कर दिए। इतनी सुबह तो कोई नहीं आता, हो ना हो मिसेज शर्मा ही होगी। लगता है कल चपरासी ठीक समय से पहुंच गया था। यही सोचते मैं जल्दी से स्वयं को ठीक करके जब तक दूसरी घंटी बजती दरवाजे पर पहुंच गया। सामने अपनी पत्नी को पाकर के सारा नशा काफुर हो गया, मेरा चेहरा उतर गया। क्यों हैरान हो गए ना, वो हाँफते हुए बोली। बहुत ही मुश्किल से मकान मिला है, वो अपना सूटकेस भीतर रखते हुए बोली। अरे बताया तो था, बताया तो होता, कोई फोन चिट्ठी, मैं झुंझला कर बोला। सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। जनाब क्या कहते रहते हैं इस शहर में, अचानक बच्चों की छुट्टियां हुई तो उन्हें मायके छोड़ सीधी चली आई। बताने का मौका कहाँ मिला। मेरा मन उसके आने के इस स्वागत के लिए तैयार तो नहीं था, परंतु चेहरे के भावों में सनिंता बरतते हुए मुझे सामान्य होना ही पड़ा। फिर भी स्थिति को पचाते शाम हो ही गई। पत्नी के 3 दिन के इस आवास काल में मैंने हर संभव प्रयास किया कि नपी तुली बातें की जाए। जब भी बाहर घूमने के लिए वो कहती तो सिर दर्द का बहाना करके टाल जाता। बाहर खाने के नाम पर उसके हाथ का खाना खाने की जिद करता। मुझे भय सा व्यक्त हो चुका था कि कहीं उसके साथ मिसेस शर्मा मिल गई तो क्या करूंगा, क्या कह करके हमारा परिचय होगा। मेरे मन में अजीब सी शंका ने घर कर रखा था। मेरी पत्नी उस स्वभाव रूप को देख करके क्या सोचेगी। इसी भय के कारण मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। मन का भूत साय की तरह पीछे लगा रहा और ये तब तक सताता रहा जब तक मैंने अपनी पत्नी को जाते वक्त बस में बिठा ना दिया। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस खोया हुआ था उसकी याद में। एक पल उसको एक बार फिर से देखना चाहता था, कहीं भी मिल जाए, रस्ते पर मिल जाए, ना देखे मेरी तरफ, ना बोले मुझसे कुछ, बस सिर्फ मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। मेरे मन पर और मेरे दिमाग पर मेरा काबू नहीं था और मैं उसे अपने काबू में करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं दीवानों की तरह हो गया था। मुझे दुनिया में न खाने का मन कर रहा था, न पीने का मन कर रहा था, न किसी से बातें करने का मन कर रहा था। जब देखो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता था, बस किसी तरह से, ओ गॉड, किसी तरह से उसकी मुलाकात हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

0: न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए लोगों को अब एक टेस्ट करना होगा। सरकार अगले साल के अंत तक नए सिटीजनशिप टेस्ट लागू करेगी। सिटीजनशिप टेस्ट के तहत एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वे मल्टीपल चॉइस में 75% तक अंक हासिल करें। लोगों से बिल ऑफ राइट्स एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और ट्रेवल टू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। वर्तमान में एक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद में लोगों के सिटीजनशिप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दिसंबर चौथाई के 5.4% के मुकाबले मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि 163,000 लोग देश में अभी भी अनएम्प्लॉयड है। दिसंबर चौथाई में यह आंकड़ा 165,000 था। अर्थशास्त्रियों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर जाने का अनुमान लगाया था, लेकिन उसके विपरीत हुआ है। लेबर कॉस्ट इंडेक्स के मुताबिक वेज रेट्स, जिसमें ओवरटाइम पे शामिल है, मार्च के अंत तक 2% से बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर वेजेस में 2% की बढ़ोतरी देखी गई, पब्लिक सेक्टर वेजेस में 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार का कहना है कि इंटरेस्ट रेट पर ना तो सरकार और ना ही रिजर्व बैंक काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये होलसेल रेट पर निर्भर होता है। अजय कुमार का कहना है कि लोगों का ये मानना कि ऑफिशियल कैश रेट में बढ़ोतरी की वजह से ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, ये गलत है।
1: संजय जी बताता हूं, मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए 50 ईयर्स हो गया और मैंने देखा लोग बहुत ओसीआर पे ध्यान देते हैं और रेट इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जिससे आप अपना इंटरेस्ट कम कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे अपना बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि रेट इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो बैंक डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करता है। पर जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है आपकी इनकम, आपके कंट्रोल में आपके एक्सपेंसेस, आपके कंट्रोल में है आपका मॉर्गेज, आपके कंट्रोल में है उसका मैनेजमेंट।
0: ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अजय कुमार।
2: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सेन।
3: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
4: दिलीप सेन समीर सेन का एक और बहुत ही बेहतरीन गाना मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ये भी सुनाऊं कि हमारे साथी क्या सुनाने के लिए तैयार हैं। जैसे 90s की रानी ये सुनाएंगी।